ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 28वीं तिथि। तदनुसार 19 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर दो मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:02 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, 9 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार, 9:02 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने, 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम लेकर आएंगे मैचलेस म्यूजिक आर, 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हां, यह है आकाशवाणी रेनबो। तो पेश हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम और विचार विमर्श किया। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 CM-श्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर को बढ़ाकर 7% किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। और 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागोया में हो रही है। मनु भाकर और तजिंद्र पाल सिंह टूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सितंबर 2026 की तारीख, सुप्रभात कार्यक्रम में आज सुबह सुबह आपके साथ मैं हूं मनीष आजाद, रेडियो वाला। सुबह सुबह की किरणों से यह बात सीखिए कि हर सुबह एक नई शुरुआत है। इसे मुस्कान के साथ अपनाएंगे तो जीवन सच में बेहतर नजर आएगा। और खुद को एक नई उम्मीद दीजिए कि यह आज का दिन, नई सुबह आपकी है। तो इसे ऐसा लगता है कि शिकायतों के बजाय अगर हम कोशिशों में बिताएं कि आज के इस जीवन के अंदर जो कुछ मिला है वो पर्याप्त है और जो आगे मिलेगा वो भी पर्याप्त होगा। तो सुबह सुबह सुप्रभात कार्यक्रम के साथ साथ में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर शुरू होगा उसके बाद में, लेकिन आकाशवाणी रेनबो पर आज आपके साथ हूं मैं। तो आज के कार्यक्रम में सुनिए हमारा ये कार्यक्रम।
2: ओ पालनहारे
1: निर्गुण, नई सुबह नई ऊर्जा नया संकेत।

देखिए ना, कहते हैं कि जीवन छोटा नहीं है, यह हर बात हर कोई मानता भी है और जानता भी है। बावजूद उसके इस जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी नाराज जरूर हुआ है, पर कोई जल्दी नाराज हो जाता है तो कोई नाराज ही रहता है। पर क्या आप जानते हैं कि जो आपकी नाराजगी है ना, ये सेहत के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं होती है। यह एक मानसिक बोझ है जो आपको अंदर ही अंदर बीमार करता है। हम अक्सर किसी पुरानी कड़वाहट या कभी इसको जो बोलते हैं कि आपको धोखा मिला, मन में दबा कर रखते हैं। शोध कहता है कि अगर मानसिक बोझ शरीर को जब अंदर बीमार करता है, वो लंबे समय से नाराजगी पाले रखने से शरीर के अंदर तनाव और सूजन बढ़ती है, गंभीर रोगों का खतरा भी बढ़ता है। जब भी हम किसी पुरानी कड़वाहट जो कड़वी बातों को याद करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। जो दिमाग है उसका जो अलार्म है ना, एकदम से आपको उसका एमिट जो डाला है, जो उसका शरीर जो हम कहते हैं ना लगातार सर्वाइकल वाले मोड में चला जाता है, और जिससे रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमजोर होने लगती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर डॉक्टर फ्रेड लुस्किन के अनुसार कहते हैं कि क्षमा करने का जो मतलब है ना, किसी गलत काम को सही ठहराना नहीं है या उससे दोबारा से रिश्ता जोड़ना नहीं है, बल्कि यह खुद की भलाई के लिए उठाया गया कदम है। उन्होंने इसको चार भागों में बांटा है। सबसे पहला माइंडफुलनेस, दबी हुई नाराजगी व दर्द को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना। दूसरा आत्मसहानुभूति, खुद को दोष देने की बजाय एक दोस्त की तरह खुद की देखभाल करना। तीसरी बात, बातों को साझा करना। साझा करने से भी बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं। थेरेपिस्ट या भरोसेमंद जो भी आपके दोस्त हो उसके साथ आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कर्म और व्यक्ति अलग अलग होते हैं। यह नहीं है कि गलत काम का विरोध करें, पर सामने वाले के प्रति नफरत की भावना को मन से निकाल दें। बड़े लोगों की अगर बात करते हैं, दलाई लामा जी की बात कीजिए, नेल्सन मंडेला जी की बात कीजिए, ऐसे तमाम महापुरुषों ने माना है कि न्याय की जितनी भी लड़ाई है, लड़ते हुए भी मन को नफरत से मुक्त रखा जा सकता है। तो बस सुनते रहिए सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ मनीष आजाद।

कार्यक्रम सुप्रभात में मैं हूं आपके साथ मनीष आजाद रेडियो वाला। मन के आगे अगर कोई जीत सकता है तो वो आपका विश्वास है, वो आपका प्रयास है। लगातार आप जीत सकते हैं बशर्ते उसके अंदर कोई स्वार्थ ना हो। आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा कि करत करत अभ्यासते जड़मती होत सुजात, हरसरी आवत जाते सिल पर परत निसात। यानी कि अगर हम प्रयास की बात करें तो लगातार प्रयास करने से बहुत सारी चीजें हैं जो आप पा सकते हैं। जो आप सोचते हैं वो कहीं ना कहीं उनके पीछे एक जो एक जिद होती है ना इसको पार करने की, वो पूरी हो सकती है। देखिए ना, गांव के अंदर एक मेहनती युवक रहता था। उसके खेत के किनारे एक विशाल पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर इतना बड़ा था कि कुछ लोगों के द्वारा मिलकर भी उसको हिलाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तब युवक ने सोचा कि इस पत्थर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने कहा इसको तोड़ते हैं। अब वो तोड़ते हैं के लिए सब लोगों ने तो पीछे हट गए, लेकिन उसने अपना साथ कभी नहीं छोड़ा। और युवक हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, हथौड़ा उठाता और पत्थर पर प्रहार करना शुरू कर देता। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता और बीतते बीतते कई सारे दिन बीतते गए। गांव वाले उसे देखते और हंसते रहते। किसी ने कहा कि इतनी मेहनत बेकार कर रहे हो। किसी ने सलाह दी, समय बर्बाद मत करो, ये पत्थर नहीं टूटेगा। लेकिन कहते हैं कि अगर आपका प्रयास अगर सही जगह पर होता है, अगर आपके मन में जिद होती है कुछ पार करने की। लेकिन युवक ने भी उसी तरह से हार बिल्कुल नहीं मानी। वह रोज प्रहार करता रहा। 20 दिन बाद भी कोई बदलाव नहीं।

25वीं चोट, 60वीं आदमी चोट पर चोट कर रहा था, पत्थर पर दरार तक नहीं थी। एक दिन उसने 101वीं बार हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से चोट की। इस बार पत्थर जो था, जी हां, टूट गया। गांव वाले एकदम से दौड़े दौड़े आए, सबने कहा वाह, इस चोट ने तो कमाल कर दिया। युवक वहां पर एकदम से मुस्कुराया और बोला कि नहीं, पत्थर केवल आखिरी चोट से नहीं टूटा है, अगर उससे पहले की 100 जो चोटें थी ना, अगर वो ना होती तो यह प्रहार बेअसर होता। तो इसलिए लगातार प्रयास आपको सफलता की ओर जरूर आगे लेके जाती है। सुनते रहिए सुप्रभात, मैं हूं आपका दोस्त आपके साथ मनीष आजाद, रेडियो वाला।

जिंदगी को जीने के लिए बात बहुत साधारण साधारण सी होती है, लेकिन ये साधारण सी बातें हैं बड़े काम की अगर हम इन आदतों को अपनी जिंदगी के अंदर अगर शुमार कर लेंगे, इन्हें शामिल कर लेंगे, तो जिंदगी में बहुत अच्छा वाला असर देखने को मिलेगा। आजकल जो कहते हैं ना कि जो सोशल मीडिया है, ये एक लत की तरह काम करने लगा है। अगर हम अपनी सुबह की जो शुरुआत है ना, छोटी छोटी जो आदतें हैं, अगर इन्हें शामिल कर लें तो अच्छा रहेगा। ये पहली है ये कि अपनी सुबह ना करें सोशल मीडिया पर बर्बाद। सोशल मीडिया की जो लत, वो आपको अगर लग गई है तो फिर बहुत, मतलब उसके संकेत भी अलग ही हैं, क्योंकि वो मस्तिष्क के अंदर एक डोपामाइन का संचार होने लगता है।

यहाँ पर मीडिया पर देर तक वक्त, एक आपने रील देखी नहीं, दूसरा रील देखने आप अपने आप ही लग जाते हैं, समय आपका बर्बाद हो रहा है। बेहतर यह है कि उस समय को कहीं और लगाएं, पढ़ें लिखें, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, सूरज की रोशनी जो है उसका आनंद लें। शोध कहता है कि सुबह सुबह के समय कुछ देर सूरज की धूप में जितना आप समय बिताएंगे तो आप अपने लिए मूड, ऊर्जा और नींद के चक्र पर बड़ा आप असर देखेंगे। थोड़ा सा व्यायाम करें बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को सक्रिय रखना बेहद बेहद बेहद जरूरी है। और अंत में मन को समझाना सीखे कि कुछ चीजों को करने से मिलने वाली जो खुशी होती है हर उम्र में बहुत छोटी छोटी सी होती है। कभी कभी आपने भी खुद देखा होगा जिंदगी के मायने आपको लगते होंगे बहुत कठिन, लेकिन जब आज जैसे ही वो समय थोड़ा सा बीत जाता तब लगता है कि वो कितनी सी ऐसी जो बात थी जिसके लिए मैंने बेवजह उसकी जिद की थी। इसलिए कहते हैं जिंदगी है तो बहुत आसान अगर इसको हम जीने की कोशिश उसी तरह से करें, बशर्ते इसको हम रात दिन ये ना कहें कि अरे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सुनते रहिए सुप्रभात, मैं हूं आपका दोस्त मनीष आजाद, रेडियो वाला। अक्सर अपने अभाव के अंदर में हम लोगों को धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं। जरूरी है ईश्वर के द्वारा दिया गया ये शरीर आपके बेहद काम का है। सही जगह, सही सोच, सही ऊर्जा के साथ अगर इसका हम सही सही निर्णय लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए लोगों का आभार व्यक्त करना ना भूलें, ना भूलें। छोटी सी बात है पर साधारण, लेकिन बड़े काम की बात आपके लिए। इसलिए कहते हैं बड़ा बनेंगे तो आपकी सोच से।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सबको श्री श्री राधाष्टमी की बहुत बहुत बहुत बधाई। आज श्री किशोरी जी का आविर्भाव दिवस है। भगवान श्री कृष्ण की नित्य शक्ति, उनके आह्लादनी शक्ति, उनकी प्रेम शक्ति, उनकी रस शक्ति, उनकी आनंदनी शक्ति, उनको आनंद प्रदान करने वाली शक्ति और उस शक्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका, आज उनका आविर्भाव दिवस है और बहुत ही सुंदर दिवस है, क्योंकि इस जगत में अगर देखा जाए प्रेम ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है, है ना? हर संबंध में हम प्रेम की अपेक्षा करते हैं। प्रेम, हम चाहते क्या है? प्रेम। हमें हमारे माता पिता प्रेम करें, हमें हमारा भाई प्रेम करे, बहन प्रेम करे, पति प्रेम करे, पत्नी प्रेम करे, हमसे बच्चे प्रेम करें, हम प्रेम करें। और इस तरह से प्रेम अगर मिल जाए तो कई बार व्यक्ति को किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सब कुछ मिल जाए और प्रेम ही ना मिले तो इंसान सोचता है कि जीवन बेकार है, कोई तो मुझे प्यार नहीं करता, है ना? तो ये जो प्रेम है जो दुनिया में लोग एक दूसरे से चाहते हैं, ये प्रेम तो फिर भी काम कहलाता है, काम। क्योंकि इस प्रेम से मुझे प्रसन्नता मिलेगी, मेरी इंद्रियां संतुष्ट होंगी, इस प्रेम से मेरा अभिमान तुष्ट होगा मेरा। लेकिन जब हम श्री कृष्ण से प्रेम चाहते हैं और श्री कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, जब हम भगवान के माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं, जब हम भगवान को जानना चाहते हैं, उनके हो जाना चाहते हैं, उनके शरणागति चाहते हैं, उनकी सेवा चाहते हैं, उनकी लीलाओं को समझना चाहते हैं, उनकी लीलाओं में भाग लेना चाहते हैं, पार्षद हो जाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आवश्यकता है उसी एक तत्व की। उस तत्व के बिना कुछ नहीं मिलेगा और वो है प्रेम। भगवत स्वरूप जो भी क्यों ना हो, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत जी का सम्राट वाक्य है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, है ना? अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, और वही परमेश्वर है जिसने इस जगत की सृष्टि का अधिकार पाया भगवान से। ब्रह्मा जी, उन्होंने ही कहा कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो वो जो कृष्ण हैं, जो सब कारणों के कारण हैं, समस्त भगवत स्वरूपों के भी जो कारण हैं, जितने भी भगवत स्वरूप हैं, जितनी भी विभूतियां हैं, सबके जो कारण हैं वो है कृष्ण। और जीवन का लक्ष्य हम जैसी तटस्था शक्ति के लिए, क्योंकि हम क्या हैं? हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं। ना तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति, उनकी स्वरूप शक्ति के अंतर्गत हैं, ना हम उनकी माया शक्ति के अंतर्गत हैं। क्योंकि माया शक्ति के अंतर्गत हो तब तो कभी भी भगवान को शायद हम प्राप्त भी ना कर सकें, क्योंकि माया का ही एक भाग हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो तट पर खड़े हुए जीव हैं, परंतु इतने छोटे हैं, इतने मिनिस्क्यूल हैं, इतने अणु हैं कि हम चाहकर भी भगवान की अंतरंगा शक्ति की तरफ नहीं मुड़ पाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो वो चाहत भी नहीं उठती है मन में,

जब बहुत कृपा होती है भगवान की, तब कोई भक्त मिलता है जिसके श्रीमुख से हम सुनते हैं, जिसे हम जानने लगते हैं, जो हमें बताता है भगवान के बारे में, हम भजन करते हैं उसके साथ, वो बताता है हमें ऐसे भजन करो, ये भजन करने का तरीका है, वो ही बताता है हमें कि श्री कृष्ण को पाने का, उनके माधुर्य को आस्वादन करने का एक ही तरीका है, वो है प्रेम की प्राप्ति। और वो जो प्रेम तत्व है, वो भगवान की आह्लादिनी शक्ति श्री राधिका है। अगर कोई भगवान श्री राम का धाम पाना चाहे तो भी उसको प्रेम की आवश्यकता है। वहां यही श्री राधिका, श्री राम जी की धर्म पत्नी श्री सीता देवी है। तो भगवान जितना जितना स्वरूप ग्रहण करते हैं, प्रियाजू भी उतने ही स्वरूप में उनके साथ विहार करती हैं। तो ये जो प्रेम तत्व है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका है, ये बहुत बड़ा तत्व है, बहुत बड़ा तत्व। क्योंकि इस प्रेम के भिखारी हम हैं इस जगत में, तो हमारा तो जो मुंह है वो जगत वासियों की तरफ है, तो हमें उनसे प्रेम चाहिए। पर हम ये जानते नहीं हैं कि ये जो हमें चाहिए वो वस्तुतः वो हमें मिलेगा भगवान से ही, भगवान की तरफ मुड़कर ही, उनसे प्रेम करके ही हमें वो प्रेम मिल सकता है। लेकिन इस जगत में हम जिससे भी प्रेम क्यों ना करें और जितना भी क्यों ना करें, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी दोष हो जाए, कमी हो जाए, तो फिर लोगों को प्रेम नहीं दिखता, वो कमी दिखती है। और अगर मान लीजिए प्रेम भी दिख जाए तो भी क्या, वो प्रेम अखंड नहीं है। जिससे प्रेम हो रहा है वो हमेशा रहेगा नहीं, जो प्रेम कर रहा है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। तो उस प्रेम का विषय और उस प्रेम का आश्रय दोनों ही अनित्य हैं, यानी उनकी देह अनित्य है। तो उस प्रेम से उत्थित आनंद भी अनित्य है, क्षणिक है। लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं, आचार्य हमें बताते हैं कि एक जगह है जहां प्रेम सच्चा है। अगर उनसे प्रेम कर लिया जाए, किन से प्रेम किया जाए, ठाकुर जी से, तो वो जो प्रेम है, वो जो आनंद देगा, उस प्रेम से जो आनंद की प्राप्ति होगी, वो भगवद आनंद, भगवद रस जो प्राप्त होगा, उसी आनंद, उसी प्रेम, उसी रस को जीव ना जाने कब से ढूंढ रहा है, मगर ये प्राप्त होगा भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा से ही, श्री राधिका की कृपा से ही, है ना। देखिए, ये हम प्यासे हैं प्रेम के, ऐसा नहीं है, ठाकुर जी भी प्यासे हैं प्रेम के। वो कहते हैं कि विभिन्न रूपों में लोग जो मेरा भजन करते हैं, यानी श्री नारायण के रूप में जब मैं होता हूँ, मेरा भजन होता है, तो ऐश्वर्य भाव का भजन होता है। श्री राम जी के रूप में भी ऐश्वर्य भाव का भजन होता है। और ऐश्वर्य भाव का जो भजन है, उसमें मुझे आनंद नहीं आता। तो भाई, आनंद किस में आता है आपको? तो ठाकुर जी कहते हैं, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, एई भावे जेई मोरे करे शुद्ध भक्ति, अपना के बड़ो माने अमारे समहीन, से भावे होई अमितार अधीन। यानी मुझसे प्रेम अगर हो तो इस भाव से हो कि तुम मेरा ही बेटा है, मेरा ही सखा है, मेरा ही प्राणपति है, यह है शुद्ध भक्ति, मेरा ही, है ना। अपने आप को बड़ा माने, मुझे समान माने या हीन माने, जैसे सखा लोग समान मानते हैं ब्रज के सखा, तो ब्रज प्रेम में ऐश्वर्य भाव नहीं है। वहां क्या है, माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सब, प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेद स्तुति होइते ता हरे मोर मन। तो ये जो भगवान है, ये स्वयं ऐसा ही प्रेम चाहते हैं, शुद्ध प्रेम, जहां बिल्कुल भी स्वार्थ की गंध ना हो, ऐसा प्रेम, ऐसा ही प्रेम।

0: जहां सिर्फ भगवान को भगवान के लिए चाहा जाए, यानी ठाकुर जी आप ही सब कुछ हो। आप मेरी माता हो, पुत्र हो, पिता हो। तो ये सब तो हम भगवान के अन्य स्वरूप में भी करते हैं, लेकिन वहां हमारे अंदर ऐश्वर्य भाव आता है। पर ब्रज प्रेम में ऐसा नहीं होता है। अन्य प्रेम में हम देखते हैं, यानी भगवान के जो अन्य स्वरूप हैं, वहां हम देखते हैं कि भगवान की जो कांता स्वरूप में किशोरी जी हैं, वहां वो मान नहीं करती, ऐसा मान नहीं करती कि वो भर्सना करें, ऐसा मान नहीं है। लेकिन ब्रज में ये मान है, प्रिया जी का, किशोरी जी का ये मान है। क्यों? ये कौन है श्री राधिका, कौन है और क्या प्रदान किया है उन्होंने श्याम सुंदर को? ये श्याम सुंदर कहते हैं कि अगर किशोरी जी मान कर लें या मेरी भर्सना करें, ताड़न करें, डांट भी दें, तो भी मुझे असीम आनंद आता है। कौन है ये? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये श्री राधिका कौन है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि कृष्ण ही श्री राधिका है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति ही श्री राधिका है। श्री कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति है, उनकी तीन वृत्ति हैं। संदनी शक्ति, जिससे श्री कृष्ण का अपना विग्रह, उनके परिकर, उनका धाम, ये सब प्रकट है। संवित शक्ति, जिससे कि ये ज्ञान प्रकट है कि हम कौन हैं, या ये जो सखा हैं, ये माता हैं, ये कांताएं हैं, ये समस्त ज्ञान, जो भी ज्ञान की चीज है वो है संवित शक्ति। और तीसरी है आनंद प्रदायनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। और आह्लादिनी शक्ति ही मूर्त रूप में, श्री राधिका के रूप में, श्याम सुंदर को आस्वादन प्रदान करती हैं। विभिन्न प्रकार के आस्वादन, विभिन्न प्रकार श्रृंगार रस का खेल खेलती हैं। और प्रिया जी जो कि श्याम सुंदर की आह्लादिनी शक्ति हैं, वही मुख्य शक्ति हैं, वही समस्त शक्तियों का मूल है। क्योंकि संधनी हो और आनंद ना हो, संवित शक्ति हो और आनंद ना हो, तो फिर क्या फायदा? क्योंकि हर चीज तो आनंद के लिए है, और आनंद शक्ति मगर एक ही है, वो है श्री राधिका। तो राधा कृष्ण तो यूं एक ही आत्मा है, पर वो दो देह धारण करते हैं, दो देह रस आस्वादन के लिए दो देह धारण करते हैं। भगवान की स्वरूप शक्ति है किशोरी जी, आह्लादिनी शक्ति, जो श्री कृष्ण को आनंद आस्वादन कराती हैं, और इसी शक्ति के द्वारा श्याम सुंदर भक्तों का पोषण भी करते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करें, तो ये प्रेम ऐसे ही नहीं मिल जाता हमें, ये तो भगवान ही देते हैं। जब हम भजन करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाता है, वैसे वैसे भगवान, जो कि प्रेम को डालते रहते हैं इस जगत में, उस प्रेम को हम ले पाते हैं अपने हृदय में। तो ये जो प्रेम की वृत्ति है, ये भी श्री राधिका ही है। आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति है, संवित शक्ति की वृत्ति है ना। तो ठाकुर जी को आह्लाद देने वाली है श्री राधिका। आह्लाद मधुर भाव में आनंद देती है। देखिए, प्रिया जो है श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, यानी कृष्ण और श्री राधा एक ही हैं, जैसे दूध और उनकी सफेदी एक ही है, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति एक ही है, कस्तूरी और उसकी गंध एक ही है ना। अलग अलग तो है नहीं, तो अलग हो भी नहीं सकते हैं, परंतु लीला के लिए ये कई रूप धारण कर लेती हैं। वैसे ये कृष्ण प्रेम भावित हैं। कृष्ण प्रेम भावित जार चित्त इंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ार सहाय। श्री कृष्ण प्रेम से भावित प्रिया जी का चित्त है, उनकी इंद्रियां है, उनकी काया है, क्योंकि वो श्याम सुंदर की ही अपनी शक्ति हैं, और समस्त क्रीड़ा की सहायता वही करती हैं, समस्त लीला में वही सहायक है, योग माया जी भी वही है। श्री कृष्ण को जिस प्रकार से रस आस्वादन कराती हैं, वो बड़ा ही विचित्र है। एक तो जितनी लक्ष्मी गण हैं अनंत वैकुंठों में, अनंत विष्णु स्वरूपों की, वो समस्त श्री राधिका है। और द्वारिका में जितनी महिषियां हैं श्याम सुंदर की, वो समस्त श्री राधिका से ही प्रकट है। और जितनी ब्रज गोपियां हैं, 300 करोड़ से भी अधिक ब्रज गोपियां और कांताएं, वो सब श्री राधिका से ही प्रकटित है, है ना। तो अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंश निराधा होते तीन गणेर विस्तार, ये सब श्री राधिका से ही प्रकटित हैं, ये हमें समझना होगा। तो फिर विशेष क्या है, विशेष क्या है? अरे भाई, जब श्री राधिका ही श्याम सुंदर को समस्त श्रृंगार रस का आस्वादन करा सकती हैं, तो फिर इतना रूप, वो भी ब्रज में इतनी गोपियां क्यों हैं? देखिए, ना केवल इतनी गोपियां हैं, उनका आकार भी अलग है, स्वरूप भी अलग है, प्रकाश भी अलग है, स्वभाव भी अलग है। क्यों? क्योंकि बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास, लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। रासलीला होगी ही नहीं अगर अनेक गोपियां ना हो। और भी अनेक लीलाएं हैं, बड़ी ही गुह्यतर लीलाएं, बड़ी ही गूढ़ लीलाएं किशोरी जी की, जो होंगी ही नहीं अगर अन्य गोपियां ना हो। तो प्रिया जी ही अन्य गोपियां हैं। तो गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, सर्व कांता शिरोमणि है श्री राधिका। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं, प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं श्री राधा अष्टमी के सुअवसर पर कि प्रियाजू, श्री राधिका, किशोरी जू, स्वामिनी जू, ये श्याम सुंदर की आराधनी शक्ति है और स्वरूप शक्ति भी यही है, और इन्हीं की वजह से सब कुछ है। श्याम सुंदर को जो रसो वैसा कहा जाता है वो इन्हीं की वजह से है। और वो जो मदन मोहन है, मदन यानी काम देव जैसे शक्तिशाली तत्व को भी जो मोहित कर देते हैं, वो भी श्री राधिका की वजह से है। कारण कि उनका सौंदर्य प्रिया जी के प्रेम को देखकर ही बढ़ता है, और वो अनुपम सौंदर्य प्रिया जी की वजह से ही है। इसीलिए बृहद गौतमीय तंत्र में कहा गया, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति ही सम मोहिनी परा, कि प्रिया जी पर देवता है। पर यानी इनसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है, पराशक्ति है। साक्षात कृष्णमयी है, सर्व लक्ष्मीमयी है, सर्व कांतिमयी है, कृष्ण सन मोहिनी है। कृष्ण भी जिनसे मोहित हो जाते हैं। सोचे ये कृष्ण कौन है, पहले तो यही समझना होगा कि कृष्ण कौन है, मोहित कौन हो जाता है। अरे भाई, जिसे हम ब्रह्म के रूप में जानते हैं, जिनके अंग की निर्मल कांति ब्रह्म है, ब्रह्म हम कहते हैं ना, सब कुछ ब्रह्म है, जो हर कण में मौजूद है, ब्रह्म, ठाकुर जी के अंग की निर्मल कांति ब्रह्म, और उन्हीं का एक अंश परमात्मा है, उन्हीं का अंश बलराम जी हैं, उनसे ही संकर्षण जी हैं, उनसे ही अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न जी, वासुदेव जी हैं, उन्हीं से महाविष्णु है, उन्हीं से गर्भोदक्षाई विष्णु है, उन्हीं से क्षीरोदक्षाई विष्णु है, उन्हीं से सृष्टि लीला है, उन्हीं से समस्त देवी देवता है, सब कुछ कृष्ण से है। लेकिन कृष्ण जिनके प्रेम के वशीभूत है, वो है श्री राधिका। कृष्ण सम्मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, गोविंद की सर्वस्व है, जो गोविंद को जो आनंद देती है, जो गोविंद को अपने प्रेम से मोहित कर देती है, है ना। तो कृष्णमयी कृष्णजार भीतरे बाहरे,

कृष्णमयी है प्रिया जी। कृष्ण पूजा क्रीडार वसती नगरी, श्याम सुंदर की समस्त लीलाओं की वसती नगरी है किशोरी जी। श्री राधिका महाभावमयी है, महाभावमयी। देखिए जो प्रेम है ना, प्रेम ये जब अतिशय प्रगाढ़ हो जाता है तो ये स्नेह बन जाता है, स्नेह प्रेम। और वो इस देह में नहीं आता, वो तो गोपी देह में ही प्राप्त होता है। तो वो स्नेह प्रेम, फिर मान प्रेम, फिर प्रणय प्रेम, फिर राग, फिर अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव, महाभाव में भी रूढ़ महाभाव, फिर अधिरूढ़ महाभाव, और उसमें भी मोदन, मादन, और फिर उसमें भी मोहन। ये मादन और मोहन जो कि प्रेम के महाघनीभूत विग्रह हैं, वो मादन महाभाव स्वरूप श्री राधिका है। श्री राधिका, तो ये जो श्री राधिका हैं, इनको लेकर ही और इनका आस्वादन करने के लिए ही अनंत गोपियों के साथ श्याम सुंदर रास विहार करते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि श्याम सुंदर अपनी ही शक्ति के साथ रास कर रहे हैं, कोई बाहर से शक्ति नहीं आई है। प्रिया जी का प्रेम ही श्याम सुंदर को नचाता है। प्रिया जी का जो प्रेम है उसका आस्वादन करने के लिए ही श्याम सुंदर अनंत लीलाएं करते हैं, है ना। तो देखिए प्रिया जी जब श्याम सुंदर के साथ लीलायित रहती हैं तो वो दो रूपों में है, एक स्वकीय भाव और हमारे आचार्य कहते हैं परकीय भाव भी एक स्वरूप है, जिसमें श्याम सुंदर को वो सुख प्रदान करती हैं। वस्तुतः भाव की बात हो रही है, तत्वतः तो दोनों एक ही हैं, दो हो नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान है रसिक शेखर, रसिक शेखर रस के सबसे बड़े आस्वादक हैं, रसो वै सह हैं, तो वो रस का आस्वादन देते भी हैं, रस का आस्वादन करते भी हैं। तो ठाकुर जी अपनी ही नित्य कांताओं को, अपनी ही नित्य कांता, कौन नित्य कांता? श्री राधिका, जिनके बारे में हमारे शास्त्र कह रहे हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। कृष्ण की पूर्ण शक्ति श्री राधिका है, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण, दोनों में कोई भेद नहीं है शास्त्र ने कहा। लेकिन अपनी ही कांता को श्याम सुंदर जहां स्वकीय भाव में लीलायित करते हैं, जहां वो लक्ष्मी जी का रूप लेती हैं, जहां वो सीता जी का रूप लेती हैं, जहां वो 16108 महिषियों का, पत्नियों का रूप लेती हैं द्वारिका लीला में, वहीं पर ब्रजलीला में एक ऐसा विशेष आस्वादन देते हैं श्याम सुंदर को, जहां प्रेम महाभाव की कक्षा को प्राप्त करता है। और प्रेम महाभाव की कक्षा को तभी प्राप्त कर सकता है जब प्रेम पर पहरे लग जाएं, जब प्रेम में बाधाएं आ जाएं, जब प्रेम को छुपाने की जरूरत पड़े, है ना। तो ये जो प्रेम है ये महाभाव की अवस्था तभी प्राप्त करता है जब श्याम सुंदर प्रिया जी और समस्त गोपियों के साथ परकिया रस का खेल खेलते हैं, है ना। परकिया नाम से बड़ा ही विचित्र लगता है, इस जगत में तो ये पाप है, लेकिन ठाकुर जी ने तो कहा है वैकुंठ आदे नाही जे लीलार प्रचार, से लीला करिबो जाते मोर चमत्कार, मो विषय गोपी गणेर उपपति भावे, योग माया कोरिबे अपन प्रभावे, अमी हो न जानी तहा न जाने गोपीगण, दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन, धर्म छाड़ी रागे दुहे करे मिलन, कभू मिले कभू ना मिली देवीर घटन। तो जहां स्वकीय भाव में ठाकुर जी धर्म को साथ लेकर के मिलन कर रहे हैं, वहीं पर परकीय भाव में श्याम सुंदर ही हैं, श्याम सुंदर स्वयं ही अभिमन्यु जी भी हैं या अयान घोष जी भी हैं।

श्याम सुंदर स्वयं ही समस्त गोपियों के पति रूप में भी हैं और प्रिया जी स्वयं ही जटिला जी भी हैं और कुटिला जी भी हैं। लेकिन योग माया दासी जहां जहां योग माया जी हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि प्रिया जी ये नहीं जानती मैं भगवती हूँ, श्याम सुंदर नहीं जानते मैं भगवान हूँ, वो ये नहीं जानते कि प्रिया जी जो हैं वो मेरी नित्य कांता हैं, और प्रिया जी नहीं जानती हैं कि अभिमन्यु जी जो हैं वो नित्य ठाकुर जी ही हैं, ठाकुर जी ही हैं, कोई और भगवान की स्वरूप शक्ति के पास पहुँच नहीं सकता है, है ना। तो ये जो नहीं जानना है, इसी से रस का वर्धन होता है, इसी से रस चमत्कार दशा में जाता है, इसी से प्रेम की परीक्षा होती है, क्योंकि जानते हैं नहीं कोई कुछ भी। तो ये जो रस है वो सिर्फ ब्रज में है, ब्रज बिना इहार नहीं अन्यत्र वास, ब्रज के अलावा ये जो रस है वो अन्य कहीं पर नहीं है। तो जैसे हाथी को बांधा जाए तो हमें पता चलता है उसमें कितनी शक्ति है, जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है, बंधन को तोड़ने की कोशिश करता है, ऐसे ही जब प्रेम को बांधा जाए तब हमें पता चलता है कि अरे ये कितनी शक्ति है इस प्रेम में। जब वो श्याम सुंदर से मिलने के लिए धर्म कर्म वेद धर्म लज्जा मर्यादा सबको ताक पे रख देती हैं गोपियाँ, प्रिया जी सबको ताक पे रख देती हैं, और जहां श्याम सुंदर ने ये कहा है श्रीमद् भगवद गीता में कि मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्म को त्याग करके मेरी और सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी ही शरण लो, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुटकारा दिला दूंगा, कोई पाप नहीं लगेगा। कह तो दिया लेकिन इसका कहीं दृष्टांत नहीं आया। दृष्टांत आया ब्रज लीला में, जब श्याम सुंदर ने अपनी ही शक्तियों के साथ एक विचित्र लीला की है, विचित्र खेल किया है, है ना। तो यही गोपी भाव भी है। गोपी भाव क्या है? यही है जहां पर ठाकुर जी के सुख के लिए अपने समस्त सुखों की तिलांजलि दे दी जाए, समस्त अपेक्षाओं की तिलांजलि दे दी जाए, वही गोपी भाव है। और प्रिया जी गोपी भाव की शिरोमणि है, और यही प्रेम हमें गौर ने दिया है, यही यही भाव, और इस भाव में प्रिया जी की सेवा गौरांग महाप्रभु ने दी है, और इसी पर चर्चा करेंगे हम अपने आने वाले कार्यक्रम में। सुनते रहिए समर्पण। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, प्रेम धारा को कीजिए स्वीकार। मेरा नमस्कार।

0: कामदेव के महामंगलमय रंग अर्थात विनोद प्रसंग यानी संपर्क से मनोहर ब्रिकटियों के नयन कटाक्ष रूपी बाणों से विभ्रम और संभ्रम के साथ नंद नंदन को निरंतर वश करने की सामर्थ्य रखने वाली श्री किशोरी जू, आप कब मुझे अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र बनाएंगी?
1: ये थी कृष्ण।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर श्रम बाजार के विवरण जारी किए। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। भारत को स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। और 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। मनु भाकर और तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। सुप्रभात आप सभी को। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दोस्तों इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा मॉर्निंग मैगजीन शो है और हम लेकर आते हैं आपके लिए तमाम जानकारियां जो हैं आपके बहुत ही काम की। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की एक बहुत ही अच्छे से विचार के साथ और ये विचार है गौतम बुद्ध जी का। उन्होंने कहा है कि बीते हुए कल में मत उलझिए, भविष्य के सपने मत देखिए, अपने मन को सिर्फ आज और वर्तमान पर केंद्रित कीजिए, क्योंकि वर्तमान अगर हम देखें और उसको सुधारने का, संवारने का, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें तो फिर हमारा भविष्य वैसे भी बेहतर हो जाता है और फिर बीते हुए कल के बारे में ज़्यादा सोचकर हम अपने आने वाले कल के बारे में क्यों चिंता करें। तो चिंता मुक्त रहकर वर्तमान में जीना और आगे की तरफ बढ़ना और ज़िंदगी में नई कामयाबियाँ हासिल करना, ये हम सभी लोगों को करना चाहिए और हम करते हैं। तो चलिए

फिल्म कहो ना प्यार है। इस फिल्म में लकी अली द्वारा ये गीत गाया गया और कुछ सवाल पूछे गए और उनके सवालों के जो जवाब थे वो नहीं थे उनके पास, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से सवालों के जवाब हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब देता है हमारा इतिहास। इतिहास सिर्फ बीते हुए समय का लेखा जोखा नहीं बल्कि उन घटनाओं की कहानी है जिन्होंने दुनिया को अलग अलग दौर में नई दिशा दी। तारीखें बदलती रहती हैं लेकिन कुछ दिन अपने साथ ऐसी घटनाओं की याद लेकर आते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो आइए आज की तारीख से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें और जानें कि 19 सितंबर को दुनिया में क्या खास हुआ था। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा ज़्यादा ही पीछे जाते हैं। सन 1783 पहली बार जीवित प्राणी गर्म हवा के गुब्बारे में उड़े। हुआ ये कि 19 सितंबर 1783 को फ्रांस के वर्साय में मॉन्टगोल्फियर बंधुओं के गर्म हवा के गुब्बारे में एक भेड़, एक बत्तख और एक मुर्गे को उड़ाया गया। ये मनुष्यों की उड़ान से पहले किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग था। तीनों जीव सुरक्षित वापस लौटे। आज ही का दिन था, सन था 1893 जब न्यूजीलैंड के गवर्नर ने नया इलेक्टोरल एक्ट कानून बनाया। इसके साथ न्यूजीलैंड दुनिया का पहला स्वशासित देश बना जहां महिलाओं को संसदीय चुनावों में मतदान का अधिकार मिला। और एक चीज जो खास तौर पर जब आप लोग मैसेज हमें करते हैं तो उसमें हमें दिखाई देती है स्माइली। तो आज ही का दिन था, साल था 1982 जब कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर वैज्ञानिक स्कॉट फॉलमैन ने विश्वविद्यालय के ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड पर पहली बार हैप्पी स्माइल और सैड स्माइल का इस्तेमाल मजाकिया और गंभीर संदेशों में अंतर बताने के लिए सुझाया और इससे डिजिटल इमोटिकॉन के शुरुआती और सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक माना जाता है। और आज ही का दिन था, साल था 1985 जब मैक्सिको के मिचोआकान क्षेत्र के पास 8.1 तीव्रता का भूकंप आया जिसका असर मैक्सिको सिटी पर बहुत विनाशकारी रहा। तो आज के दिन से जुड़ी ये कुछ खास बातें हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो हमारा ये आज का दिन है ये तो बहुत ही खास है और आज के दिन को और खास बनाने की हमारी कोशिश है ताकि आने वाला बेहतर कल हमारा इंतजार करे।

बिल्कुल, आने वाला पल जाने वाला है और हर तारीख अपने साथ इतिहास की कोई ना कोई कहानी लेकर आती है। कुछ घटनाएं हमें अतीत से जोड़ती हैं तो कुछ ऐसे लोगों की याद दिलाती हैं जिनका योगदान आज भी हमारे जीवन में दिखाई देता है। तो चलिए आज के दिन से जुड़ी कुछ और हस्तियों की बात करें, कुछ और बातें आप तक पहुंचाएं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा की बात करते हैं। इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने सिर्फ संगीत साधना नहीं की बल्कि उसे समझने और सहेजने का काम भी किया। एक ऐसा ही नाम है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का, और इनका जन्म हुआ सन 1860 में 10 अगस्त को मुंबई के बालकेश्वर में। इन्होंने बीए और एलएलबी की शिक्षा हासिल की और कुछ समय तक वकालत भी की, लेकिन संगीत के प्रति उनका आकर्षण इतना गहरा था कि धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन संगीत के अध्ययन और शोध को समर्पित कर दिया। भातखंडे ने पूरे भारत की यात्रा की, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के संगीतज्ञों से मुलाकात की, बंदिशें सुनी और उन्हें लिपिबद्ध किया। उनका उद्देश्य था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मौखिक परंपरा को व्यवस्थित रूप में दर्ज करना ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे आसानी से सीख और समझ सके। उन्होंने रागों के वर्गीकरण के लिए 10 ठाटों की पद्धति को व्यवस्थित रूप दिया। उनकी प्रसिद्ध रचना हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और क्रमिक पुस्तक मालिका ने संगीत शिक्षा को एक व्यवस्थित आधार दिया। भातखंडे का निधन आज ही के दिन सन 1936 को हुआ। उनके प्रयासों से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को जो व्यवस्थित स्वरूप मिला उसकी गूंज आज भी संगीत की कक्षाओं, मंचों और साधना में सुनाई देती है। तो आज के इस खास दिन पर हम उन्हें याद करते हैं और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ राजेश और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। सुप्रभात। और शनिवार की सुबह अपने आप में बहुत खास होती है क्योंकि कई लोगों की छुट्टियां होती हैं और कुछ लोग जो हैं अलग अलग कार्यों में व्यस्त होते हैं और सुबह का समय होता है, आप काम करते जाते हैं, रेडियो सुनते जाते हैं, कभी दूसरे दूसरे कामों में लगे होते हैं, यानी कि कभी किचन में, कभी पार्क पे, कहीं भी हो, लेकिन हम हमेशा आपके साथ होते हैं और साथ होते हैं कुछ जानकारियों के भी। और आज के दिन से जुड़ी कुछ हम बातें कर रहे हैं तो आज का दिन जुड़ा हुआ है साहित्य के लिए भी बहुत ही खास तौर पर। आज ही के दिन हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि की जन्मतिथि से भी जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन फैजाबाद में जन्मे थे कुंवर नारायण। आज ही के दिन सन 1927 में विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई शुरू करने वाले कुंवर नारायण की रुचि आगे चलकर साहित्य में गहरी होती गई। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। कविता उनकी मुख्य विधा रही लेकिन उनका लेखन केवल कविता तक सीमित नहीं था। उन्होंने कहानियां, निबंध और समीक्षाएं लिखी, साथ ही सिनेमा, रंगमंच और संगीत पर भी विचार किया। उनकी पहली प्रमुख काव्यकृति चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुई। परवेश, हम तुम, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने उनकी चर्चित रचनाओं में शामिल हैं। उनकी रचनाओं में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखने की कोशिश दिखाई देती है। कुंवर नारायण को वर्ष 2005 के लिए 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले। 15 नवंबर 2017 में उनका निधन हुआ 2017 को, लेकिन उनकी कविताएं अगर हम देखें आज भी मनुष्य, जीवन और समय को नए ढंग से देखने का अवसर देती हैं। शायद यही किसी साहित्यकार की सबसे बड़ी विरासत होती है कि उसकी रचना समय बीतने के बाद भी हमसे संवाद करती रहे। तो आज कुंवर नारायण की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं और उनके कार्यों को, जो भी उनकी जो रचनाएं हैं, हम जब उनको पढ़ेंगे, जब हम उनको जानेंगे तो हमें उनके जीवन से, उनके विचारों से और ज़्यादा जुड़ने का मौका मिलेगा।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, आज के दिन से जुड़ी हम बातें कर रहे हैं, आज के दिन से जुड़ी कुछ उन हस्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं जिन्होंने आज के दिन को इतिहास में बना दिया बहुत ही खास। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज ही का दिन था जब सन 1900 में गुजरात के भावनगर में जन्म हुआ बलवंत राय मेहता जी का। स्वतंत्रता सेनानी, सांसद और गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री रहे। युवावस्था से ही वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने बारडोली सत्याग्रह में भाग लिया और असहयोग तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। लेकिन आज उन्हें खास तौर पर पंचायती राज व्यवस्था के विकास में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की विधिवत शुरुआत हुई। सितंबर 1963 में वे गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बने और उनके योगदान को देश लगातार महसूस करता है। और आज के दिन, आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं।

दोस्तों बिल्कुल इसी भाव के साथ हमारे खिलाड़ी भी खेल के मैदान में उतरते हैं और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की कोशिश करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करते हैं। तो खेलों की अगर बात करें तो आज का दिन खेल इतिहास में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज से शुरू हो रहे हैं एक ऐसे खेल जिनका इंतज़ार बहुत लंबे समय से था। खेलों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे भारत के लिए आज से शुरू हो रहे 20वें एशियाई खेलों में कामयाबी की एक नई कहानी लिखने की चुनौती होगी और अगले एक दशक में देश को शीर्ष 10 देशों में लाने की जो हमारी आकांक्षा है उसके लिए नींव का पत्थर रखने का दारोमदार हमारे खिलाड़ियों पर होगा। एशियाई खेलों में 43 खेल होने वाले हैं जिसमें 11,000 के करीब खिलाड़ी भाग लेंगे और 45 देश कम होने के बावजूद यहाँ प्रतिस्पर्धा का स्तर जो है ओलंपिक के समान होने वाला है, ऐसा रिपोर्ट आ रही है। और भारत ने 501 खिलाड़ियों का दल भेजा है जो वहां गए हैं। हालांकि वहां पर कुछ दिक्कतें उन्हें शुरू शुरू में आई, लेकिन खेल में कहते हैं कि आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं और मानसिक रूप से तैयार जब होते हैं तो आप फिर आने वाली बाधाओं पर पार पा ही लेते हैं। बात करें अपने खिलाड़ियों की और क्रिकेट की बात करें तो कल जो मुकाबला हुआ भारत और जापान के बीच में महिला क्रिकेट टीम में, उनकी जो परफॉर्मेंस रही हमारे खिलाड़ियों की वो कमाल की रही। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और बाएं हाथ के स्पिनर श्रीचरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर पिछली विजेता भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हरा कर एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। श्रीचरणी ने 10 रन देकर 4 विकेट लिए हैं जो T20 क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। शेफाली वर्मा ने 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। हुआ यूं कि जापान की टीम 19.5 ओवर में 57 रन पर आउट हो गई और भारत ने ये लक्ष्य 5 ओवर में हासिल कर लिया और 5 ओवर में हासिल कुछ इस तरह से किया कि शेफाली वर्मा ने 40 रन बनाए सिर्फ 15 गेंदों पर और ऋचा घोष ने 6 गेंदों पर 12 रन का योगदान दिया। दो खिलाड़ी जो आउट हुए उनमें उन्होंने हालांकि दहाई के अंक को वो नहीं छू सकी, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने बहुत ही आसानी के साथ जापान को हरा दिया और गेंदबाज

रनों ने शानदार प्रदर्शन किया और अब कल यानी कि रविवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला होगा बांग्लादेश से। तो भारतीय जो क्रिकेट टीम है, हमारी महिला क्रिकेट टीम, उसमें बहुत पोटेंशियल है और अभी हाल ही में उन्होंने जो खिताबी जीत हासिल की एशिया कप में, वो उसको देखते हुए लगता है कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें भी हमारी टीम कुछ बड़ा धमाका करने वाली है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स 14।

0: OTT app now and watch for free.
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, आज की तारीख से जुड़ी कुछ और बातें, कुछ और हस्तियां हैं जिन्होंने इस तारीख को बनाया है इतिहास में खास। आज ही का दिन था, साल था 1965, और ये जो दिन है अंतरिक्ष की दुनिया से जुड़ी एक खास पहचान जो भारत के साथ भी जुड़ी है उसे लेकर आता है। आज ही के दिन सन 1965 में अमेरिका के ओहायो में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था। भारतीय पिता और स्लोवेनियाई मूल की मां की संतान सुनीता ने अमेरिका नौसेना में सेवा देने के बाद साल 1998 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में जगह बनाई। साल 2006 में उनकी पहली अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई और बाद में वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमांडर भी बनी। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक के दौरान उनके नाम कई उपलब्धियां दर्ज हुई। इतना ही नहीं, 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए ट्रेडमिल पर बोस्टन मैराथन भी पूरी की। 2024 में बोइंग स्टार लाइनर की पहली मानव युक्त परीक्षण उड़ान का हिस्सा बनकर उन्होंने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उनकी उपलब्धियां अनेक युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान के समझने और इसे अपने करियर के रूप में अपनाने को प्रेरित करती हैं। तो आज सुनीता विलियम्स को उनके जन्मदिन पर हम देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं।

दोस्तों, कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वैसे ही थे दिल में उतर जाती हैं। और ऐसी एक आवाज है लकी अली की। अपनी अलग पहचान, सादगी भरे अंदाज और सूफियाना एहसास से उन्होंने हिंदी संगीत को एक नया रंग दिया। और आज हम उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं हम। मकसूद महमूद अली, जिन्हें दुनिया लकी अली के नाम से जानती है, मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन महमूद के बेटे हैं। संगीत उनके जीवन में विरासत के रूप में आया, लेकिन अपनी पहचान उन्होंने खुद बनाई। 90 के दशक में उनका एल्बम सुनो आया और गीत ओ सनम ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद एक पल का जीना, अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत में भी हमने उनका पहला गीत जो चलाया था वो उन्हीं की आवाज़ में था। और कई गीत उनकी आवाज़ में ऐसे हैं जो युवाओं के दिलों की आवाज़ बन गए थे। लकी अली की खासियत सिर्फ उनकी आवाज़ नहीं, बल्कि उनके गीतों में छिपी वो सादगी है जो रिश्तों, सफ़र, तन्हाई और ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से महसूस कराती है। शायद यही वजह है कि इतने वर्षों के बाद भी लकी अली की आवाज़ सुनते ही लगता है कि जैसे कोई पुराना सफ़र फिर शुरू हो गया हो। तो चलिए उस सफ़र पर चलते हैं, उनकी आवाज़ को महसूस करते हैं इस गीत में।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, इस प्रोग्राम के इस घंटे में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। अगले घंटे में आपके साथ होंगे मनीष आज़ाद और कुछ और जानकारियां लेकर वो आप तक पहुंचेंगे। 8:02 से 8 बजे से आप सुन पाएंगे समाचार, और 9 बजे से होगा एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका और मेरा एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। प्रोग्राम होगा दिल की तराने, गाने नए पुराने। और इसके बाद 10 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है बैचलर्स म्यूजिक आवर। हिमानी दत्ता इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगी। और 11 बजे आप सुन पाएंगे प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। प्रियंका वर्मा इस प्रोग्राम में आपके साथ होंगी। दोस्तों, आपके बहुत सारे मैसेजेस भी हम तक पहुंचे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सुझावों के लिए, आपकी प्रतिक्रियाओं के लिए। हम तक मैसेज पहुंचा है पंकज मोहोड़ का अमरावती से, डॉली ने दिल्ली से मैसेज किया है। इसके अलावा मैसेज किया है हमारे कई और साथियों ने, रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता। इसके अलावा मैसेज किया है राजेश भल्ला, एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से, और भी हमारे कई साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाएं। तो फिलहाल राजेश को दीजिए अनुमति, चलते चलते ये गीत आपके लिए। आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो पर, थोड़ी देर में मनीष आपके साथ होंगे।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: पेश है AIRFM रेन मीडिया पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहानान से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली बार जिला स्तर पर श्रम बाजार के विवरण जारी किए। वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंधु के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदार समझौते को गति देने के लिए बैठक की। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 CMश्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में विस्फोट में 15 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। और 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आइची नागोया में हो रही है। मनु भाकर और तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रेडियो को ट्यून करो और टेंशन को दूर करो। टेंशन जो शब्द है ना, ये शब्द अपने आप में ही इतना बड़ा है कि अगर किसी को सामने वाले व्यक्ति को वैसे ही बोल दीजिए आप कि मैं बहुत टेंशन में हूं, सामने वाला आपसे बिना पूछे मानेगा ही नहीं, क्या टेंशन है मेरे भाई बता दीजिए, क्योंकि आपने इस शब्द का इस्तेमाल इतना बड़े रूप से कर दिया है। भले ही कल किसी को जरा सी चोट लग जाए, लेकिन अगर उसने इस शब्द का नाम दे दिया एक्सीडेंट हो गया, तो सब हा कैसे हा ऐसे इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि हम कभी कभी अपने आप में ही अपने साथ में कुछ ऐसी परेशानियों को साथ में लेकर चलने की आदत डाल लेते हैं। इसी तरह से कुछ कहते हैं, इंसान अपने आप में ज्यादा चाहत की आदत हमेशा आपको पीछे की ओर धकेलती है। ये ठीक वैसे ही है, क्योंकि लालच ही पतन का कारण है और हम वो क्यों ना पाएं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। ये हम सोचते रहते हैं, जिसके हम हकदार हैं सोचते रहते हैं, तो हम अपने काम को बेहतर बनाएंगे इस बारे में हम कभी नहीं सोचते। अपने काम को बेहतर बनाइए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए वो लगभग सभी प्रयास कीजिए जिससे आपकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है।

और अगर आपकी ज़िंदगी जब खुशहाल हो जाएगी तो आपका परिवार आपको देखकर वो भी मुस्कुराएगा। तो मुस्कुराते रहिए और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का जो सफ़र है 8 बजे से 9 बजे तक वाला, आपके साथ चलूँगा मैं, आपका दोस्त मनीष आज़ाद, रेडियो वाला।

आपके परिवार के अंदर आप देखेंगे कि हर समय हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा कम आंकते हैं ये सोचकर कि ये काम बेहतर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि अगर आप वो काम उसके ऊपर छोड़ दें और आप पीछे से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएं, तो आप देखिएगा या तो वो काम होगा ही नहीं, अगर वो होगा तो सही ढंग से होगा।

ऐसा शायद आपके परिवार के अंदर भी हर बच्चों के साथ ऐसा होता होगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आपके मना करने पर वो कितने सारी बातें होती हैं कि वो नहीं, जबरदस्ती अब तो करना ही है। लेकिन अगर आप जब कहते हैं कि नहीं भाई ये दूध आपके लिए बेकार है ना, तब वो पियेंगे जरूर, यानी कि इसका रिवर्स होता है। लेकिन एक शोध में पाया गया कि अकेले में अपना काम बच्चे जो है वो तेजी से करते हैं, उनको अपने ऊपर जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये एक शोध में पाया गया कि अगर आप बच्चों को उनके पीछे अगर बोल देते कि ये काम आपको करके रखना है, अगर उसने तो वो काम किया तो बखूबी करेगा, जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ अब बच्चे बड़े हो गए। इस तरह से देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस अध्ययन के तहत में 4 से 5 साल के बच्चे और 8 से 9 साल के बच्चे जिनको काम दिया गया था, उन्होंने अपना काम बखूबी समय पर और अच्छे से किया जितना वो कर सकते थे। इसलिए ये देखा गया कि अकेले में किया गया काम वो तेजी से करता है, इस समय इनका जो दिमाग है वो भी तेजी से काम करता है और बढ़ता भी है, जिससे उनको काम करने के नए नए अवसर तलाशते वो खुद रहते हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर है 8 बजे से 9 बजे तक वाला, रेडियो पर आपको जानकारी जो दे रहे हैं। आपका नाम साथ में मनीष आजाद हम कहते हैं, ठीक है साहब, सुनते रहिए और महसूस कीजिए। और अगर आपके मन में भी लगता है कि हाँ कुछ जानकारी आपको मिल रही है, तो 9868107070 वाला नंबर है।

शुरुआत भले ही आपकी धीरे से हो, लेकिन अगर वो धीरे धीरे चलते चलते आप कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। अगर आपको मीलों का सफर तय करना है तो पहला कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जब पहला कदम आप बढ़ा लेंगे तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आप आगे जरूर पहुंचेंगे। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर, आपके साथ मैं हूं मनीष आजाद, रेडियो वाला। सभी भारतीयों को अपने आप में गौरवान्वित करने का समय पल आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात यह है कि मराठी फिल्म गोंधल भारत से जो 33 फिल्मों की जो लिस्ट गई थी उसमें से जो ऑस्कर की जो लिस्ट है उसके अंदर एक फिल्म मराठी भी है। गोंधल को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन किया गया है। ये हुई ना बात, कहते हैं कि कोई ना कोई एक नाम तो जरूर होना चाहिए, और ये मराठी भाषा की चौथी फिल्म है जो नॉमिनेट हुई है। अच्छी बात है ना, जब इस तरह की फिल्में होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम तो ऐसे ही लगातार चलते रहना चाहिए और कई सारी ऐसी फिल्में हमें और भी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत हर जगह हो ये कौन नहीं चाहता है, इसलिए भारत का नाम जरूर होना चाहिए।

हर शब्द के अंदर जब धीरे धीरे का जो शब्द है ना, वो कहीं ना कहीं एहसास कराता है कि धीरे ही सही शुरुआत हो, लेकिन वो शुरुआत आगे चलकर बड़ी हो सकती है। किसने सोचा था कि जो दिल्ली मेट्रो, हम जिसको हम कहते हैं कि ये जो दिल्ली की जो लाइफ लाइन है, ये सच में ऐसी ही एक दिन कारगर साबित होगी। रोजाना कितने लाखों यात्रियों को वो एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह पर छोड़ रही है। आप सभी की जिंदगी में इसका बहुत बहुत असर है। कभी कभी आपको खुद को लगता होगा कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। शायद आपको ऐसा गुरुवार को भी देखने को मिला होगा, क्योंकि बस की हड़ताल के चलते ये देखा गया कि दिल्ली वालों ने गुरुवार के दिन में इतना सफर किया कि जो सफर करने वालों की संख्या थी वो 82,44,903 लोगों की हुई, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। यानी कि यह कहा जाता है कि लाइफलाइन तो है ही, लेकिन लाइफलाइन के साथ साथ में अगर इस 82 के अंदर 18 लाख और भी लोग हो जाएं, जबकि कहा जाता है कि जो आने वाले जो फेज इसमें चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत शायद इस दिसंबर तक और भी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि अगर 1 करोड़ यात्री रोजाना अगर सफर करेंगे, तो सोच के देखिए दिल्ली के लिए, जहां पे लगभग 3 करोड़ के आसपास की जो आबादी है, इसका मतलब एक तिहाई हिस्सा मेट्रो से सफर करेगा। तो इसके लिए बधाई भी है, लेकिन बधाई के साथ साथ जो भी जो बस की हड़ताल है, अगर वो भी जल्द पूरी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन है जो आपके दिल्ली का या आपके शहरों का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा है ना। तो यूज़ कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। आप जितना यूज़ करेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है, कि क्योंकि आप जाम से बच जाते हैं। किसी भी शहर के अंदर जाइए, हर कोई चाहता है कि भाई साहब आपको पता नहीं हमारे इधर जाम लग जाता है तो क्या होता है। मैं कहता हूँ आपको तो पता है ना क्या होता है, तो इसलिए समय से निकलिए। हमें नहीं पता, लेकिन आप लोगों को ज़रूर पता है अपने अपने शहर की आदत। तो अगर वो पता है तो आपको अपनी भी आदत पता होनी चाहिए कि अगर समय निकालकर 10 मिनट पहले निकल जाएंगे, जाम वाला जो शब्द है ना, आपकी जबान से गायब हो जाएगा। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर चल रहा है। 8 बजे से 9 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। मेरा नाम है मनीष आजाद, रेडियो वाला।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

पर बात आ जाती है तो बहुत अच्छा होता है। 17 सितंबर से शुरू हुआ, 17 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि एक महीना है इस संकल्प को पूरा करने के लिए। और इसके अंदर बहुत कोई बड़ा लंबा चौड़ा ऐसा कोई काम नहीं है। सेवा संकल्प अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन व जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। महीने भर का यह राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्य उद्देश्य एक ही है, जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता, जनसेवा और राष्ट्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देना है। अब आप देखिए अपने घर के आसपास, तो आसपास वाला मैं शब्द बाद में बोलूं, लेकिन अपने घर के अंदर तो आप सफाई करते हैं, लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि आपका जो कदम है वो घर के बाहर पड़ा, फिर आपके मन में अगर ये सवाल आता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो निगम वाले लोग काम करेंगे, या ये मेरे घर के बाहर पड़ा है कूड़ा, तो मैं यहां पर झाड़ू क्यों लगाऊं, सामने वाले लगाएगा। शायद जिस तरह से आप सोच रहे हैं ऐसा ही सामने वाला व्यक्ति भी सोच रहा होगा। होगा क्या, ना वो आपने उठाया ना सामने वाले ने उठाया, ऐसे पड़ा रहा। इसका मतलब स्वच्छता के अंदर जो भागीदारी है ना, दोनों ने नहीं निभाई, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वच्छता में जन भागीदारी। इस मिशन के तहत अगर आप देखेंगे नागरिकों को, यानी कि आपको विशेषकर युवाओं को सामुदायिक स्वच्छता से जोड़ना, ये सामुदायिक स्वच्छता ही है साहब, अगर आप मिलकर सफाई करेंगे कैसा रहेगा। हम सभी जानते हैं कि जब दीपावली का जो एक पर्व आता है पूरे भारत के अंदर, आप देखते हैं इवन मैंने विदेशों के अंदर भी देखा है कि वहां पर हर कोई अपने घर के अंदर सफेदी करवाने लग जाता है, व्हाइट वॉश हो जाती है, सफाइयां होती हैं, ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, यानी कि आप घर के अंदर तो कर रहे हैं, घर के बाहर तक भी आप लड़ियां लगा देते हैं, जगमग रोशनी हो जाती है। लेकिन जब सफाई की बात आती है, आप जिस लेन में जाते हैं, जिस लेन के अंदर घुसते हैं, जिस लेन में आपका घर है, कभी वहां पर अगर कुछ कूड़ा पड़ा था कि आपने अपने आप से उसको कभी सफाई की है, अगर इसका आपके मन में अपने आप आ जाता हाँ, तो इसका मतलब आप भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन अगर मन में संकोच आ गया कि नहीं मैंने तो आज तक नहीं किया, तो सोचिए ना कि 2047 का जो हमारा ये संकल्प है विकसित भारत का, कैसे पूरा होगा। एक एक इंसान को जोड़ना पड़ेगा और इसके साथ में जुड़ना पड़ेगा, तभी तो जाके पूरा होगा ये संकल्प। तो इसलिए इस संकल्प के अंदर अपनी भागीदारी निभाएं और इस देश को स्वच्छ बनाएं, समाज को स्वच्छ बनाएं, क्योंकि इसके अंदर आपकी बेहद बेहद जरूरत है। तो जरूरत को पूरा करें और सुनते रहें हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर चल रहा है, इस सफर के अंदर हम आप मिलकर काम कर रहे हैं।

अगर आप वैसे तो जब अखबार पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि शायद आजकल हर खबर जो है आपको वो रील्स के माध्यम से देखने को मिल जाती होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका समय है वो रील्स देखने में गुजरता भी होगा और इससे बच्चे भी अछूते नहीं हैं। अब बच्चों को जब कहा जाता है कि काम करने के लिए वो नहीं करते हैं क्योंकि उनको समझाने में लगता है कि शायद समय निकल जाता है। अक्सर घर में ये देखा जाता है कि आप क्या करते हो, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। मोबाइल का जो समय है, जिस तरह से देखा जब वो पेंडेमिक जो समय चल रहा था उस दौरान में ये मोबाइल की जो स्क्रीन विजिबिलिटी है ये कई गुना बढ़ गई, इस कदर बढ़ गई कि आज बच्चों को खुश करने के लिए खाना खाते समय भी वो अपने साथ में मोबाइल रखते हैं। चुप कराना है तो मोबाइल दे दिया, कुछ करना है तो मोबाइल दे दिया। लेकिन अगर हम इसके अच्छे कारणों को देखें तो एक हालिया

एक शोध के अंदर ये पाया गया है कि अगर मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रख दिया जाए और अगर आपको साफ हवा मिल जाए तो बच्चों को सवाल हल करने में उनको मदद मिलती है, उनको भाषा को समझने के अंदर मदद मिलती है, और उनको छोटे बच्चों का जो दिमाग होता है वो तेजी से विकसित होने में मदद मिलती है। लेकिन इसके लिए साफ हवा का होना जरूरी है और मोबाइल को दूर रखना बेहद जरूरी है। अब ये सारी बातें बच्चे सुनते तो बड़े अच्छे से हैं, बच्चों से ज्यादा बड़े वाले भी सुनते हैं, लेकिन मैंने अक्सर कई घरों के अंदर देखा है साहब या भाभी जी, बच्चों को चुप कराने के लिए आप खुद ही उनके हाथ में ये तुंतना जो है ये आप पकड़ा देते हैं, और फिर उससे क्या होता है, गड़बड़। फिर आप अपने आप को वो सोचते हैं एक दिन कि ये मोबाइल उस दिन ना दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। वैसे पता नहीं, मतलब हमारे घर के अंदर, मतलब मेरी जो परवरिश हुई है वो तो अच्छी तरह वाली जो ठुकाई होती थी ना उससे भी हुई है, अगर आप ना मानेंगे तो। छोटे वालों की भी गलतियों पे खुद पिटना है। आपके साथ होता है ऐसा? अब तो नहीं होता कुछ भी शायद, है ना? मुझे लगता है ऐसा कि अब ये बहुत दूर हो चुकी है, अब तो स्कूल के अंदर भी टीचर हाथ नहीं लगा सकते हैं। कमाल हो गया, जबकि गुरुजन तो पहले होते थे।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
8: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
10: हिमालय की गोद से लेकर
11: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
10: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
11: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
10: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
11: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
10: तो सुनना ना भूलें
11: रेनबो डेस्टिनेशंस
10: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
12: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन सुंदर सुंदर मैसेजेस के लिए कि हाँ मैं वही मनीष आजाद हूँ जो ढिंचे ढिंचे वाले शोज करते थे। बिल्कुल आपके लिए धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद आपको आज के दिन के लिए भी देना चाहता हूँ क्योंकि 19 सितंबर की तारीख के साथ किसी न किसी के साथ में आप अपना हैप्पी वाला बर्थडे ज़रूर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अब एक बड़े भाई की तरह, आप छोटे भाई की तरह, दोस्त की तरह, आप एक टीचर की तरह, या एक ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई किसी को इंसान को मोटिवेट करता है या कुछ कहना चाहता है उसकी तरह, हम कभी कभी अपने बच्चों के साथ में जब देखते हैं ना, हम खुद ही माता पिता कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात नहीं करते हैं बच्चों से कि यार अरे बच्चों के सामने ऐसी बातें करेंगे कि नहीं। बच्चों की जो बढ़ती उम्र है ना, शायद आपके माता पिता ने आपके साथ इन शब्दों पर खुलकर बात ना करी हो, कुछ ऐसे विषय होते हैं जब खुलकर बात ना करी हो, लेकिन अब जो जमाना है थोड़ा सा बदल चुका है, आपको अपने बच्चों के साथ बैठकर कुछ गंभीर विषयों पर बात करनी चाहिए। गंभीर विषय आपके घर के अंदर कोई भी हो सकते हैं। सामने कभी कभी हम अक्सर देखते हैं कि आपस में ही हम लोग बात नहीं करते, सबके पास अब मोबाइल है। कभी कभी तो ऐसा भी आपने अपने अपने घरों के अंदर देखा होगा, एक ही कमरे के अंदर चार लोग बैठे हैं लेकिन चारों के चारों एक दूसरे से बात ना करके अपनी अपनी बातें वो मोबाइल पर साझा कर रहे हैं। शायद वही जो बात आपसे करने की होगी वो अपनी सहेली या अपने दोस्त को बता रहा होगा। लेकिन अगर हम यही बातें कि थोड़ी देर के लिए भी भाई मुझे थोड़ी सी कुछ बात करनी है, अगर ऐसा कुछ बोल देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चा आपको मना कर देंगे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर ऐसा वो करते हैं थोड़ा सा डांट के बोलिए, लेकिन उन बातों को आप बच्चों के साथ अगर साझा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जो बीच की एक खाई कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है, उसको पाटने में कहीं ना कहीं आप एक अच्छा वाला रोल निभाएंगे। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का सफर चल रहा है, इस गीत के बाद जो आपके सुंदर सुंदर मैसेज हैं उनको भी पढ़ लिया जाएगा, है ना, क्योंकि उसके बाद तो फिर राजेश आने वाले हैं।

छोटी छोटी बातें भुलाने में अगर आप जितना समय जल्दी से लगाएंगे, शायद मुझे अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बातें ना फिर आपको आगे चलकर परेशान नहीं करेगी। डॉली का मैसेज आया, बहुत धन्यवाद आपका इन शब्दों के लिए, हम बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। और कृष्णा इंदा ने लिखा है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से नागौर से राजस्थान से, कि सच बताऊं तो सर मेरी भी बहुत ज़बरदस्त वाली कुटाई हुई है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप, थैंक यू सो मच है, आपका शो पसंद आ रहा है। प्रदीप सलूजा जी हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ में राजकुमार के संतानी अकोला महाराज से भी, सर बहुत अच्छा, अमरोस आसपास की बहुत अच्छी सफाई करते हैं और स्वच्छ भारत में हम भी कहीं ना कहीं भागीदारी निभा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं सर इन शब्दों के लिए, अगर आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं तो। गुरुवार को मेट्रो रेल में इतने सफर यात्री, सर जानकारी बहुत अच्छी लगी, पंकज अमरावती महाराज से लिख रहे हैं, और आपकी जानकारी सर बहुत अच्छी लग रही है, सेवा संकल्प अभियान आपने बहुत अच्छे से बताया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच है आपका। राजेश और मनीष भाई आपको बहुत बहुत सलाम, थैंक यू सो मच है, आपका सलाम राजेश भाई तक पहुँचा दिया है। तो आज मनीषा जी रेडियो वाले जी थैंक यू सो मच, गाने आपके पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर, गाने पसंद आ रहे हैं तो और क्या चाहिए बस। हमें जी टोनी शाह पुष्पिंदर पाल सिंह भटिंडा से लिख रहे हैं, आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच है जी, गुड मॉर्निंग है जी आपको जी, गुड मॉर्निंग राजेश बल्ला भाई आपको भी हमारी तरफ से सुप्रभात। जाते जाते आपको बताते हैं कि अब मेरे बाद में राजेश भाई प्रोग्राम करेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने, इसके बाद हिमानी दत्ता आपके साथ में होंगी, वेस्टर्न म्यूजिक आर का प्रोग्राम होगा, प्रियंका वर्मा लेकर आएंगे प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स, दीपिका भटनागर आपके साथ में होंगी, प्रोग्राम होगा आशियाना, कोमल भारती आपके साथ में रेडियो डॉक्टर का प्रोग्राम लेकर आएंगी, मैसेज मसाला मिक्स का प्रोग्राम करेंगे शालिनी सिंह, इसके बाद में आप विकास राय आपके साथ होंगे रेनबो सेलब, और इसके साथ में रंगे महफिल का प्रोग्राम करेंगे। तो मेरा जाने का समय आ चुका है साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है ना, क्योंकि आप अपना ध्यान रखेंगे तो सब कुछ अपना ठीक हो जाएगा।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। नंदीग्राम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन से जुड़े एक हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 CMC स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के लिए मतदान कल संपन्न हो गया। मतदान दो चरणों में हुआ। स्वीडिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल। और 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान में, जापान के आईची नागोया में हो रही है। मनु भाकर और तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है दिल के तराने गाने नए पुराने। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि आप नॉनस्टॉप गीतों का आनंद लेते हैं, लेकिन बीच बीच में हम आपसे जुड़ते हैं और कुछ काम की जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं और कुछ जानकारियाँ, कुछ बातें हमें आपसे भी मिलती हैं। आपसे क्या जानकारियां हमें मिलती हैं? आप हमें ट्रैफिक का अपडेट हम तक पहुंचाते हैं और हम वो जो बातें आप हम तक पहुंचाते हैं हम अपने बाकी लिसनर्स तक भी पहुंचाते हैं। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी जो बातें हैं, आपकी जो बातें हैं एक दूसरे के साथ होती हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं इस गीत के साथ। नमस्कार।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, इस गाने के बाद अब समय है कि हम चलें थोड़ा पीछे, यानी कि पुराने गाने की तरफ चलें। और अगला जो गीत हमने आपके लिए चुना है वो है फिल्म उस्तादों के उस्ताद से, और ये फिल्म आई थी सन 1963 में। इसका एक गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। गीत तो आप सुन ही लेंगे, लेकिन इससे जुड़ी जो बात ये है कि ये जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो आज भी अपने रहस्यमय अंदाज और रफ़ी साहब की जादुई आवाज़ के लिए याद किया जाता है। इसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, संगीत रवि का, और बोल असद भोपाली के हैं। गीत का जो पिक्चराइजेशन था वो भी क्या कमाल का था। शकीला झरने और नेचर के बीच में दिखाई देती है, जबकि रफ़ी की आवाज़ जैसे किसी अनदेखी दुनिया से आती है। प्रेम, विरह और मिलन की भावना से सजा ये गीत धीरे धीरे एक रहस्य खोलता है। और दिलचस्प बात यह है कि हो सकता है कि आपने इस फिल्म को ना देखा हो, इस फिल्म के बारे में ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन ये जो धुन है वो जब आप सुनेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो महसूस करेंगे उसको कितना खूबसूरत वो सब कुछ था।

0: एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
5: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
6: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
7: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
8: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
9: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
10: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
11: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
12: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
11: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
12: हैं? इतनी जल्दी?
11: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
13: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
14: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
15: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। दोस्तों, इस अभी जो ये छोटा सा ब्रेक लिया, ब्रेक से पहले जो गीत सुना, उस गीत से पहले मैं चाहता था कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचा दें मौसम की। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो लगातार दिमाग में हमारे चलते रहते हैं, तो ऐसा ही एक गीत था वो। और भी कई गीत हैं जो इसी तरह से हम सभी लोगों के दिल में बसते हैं और उन गीतों को हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आपको बताएंगे मौसम का हाल। मौसम की अगर बात करें तो धीरे धीरे मौसम जो है करवट बदलने की कोशिश कर रहा है और अब जो है गर्मी धीरे धीरे जाने को है और धीरे धीरे हम सर्दी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन तापमान की अगर हम बात करें तो थोड़ा थोड़ा उमस, थोड़ी गर्मी, ये तो हम अभी भी महसूस लगातार करते ही रहेंगे कुछ दिनों तक। अधिकतम तापमान लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है दिल्ली और उसके आसपास, साथ ही न्यूनतम तापमान लगभग 22 से 24 डिग्री के बीच में रह सकता है। कुछ इलाकों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि आज थोड़े तेज़ रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जैसे 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी, और कहीं कई जगहों पर ऐसे आंधी आने की भी आशंका व्यक्त की गई है और थोड़ी हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है। तो ये मौसम जो है कुछ इस तरह से कभी अपने मन के हिसाब से करवट बदल सकता है, तो आप इस मौसम में अपना ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ तो और जो हमने आपसे कहा था कि अगर आप कहीं बाहर हैं, कहीं जा रहे हैं, आपके आसपास ट्रैफिक दिख रहा है आपको, तो ट्रैफिक का हाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम अपने उन साथियों तक भी वो बात पहुंचा दें जो उस रास्ते से गुजरने वाले हैं और वहां पर उनको आसानी हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर आप अपनी बात पहुंचाएं और हम पहुंचाते हैं आप तक एक और गीत।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है दिल के तराने गाने नए पुराने। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों अब समय है कि एक और पुराने गीत की तरफ हम आगे बढ़ें। और ये जो गीत हमने आपके लिए चुना है ये है फिल्म बालिका वधु से। सन 1976 में आई थी ये फिल्म और क्या कमाल की फिल्म थी और क्या कमाल के इसके गीत थे। अपनी सादगी मासूमियत और मीठी धुन के कारण ये गीत आज भी पसंद किया जाता है जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। और थोड़ा सा और क्लू दे देते हैं इससे पहले कि हम गीत का मुखड़ा आपको बता दें, थोड़ा सा आपको भी समय देना चाहिए ना कि आप भी तो अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा गीत सुन सकते हैं आप। तो इसे अमित कुमार और सुलक्षणा पंडित ने अपनी आवाज़ दी, संगीत दिया आरडी बर्मन साहब ने और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। गीत में प्रेम का इजहार किसी भारी भरकम अंदाज में नहीं बल्कि बहुत ही सहज शरारती बातचीत की तरह से होता है। और जैसे शब्द जो है प्रेम को प्रकृति और रोज़मर्रा की खूबसूरत चीज़ों से जोड़ता है और यही मासूमियत इस गीत को सुनते समय चेहरे पर मुस्कान लेकर आती है। तो चलिए मुस्कुराते हुए सुनते हैं ये गीत।

और भाई भी टाइम हो गया कि बता दें मौसम का हाल। तो मौसम का हाल ये है कि मौसम का हाल तो बता दिया, अब ट्रैफिक का हाल बताना है आपको। तो ये ट्रैफिक का हाल भी बता देते हैं। ट्रैफिक का हाल ये है कि ज़्यादातर जगहों पर ट्रैफिक जो है स्मूथ है। हमने आपसे कहा था कि आप चाहें तो ट्रैफिक अपडेट हम तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने ट्रैफिक के बारे में बताया। हाँ, अलग अलग बातें ज़रूर आपने पहुँचाई हैं और आपकी बातें भी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे आप तक। और जो ट्रैफिक का अपडेट है वो ये है कि ज़्यादातर जगहों पर तो आज शनिवार की सुबह ट्रैफिक लगभग स्मूथ है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर अभी भी अगर आप जा रहे हैं उस रास्ते पर तो थोड़ा सा समय लेकर चलें, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक, आपको ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ट्रैफिक देखने को मिल सकता है।

लगता है, ख़ासतौर पर जब आप हौज ख़ास मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे जाते हैं आईआईटी की तरफ, तो वहाँ पर जो थोड़ा ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे जाते हैं और वहाँ पर चिराग दिल्ली और इस दोनों के बीच में जो रास्ता है वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आज़ादपुर मंडी के पास तो थोड़ा ट्रैफिक होता ही है, क्योंकि आमतौर पर लोग खरीदने वालों की जो वहाँ पर फल और सब्जियाँ हैं काफ़ी लोग जाते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा ट्रैफिक है। और जहांगीरपुरी में भी थोड़ा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 30,000 मेट्रो स्टेशन के पास भी थोड़ा ट्रैफिक है, आमतौर पर जब रास्ते मिलते हैं तो वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक होता है। तो ये रास्ता भी थोड़ा सा है ऐसा ही, वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप समय से निकल रहे हैं घर से, थोड़ा सा और जल्दी निकल सकते हैं, तो इस ट्रैफिक के समय को भी आप पीछे छोड़ सकते हैं और समय पर आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अब समय हम भी देख रहे हैं, समय हमें कह रहा है कि एक और पुराना गाना जो है आप तक पहुँचाया जाए। तो ये जो अगला गाना हमने आपके लिए चुना है, वो चुना है हमने फिल्म तीन देवियाँ से। 1965 में ये फिल्म आई थी। और इस गीत के बारे में बताएं तो ये गीत जो है मोहम्मद रफ़ी साहब की दिलकश आवाज़ में एक बहुत ही रोमांटिक गीत माना जाता है। संगीत दिया था SD बर्मन साहब ने और बोल मजरूह सुल्तानपुरी साहब के हैं। देवानंद और कल्पना पर ये फिल्माया गया था गीत। और इस गीत में बहुत आकर्षण है, जो झिझक होती है, जो बेकरारी होती है, उसको बहुत ही नफासत से ये गीत जो है पेश करता है। ख़ासकर जब हम बात करते हैं रफ़ी साहब की, तो बिना किसी अतिरिक्त तामझाम के अपनी आवाज़ की उतार चढ़ाव से गीत में जो शरारत और रोमांस दोनों भरा है वो सुनते ही बनता है। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं इसे।

फिल्म तीन देवियां से ये गीत आपने सुना। लेकिन जिस गीत की हम बात कर रहे थे, वो गीत हमने जिसके बारे में इतनी बातें बताई आपको, वो गीत कौन सा था? वो गीत था ये वाला। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई पुराना गीत बोनस में मिले तो उसको सुनना भी उतना ही मजेदार होता है।

0: देखूं।
1: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, अब घड़ी की तरफ जब देख रहा हूं मैं, तो घड़ी ये कह रही है कि अब आपसे अनुमति लेने का समय आ गया है, क्योंकि अगला प्रोग्राम आपसे थोड़ी देर में अगले प्रोग्राम में मिलेंगे हिमानी दत्ता, और प्रोग्राम होगा मैचलेस म्यूजिकार। और उसके बाद 11 बजे से आप सुन पाएंगे हमारा जो अगला कार्यक्रम है बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसे लेकर आप तक पहुंचेंगे प्रियंका वर्मा। इसके बाद 12 बजे से होंगे एक बार फिर से हिमानी आपके साथ प्रोग्राम प्लेट कूल में, और 1 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और इस प्रोग्राम में आप अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं, जो आपकी फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं उनको आप तक पहुंचाएंगे प्रियंका। तो अगले कुछ घंटों में ये गीत हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो हम तक पहुंची हैं, और आपने प्रोग्राम के बीच में अपनी जो बातें हम तक पहुंचाई, अपने सुझाव दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से इनका मैसेज आया है, साथ ही साथ मैसेज कुछ और हमारे साथियों ने किया है जिनका नाम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपने नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपकी बातें हम तक पहुंची उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ कुछ जो हमारे साथी हैं, प्रदीप सलूजा जनकपुरी से इनका मैसेज आया है, डॉलिका दिल्ली से आया है, और हमारे एक साथी हितेंद्र दास असम से, इनका भी मैसेज आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और चलते चलते एक और गीत आप सभी के लिए, और वो गीत जो है ये है, नमस्कार।

नमस्कार। अनदर ब्रांड न्यू डे, अनदर वीकेंड, द सेम स्वीट आस गेटिंग टुगेदर ऑन आर डेली मॉर्निंग रॉन्डेवू ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन, आकाशवाणी रेनबो, कमिंग योर वे लाइव ऑन द एयरवेव्स ऑफ 102.6 म्यूजिकल मेगाहर्ट्ज़। जॉइनिंग यू दिस मॉर्निंग इज योर मेलोडी बडी हिमानी मोनालिसा दाता। अ वीकेंड इज ऑलवेज द परफेक्ट टाइम टू रिलैक्स, to let go and just be yourself, a time to keep at bay the careless whispers of life.

आशा भोसले फ्रॉम द 1965 फिल्म वक्त, लिरिक्स बाय साहिर लुधियानवी, म्यूजिक बाय रवि, द अल्टीमेट क्लब सॉन्ग ऑफ दैट एरा. साहिर लुधियानवीज फिलोसफी डिलीवर्ड ब्यूटिफुली बाय आशा भोसले. एक्टर्स राजकुमार, साधना, शर्मिला टैगोर, सुनील दत्त अमंग अदर्स ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द ऑडियंसेस. बट वॉट वॉज मोस्ट unnoticed was a woman in a shimmering white gown wielding the microphone and lip-syncing to the song and making everyone on the screen act along. Yeah, we did notice her, but how many of us actually know her? That was the beginning and also the end of what anybody noticed about her. She was

0: Thank you everyone for your messages. I will take them up in just some time. And the song here, the lyrics by Majru Sultanpuri, put to music beautifully by O.P. Nayar. Geeta Dutt and Mohammad Rafi from the 1955 film Mr. and Mrs. 55. What a popular song this one has been. We've loved the lyrics and the playful essence of it. We've even hummed or sang along every time we heard it. Johnny Walker, we remember him, of course. But what about the actress? It was an amazing experience for her to be cast opposite him in a Guru Dutt film. People loved her and appreciated her. But after that one song, she vanished. Not only from the screens, but also from the minds of the people. Her name? Yasmin. It was in Bangalore where she was part of the Amateur Dramatic Society and Guru Dutt spotted her. He offered her a role which she denied. She was born Vinita Bhatt in 1937, but it was Guru Dutt who named her Yasmin. Her career meandered around before she landed this role in Mr. and Mrs. 55. Not much is known about how her life shaped up later. Though she turned out to be a one-film wonder, she did light up the screen with her presence. Time for a break. Please allow me to see you on the other side of this break.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो एचआईवी से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: Welcome back. You're with us on Akashwani Rainbow and the show is called Matchless Musica. As we are all very well aware that today, the 20th edition of

नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कल्याण मंत्रालय ने चुने हुए जिलों के श्रम बाजार विवरण जारी कर दिए हैं। पहली बार जिला स्तर पर श्रम बाजार के विवरण जारी किए गए हैं। वर्ष 2025-2026 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। विदेश अंशदान विनियम संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने की बैठक की। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवनीतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 40 से अधिक वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यवहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए विस्फोट में 15 लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल। और 20वें एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत आज से जापान के आईची नागया में हो रही है। मनु भाकर और तेजेंद्र

हरपाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक रहेंगे। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और भारत का सामना कल बांग्लादेश से होगा। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। लाइट कैमरा एक्शन सिर्फ एक फेस नहीं है बल्कि हार्ट बीट है बॉलीवुड की, जहां पर बनती है वो मूवीज जो करती है आपको निटीन, आपके इमोशंस की रोल कोस्टर राइड कराती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, इंस्पायर करती हैं और कभी कभी दिल के अंदर एक पेट्रियोटिक जज्बा भी जगाती हैं, देश के लिए कुछ कुछ दिखाने का जज्बा। So guys, let's dive into the vibrant world of Bollywood, जिसके लेटेस्ट अपडेट के साथ सब होंगे हैपनिंग गाने। इसलिए लॉगिन करें अब हमारे रेडियो ऐप या फिर चलाएं रेडियो के क्लोज, क्योंकि हम देंगे आपको बॉलीवुड डोज कहां पर आकाशवाणी रेनबो पर, जहां पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड ट्विस्ट, जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड मॉर्निंग।

राम सिया राम। जी हाँ, एक ऐसी कॉम्पोजिशन है जिसमें डिवोशन, सरेंडर और डिवाइन लव लव का एहसास बहुत ही ब्यूटीफुली बुना गया है। आपको एहसास हुआ? जी हाँ, मुझे भी हुआ। राम सिया राम, जय श्री राम। मैं हूँ प्रियंका वर्मा, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेस। जी हाँ, तो चलिए अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज ऐसे बॉलीवुड सिंगर एक्टर की जिनका आज है हैप्पी हैप्पी बर्थडे। लकी अली की आवाज़ में खुली सी सादगी है, लकी अली की आवाज़ में खुली सी सादगी है, जैसे कोई बेफिक्र सा सफ़र रास्तों की रवानी है। बस सुरों की एक मीठी सी लहर है जिसमें ज़िंदगी भी है और ज़िंदगी की कहानी भी है। एंड इंडिपेंडेंट स्ट्रीक अनकन्वेंशनल म्यूजिक डायरेक्टर, सोलफुल सिंगर एंड एक्टर लकी अली सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे गाइस। यस, 19 सितंबर 1958 को मुंबई में पैदा हुए मकसूद मोहम्मद अली, जिन्हें दुनिया बाद में लकी अली के नाम से जानने लगी, उनके फादर द लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर महमूद, जी हाँ वही थे। इसलिए बचपन से ही दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री को करीब से देखने और समझने का लकी अली को मौका मिला। लकी अली के चाइल्डहुड की बात करें तो उनकी स्कूलिंग का एक खास हिस्सा बोर्डिंग स्कूल में गुजरा। उसके बाद जब भी लकी अली स्कूल से हॉलीडेज में अपने घर आते तो महमूद साहब अक्सर उन्हें अपने साथ फिल्म सेट्स पर ले जाते ताकि लकी बचपन से ही कैमरा, लाइट्स और फिल्म मेकिंग के माहौल को करीब से समझे। 1962 की कुंवारा बाप, छोटे नवाब, एक बाप छः बेटे, गिनी और जॉनी जैसे कुछ में लेजेंडरी महमूद जी ने लकी अली को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में चांस दिया। लेकिन जैसे जैसे लकी बड़े होते गए, फिल्मों में काम करने का इंटरेस्ट उनका कम होने लगा। पिता महमूद से अलग लकी ने पैरेलल सिनेमा की तरफ रुख किया और श्याम बेनेगल साहब से जुड़ गए। श्याम बेनेगल के साथ रहते हुए लकी ने 1985 में आई त्रिशाल जैसी फिल्मों में काम किया, साथ ही उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। लकी अली की बॉलीवुड सिंगिंग जर्नी के अगर सिनेमैटिक फ्रेम में देखें तो ये सिर्फ एक प्लेबैक सिंगिंग का सफर नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज़ की कहानी है जो अपनी अलग फ्रिक्वेंसी, टेक्सचर और आइडेंटिटी के साथ लगातार उभरती रही। 1978 में फिल्म एक बाप छः बेटे के गाने वॉकिंग अलोन से प्लेबैक सिंगिंग का आगाज करने वाले लकी अली ने शुरुआत से ही अपनी आवाज में एक अलग टेक्सचर रखा। बाद में फिल्म दुश्मन दुनिया का गाना नशा नशा ने उनकी म्यूजिकल जर्नी को एक और मोड़ दिया, लेकिन बॉलीवुड और इंडी पॉप के डोमेन में उनकी आवाज ने वो खास पहचान हासिल की जो 90s के दौर में अलग आगे चलकर उनकी सिग्नेचर आइडेंटिटी बन गई। सनम मोहब्बत की कसम, इस गाने ने लकी अली को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया। 90s के यंगस्टर्स को के लिए उनकी आवाज़ मोहब्बत, सफ़र और दोस्ती और नॉस्टैल्जिया की आवाज़ बन गई। 2000 की फिल्म कहो ना प्यार है में लकी का जो एक गाना है पलकर जीना और सेकंड ना तुम जानो ना हम, ने लकी अली की आवाज़ को बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम म्यूजिकल लैंडस्केप में स्ट्रॉन्ग बना दिया। एक तरफ यूथफुल एनर्जी थी तो दोस्तों दूसरी तरफ एक सॉफ्ट इंट्रोस्पेक्टिव इमोशन, और दोनों शेड्स में उनकी आवाज़ अपनी अलग कहानी बयां कर रही। गोरी तेरी आंखें कहें कभी ऐसा लगता है अभी जाहिर ये बेकरार सफर नामा, जैसे कई दूसरे सॉन्ग्स ने उनकी म्यूजिकल आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। इस सिनेमैटिक वर्ल्ड में बीच बीच में वो एल्बम्स बनाते गए, रिलीज करते गए और कुछ फिल्मों में एक्टिंग स्किल्स को भी स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया। सुर द मेलेडी ऑफ लाइफ के अलावा कांटे, कसर, गुड लक, रन अवे में लकी अली ने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को रिटेन भी किया। दोस्तों लकी अली ने बॉलीवुड को सिर्फ गाने नहीं दिए, उन्होंने अपनी आवाज़ से इमोशंस के एक ऐसे सिनेमैटिक फ्रेम्स क्रिएट किए जहां मेलेडी के साथ कहानी भी चलती गई। कई अवार्ड्स और क्लॉथ्स के से नवाजे गए लकी अली को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कीप विनिंग हार्ट्स लकी अली विद योर सोलफुल सिंगिंग एंड टाइमलेस म्यूजिक। फिलहाल दोस्तों अब जो हम गाना सुनेंगे ना, उस गाने के बारे में अगर हम पहले आप सुनिए उसके बाद महसूस कीजिए कि मैं इस गाने के बारे में क्या कहना चाह रही हूँ। जी हाँ, मन में तो बहुत कुछ है इस गाने के लिए कहने के लिए, लेकिन बस इतना ही कहूँगी कि इस गाने को जब आप सुनेंगे तो सब आपको ये सॉन्ग नहीं लगेगा बल्कि एक ऐसा म्यूजिकल एक्सपीरियंस है जो हमें ज़िंदगी के सफ़र को थोड़ा रुक कर महसूस करने का मौका देता है। अगर हम लकी अली की आवाज़ की बात करें इस गाने में तो चलिए पहले सुनते हैं, फिर हम उनकी आवाज, उनकी सिंगिंग स्टाइल के बारे में भी बात करेंगे।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूं। बाहर क्यों बैठे थे? रवि भैया को घर ही ले आते।
1: एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं प्रियंका आपसे बातें करने के लिए। और बात आई, हम कर रहे हैं बॉलीवुड ट्रेस में। जी हाँ, जिनका आज हैप्पी हैप्पी बर्थडे था, लकी अली के बारे में बात की और उनकी आवाज़ के बारे में जो अभी हमने गाना सुना। आई होप

आपने इस गाने को काफ़ी इंजॉय किया होगा, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और सफ़रनामा उन्हीं गानों में से एक है। फिलहाल चलिए उस एक्ट्रेस की बात करते हैं जो भी जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। बात होगी दोस्तों अब उस एक्ट्रेस की जिसका आज है हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को एंटरटेन किया और अपने डांसिंग नंबर्स से बॉलीवुड में दिए कई चार्ट बस्टर्स ईशा कोप्पिकर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिनकी कहानी से बॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन तक सीमित नहीं रही बल्कि इसका एक खूबसूरत चैप्टर मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट्स की दुनिया से भी जुड़ा है। 19 सितंबर 1976 को मुंबई में जन्मी ईशा ने लाइफ साइंसेज में अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है दोस्तों। उसके बाद उनके करियर ने नई डायरेक्शन ले ली, यहीं से हुआ उनका मॉडलिंग की दुनिया में सफर जो आगे चलकर उनके ब्यूटी पैजेंट्स और फिर बॉलीवुड तक उन्हें ले गया। कॉलेज के दौरान ही ईशा कोप्पिकर की मुलाकात फोटोग्राफी और फोटोशूट्स की दुनिया से हुई, यहीं से फोटोशूट्स आगे चलकर उनकी मॉडलिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बने। धीरे धीरे उन्होंने पॉपुलर ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट्स में काम करे, जी हाँ, फिर मॉडलिंग की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने लगी। फिर आया 1995 जब ईशा ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और मिस टैलेंट क्राउन अपने नाम किया। मॉडलिंग और एडवर्टाइजिंग से बनी ये पहचान उनकी सिनेमा उनके लिए सिनेमा की दुनिया में दरवाजे खोलने लगी। और फिर 1997 में एक तेलुगु फिल्म से ईशा ने एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, यहीं से शुरू हुआ ईशा कोप्पिकर का सिल्वर स्क्रीन का सफर जो आगे चलकर बॉलीवुड तक पहुँचा। जी हाँ, और उनकी अगर हम बात कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्म्स करी हैं, उसके बाद पहले तो उन्होंने ब्रीफ अपीयरेंस दिया, उसके बाद वो बॉलीवुड में भी आई थी और उन्होंने अपना ब्रीफ अपीयरेंस दिया था। कौन सी फिल्म से दिया था? जी वो दिया था फिजा फिल्म, याद है? जी हाँ, 2000 की फिजा फिल्म से उन्होंने अपना एंट्री लिया, अपना ब्रीफ अपीयरेंस दिया, लेकिन प्यार इश्क मोहब्बत फिल्म से ईशा ने बॉलीवुड में अपना फुल फ्लेज्ड एक्टिंग डेब्यू किया। और यहीं से ईशा कोप्पिकर ने धीरे धीरे अपने एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और परफॉर्मेंसेज से ऑडियंस के बीच अपनी पहचान बनाई। कांटे पिंजर, दिल का रिश्ता, डरना मना है, LOC कारगिल, रुद्राक्ष, कृष्णा कॉटेज, एक विवाह है, सभी जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग स्किल से ऑडियंस को एंटरटेन किया। ईशा कोप्पिकर को हम देते हैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर हाल उन्हीं की एक फिल्म का गाना है, जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना है और ये उन्हीं पर पिक्चराइज्ड है, उन पे और सोहेल पर है पिक्चराइज्ड। और फिलहाल ये जो मैं कहूँगी कि इस पे जो ये गाना पिक्चराइज्ड है कि उनके एक्सप्रेशन तक सीमित नहीं है, उनके उसमें दिखाया गया कि कैसे उनकी आंखें इंतज़ार कर रही हैं किसी का। जी हाँ, उन्होंने अपनी आँखों के ज़रिए ना एक फीलिंग महसूस की। अगर आपने इस गाने का पिक्चराइजेशन देखा है, ये गाना जितना सुनने में अच्छा लगता है, बहुत ही मीठी सी आवाज़ है श्रेया घोषाल की, उतना अगर आप देखेंगे तो आप इसके साथ इतना आपको अच्छा लगेगा, आप एंटरटेन होंगे।

दोस्तों 9868107070 पे आपको हमें बताना है कि आज किस बॉलीवुड एक्टर सिंगर का बर्थडे है जिनके बारे में हमने बात की है, जिन्होंने इंडी पॉप और बॉलीवुड में अपनी अलग आवाज़, अपनी अलग टेक्सचर्ड आवाज़ से हमें टीम किया है, हमारे दिलों को जीता है। 9868107070

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

वेलकम बैक जी, आ गई हूँ मैं प्रियंका वर्मा आपके नाल आपसे बातें करने के लिए बॉलीवुड ट्रेल्स में। जब साइंस फिक्शन एक्शन और सर्वाइवल का एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में साथ आते हैं ना दोस्तों, तो ऑडियंस की क्यूरियोसिटी यानी आपकी हमारी क्यूरियोसिटी नेचुरली और बढ़ जाती है। दोस्तों अक्षय कुमार स्टार अपकमिंग फिल्म सम्मुख में से जुड़ी एक फ्रेशिंग अफ्रेश कास्टिंग अपडेट आई है और वो ये है कि एक्टर फिल्म मेकर रजत कपूर ने सम्मुख की कास्टिंग को ज्वाइन कर लिया है। कनक शर्मा के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म जो है इसमें रजत कपूर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। दोस्तों रजत कपूर का स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा से ही सटल कंपोज और डीपली नुआंस्ड रहा है। उनकी एक्टिंग की खासियत यह है उनका अंडरस्टेटेड स्टाइल जो बिना लाउड एक्सप्रेशन के भी कैरेक्टर को अपने एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस उसकी छोड़ जाता है ऑडियंस के जहन में। फिल्म की शूटिंग यूके में चल रही है। सम्मुख को लार्ज स्केल थिएटर स्पेक्टिकल के रूप में माउंट किया जा रहा है और मेकर्स ने स्टोरी और कैरेक्टर को लेकर मिस्ट्री का कर्टन अभी भी बनाया हुआ है, इसलिए रजत कपूर के कैरेक्टर के बारे में फिलहाल सस्पेंस है। वैसे एक तरफ अक्षय कुमार का एक्शन पैक्ड स्क्रीन प्रेजेंस और दूसरी तरफ रजत कपूर की सरल इंटेंसिटी, ये सिनेमैटिक कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन स्टोरी में क्या क्या इंटरेस्टिंग टर्न देगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी वक्त है एक ट्रैक का।

0: इस ट्रैक के जो एक कहते हैं ना यूएसपी है वो है वॉइसेस का जो कॉम्बिनेशन है ना, जैस्मीन और सतेंद्र के अलग अलग ट्रांजिशन के साथ एक खूबसूरत इमोशनल कैनवास क्रिएट होता है। दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल है, जहाँ एक गाना दूसरे एहसास के साथ बहुत ही स्मूथली ग्लाइंड होता है। फिलहाल अभी सुनेंगे प्रोग्राम बॉलीवुड ट्विस्ट में प्रोग्राम बीबीसी स्टम्प्ड को। सो गाइस स्टे ट्यून्ड।
1: From the BBC World Service, in association with ABC and Akashvani, this is Stumped.
2: Hello and welcome to Stumped, your intercontinental hit of news, features and debate from the quirky world of cricket. I'm Alison Mitchell in London. I'm following the England men's team for their last few T20s of the season, as well as recently spending an evening talking

0: वेल दोस्तों, इस समय मैं आ गई हूँ आपसे प्रियंका फिर से बातें करने के लिए। जी हाँ, वेलकम बैक। और हमारे साथ कौन है इस समय, लेट्स सी। हेलो,
1: हाँ जी,
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए दोस्त।
1: मेरा नाम राजेश भल्ला, एडवोकेट मेरठ कंकरखेड़े से बोल रहा हूँ।
0: पूरा अपना बायोडाटा दे दिया आपने, तो क्या बात है। एडवोकेट हैं, तो इस समय आप अपने चैम्बर में हैं या कहाँ पर हैं इस समय आप?
1: मैं मेरठ में ही हूँ, बस इतना ही बता सकता हूँ आपको।
0: हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ से थोड़ा शोर आ रहा था। तो आप एडवोकेट हैं, तो आपने वैसे सही आंसर दिया और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे दिया। इतना आप सुन रहे थे हमारे प्रोग्राम को कि जैसे ही मैंने अपना लकी अली पे बात करी और आपने फटाफट हमें आंसर दे दिया तुरंत।
1: भाई ये चांस ऐसा हो गया, बस किस्मत की बात है मैडम।
0: ओहो, किस्मत की बात है। और म्यूजिक से कितना प्यार है आपको?
1: म्यूजिक को बहुत प्यार है। देखो, मैं म्यूजिक के चक्कर में राजनीतिक डिबेट भी नहीं सुनता हूँ।
0: ये सबसे बहुत ही प्यारा आंसर आपका, पता है। और लकी अली कितना पसंद है आपको?
1: लकी अली के जो गाने हैं दिल को छूते हैं, दिल से लगते हैं, अच्छे लगते हैं।
0: अच्छे लगते हैं, दिल से गाते हैं और दिल से गाते हैं और दिल को अच्छे लगते हैं, यानी दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है।
1: जी जी, अब पता नहीं क्या बात है, ये थोड़ा सा उभार नहीं आ रहा इनके गानों में, मतलब फिल्में नहीं आ रही इनकी, पता नहीं क्या बात है।
0: नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है इस समय, उनके गाने जो है, अगर आप उनके पेज पे जाएंगे तो आप उनके पेज पे जब जाएंगे तो काफी गाने हैं। और वैसे उनके गानों में ना कहानी चलती है, एक ट्रैवलर जो होता है ना, जो ट्रैवलर की फीलिंग होती है, जो मंजिल से पहले रास्ता जो वो गुजारता है अपने साथ, रास्ते में वो खुद को एक्सप्लोर करता है। अगर आपने अपने उनके गाने सुने हैं तो आपको ऐसा महसूस हुआ?
1: सबसे बड़ी बात, हाँ जी, महसूस किया। सबसे बड़ी बात यह है कि महमूद के बेटे हैं, इस बात से भी बहुत लगाव है मेरा इनसे। अच्छा? महमूद भी मेरे को पसंद है।
0: हाँ नहीं, वो तो आइकॉनिक हैं, लेजेंडरी कॉमेडियन एक्टर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि अपने फादर के से जुड़कर अलग थोड़ा उन्होंने अपनी जो है कहानी लिखी है बॉलीवुड में।
1: कॉमेडी की जगह उन्होंने म्यूजिक गायन
0: लिया है, म्यूजिक लिया है, और उन्हें सीखा नहीं है, लेकिन वो इमोशंस के थ्रू वो गाते हैं, तो तभी हमारे इमोशंस के साथ वो कनेक्ट कर जाते हैं। और उनकी आवाज जो है वो एक उनमें लेयर्ड है इमोशंस की, अगर आपने महसूस की है, जैसे मैंने कहा एक ट्रैवलर की कहानी होती है उनके गानों में, अगर आपने महसूस किया है तो।
1: जी मैडम।
0: तो चलिए, अच्छा एक बात बताइए कि म्यूजिक का से आपसे, आपने कहा कि आपको बहुत लगाव है जिसकी वजह से आप डिबेट्स वगैरह भी नहीं सुनते हैं, तो म्यूजिक में म्यूजिक आपको क्या देता है, क्या फील कराता है?
1: म्यूजिक सुकून दे देता है, सारी जो दिन भर की थकान होती है वो सब दूर हो जाती है, इससे ये फायदा होता है मैडम। और जो है बहुत शांति से मिलती है मैडम।
0: वैसे म्यूजिक सुन के जो कॉर्टिसोल जो होता है ना, हमारा स्ट्रेस हार्मोन, वो भी कम हो जाता है, और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है। तभी जब आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं ना, तो जो हर जो कहते हैं ना कि हर आर्ग्यूमेंट एक म्यूजिकल पीस बन जाता है।
1: जी मैडम।
0: ओके, तो चलिए कुछ गाना गा के सुनाएंगे आप?
1: नहीं,
0: गा के नहीं सुना। अच्छा, ऐसी बात है, अमिताभ
1: बच्चन

0: एक डायलॉग सुना दूंगा मैडम।
1: कौन सा?
0: रिश्ते में तुम आपके बाप लगते हैं। ठीक है मैडम,
1: ठीक है। तो अच्छा एक बात बताइए, लकी अली के दो गाने मैंने क्यों कर रखे हैं, एक है कहूँ ना प्यार का ना तुम जानो ना हम, और एक है सुर का जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तो कौन सा सुनना है?
0: कौन हो प्यार
1: ना तुम जानो ना हम, क्या बात है। चलिए आपकी फरमाइश है, और लकी अली का आज जन्मदिन है तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करते हैं। आकाशवाणी रेनबो से कितना प्यार करते हैं?
0: बहुत, दिल से दिल तक,
1: दिल से दिल तक। चलिए हम भी दिल से प्ले करेंगे गाना और आपके दिल तक जरूर पहुंचेगा। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, ओके बाय।

वेल दोस्तों, ये वो गाना है जो मोहब्बत के उस फेस को कैप्चर करता है जब जहाँ दिल में फीलिंग्स हैं पता है, लेकिन जुबान अभी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है. देयर इज अ लव, देयर इज आल्सो अ मिस्ट्री, देयर इज क्लोजनेस, बट देयर इज स्टिल अ डिस्टेंस, राइट. चलिए आपके मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं. और ये है राम राम जी, पल्ला दासियाँ दा किदे अगे करिए, तू ना दिखे तो किन्नू जाके तकिए, सुना पड़ गया था दर्शकों का वेड़ा, जाने कब कहाँ क्यों बिछड़ जाते हैं, यूं कुछ अपने छोड़ जाते हैं बस कुछ यादों के साथ. ठीक, 11 बजे सुन नहीं पाए थे, लेकिन जब ट्यून इन किया तो राम जी के भजन के पावन किया समझ आ गया था कि छोटी बहन आ गई है सभी को बनाने. अपना देश हो, आध्यात्मिक हो, अपनापन हो, मधुर संगीत हो, ज्ञान का भंडार हो, कुछ भी कहो. प्रियंका जी, आप लाजवाब हो. बहुत बहुत आभार आपका. थैंक यू सो मच. रोहित खेरा जी दिल्ली 9 से आप लिखते हैं.

0: इतना अच्छे लिखते हैं, इतने खूबसूरत शब्दों का आपका कॉम्बिनेशन होता है कि बस दिल खुश हो जाता है। और बस हम आ गए हैं आपसे बात करने के लिए, ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते आप। और इसी के साथ रोहित श्रीवास्तव जी दिल्ली से लिखते हैं, बिल्कुल सही जवाब लिखते हैं। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं और साथ में कहते हैं कि उन्हें हमें 15 अगस्त को भी सुना था, और साथ में हमें कहते हैं कि ओके थैंक यू सो मच, जो आपने मैसेज लिखा है ना मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच कि आप हमें पसंद करते हैं इस, और आपने इसकी रिक्वेस्ट भी भेजी है। और साथ में मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैम्प कीर्ति नगर से भी सही जवाब देते हैं, विनोद सोनी हमें मेहना चौक से सही जवाब देते हैं, और साथ में अजय राजपूत हमें सही जवाब देते हैं, आरजे दीपा फॉर भटिंडा पंजाब। अरे कैसी हो आज ही आप, आपने लिखा है और आपने कहा है कि आज आपने भी इस पर बात की है, चलिए बहुत अच्छा है दीपा, अच्छा लगा आपका मैसेज देख के, हम कलीग्स हैं। और साथ में हेलो प्रियंका कैसी हैं, सिया राम जय राम अच्छा है गीत, जय श्री राम बिल्कुल जय श्री राम डोली, और लकी अली का सॉन्ग अच्छा है, ईशा कोपिकर का सॉन्ग बहुत पसंद है आपको, बेपना मेरा वाला सॉन्ग में भी प्ले होता है, वैसे ऐसे गाने सुनकर कौन आता है ये मुझे नहीं पता दोस्त, ये तो बस हमें पसंद है, आपको पसंद है इसलिए प्ले होता है गाना। और तरुण कोहली हमें सूरज कुंड मेरठ यूपी से बिल कहते हैं, कैसे हैं आप जी, बिल्कुल अच्छे हैं। सलीम मलिक हमें सही जवाब देते हैं, इसके साथ ठीक है गाइस, क्योंकि हिमानी आ गई है नेक्स्ट प्रोग्राम में, और उनके साथ भी आप उनके साथ जो होते हैं ना एक राइड पर निकलिएगा, जहाँ पर आई एम श्योर वो आपको एक म्यूजिकल राइड देंगी, राइट हिमानी?
1: यस आई एम ऑल सेट एंड थैंक यू।
0: चलिए ओके टेक केयर गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड, ठीक मिलूंगी 1 बजे।

0: Michael Jackson there with Heal the World and Make It a Better Place, not just for you and for me, but every other life form that exists on this planet. Going in for an itsy bitsy break. See you on the other side.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
0: वेलकम बैक, यू आर विद अस ऑन आकाशवाणी रेनबो एंड द शो इज कॉल्ड Play It Cool, and today we are talking about garbage management. A heartfelt thank you to each and every one of you who are sending in their beautiful and very heartfelt messages. The next one, this is Anushka Ishwarya from Saharanpur in Uttar Pradesh, and thank you very much for the appreciation. Truly means a lot. And she says, I also want to save electricity and water, have clean cities and people living with harmony. Absolutely. And like I said, living in harmony not only with each other, but also in harmony with nature. And nature includes plants and animals. Let's start being a little considerate and see, actually, you know, it will change the world for the better. I wish we all could do that and think likewise. And thank you to so many people who are already doing that. And not just doing that, there are so many people who are actually going out of the way and doing so much for the animals and greening the planet and so many things. So from Akashwani Rainbow, from all of us here, a big hats off to all those nature warriors. Moving ahead, and yes, she supports me. I said, you agree or not, she supports me. And the next message here has come in from Shriram, and thank you very much for the appreciation. Wants me to play Kenny Rogers. Okay, let me check if there is any Kenny Rogers number which I can play on the show right now. I would love to play that. And Sudha, I've been keeping you waiting for the track, and well, here it is.

नमस्कार। दोपहर के एक बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जिलावार आंकड़ों के अनुसार भारत के 57.8% जिलों में महिला श्रम भागीदारी दर 40% या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद के नियमों में संशोधन किया है। राष्ट्रपति शासन में पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपाल बैठकों में भाग ले सकेंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में आज से 2 दिन के देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी। वायुसेना का 9वां विमान पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत रूसी तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक शुल्क लगाए जाएंगे। और खेलों में 20वें एशियाई खेल आज से जापान के आइची नागोया में शुरू होगा। मनु भाकर और तेजिंदर पाल सिंह तुर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक करेंगे। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। जैसे सुरों का है सांस से रिश्ता, जैसे गानों का है आवाज़ से रिश्ता, सुरों का है सांस से रिश्ता। जो गाने रहते हैं हमारी जुबान पे, नक्श छोड़ जाते हैं हमारे दिलों जहाँ पर, वही गानों के बारे में पूछेंगे आपसे और बहुत सी बातें भी करेंगे आपसे, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यस मेरे वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर, जहाँ मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। सो 9868107070 9868107070 पर भेजिए वो गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, आपका दिल कर रहा है, आप कनेक्ट हो जाते हैं उस गाने से, उससे कोई याद, कोई बात, बीट्स, वाइब, जो भी है बस आपके दिल के करीब है, आप उसे सुनना चाहते हैं, तो बस भेज दीजिए अपनी रिक्वेस्ट अपने इस प्रोग्राम में मेरा वाला सॉन्ग में, जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। और फिलहाल अभी जो गाना है ना, वो है अमिताभ बच्चन की आवाज में, और वो जो गाना है ना, वो हम सब के जहन में कहीं ना कहीं है। जी हाँ, कई बार हम कहते हैं ना कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हम सही हैं, और लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए डर लगता है, लगता है ना, लेकिन हमें पता है वो रास्ता सही है और हम चलते हैं, और धीरे धीरे एक सफर एक जना शुरू करता है, उसके बाद कारवां बढ़ता जाता है।

एकला चलो रे। वैसे ये गाना जो है ना, ये शोर मचा कर नहीं बल्कि खामोशी से अपना इम्पैक्ट क्रिएट करता है, लगा नहीं इस गाने को सुनकर? जी हाँ, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगा, इनफैक्ट ये पूरी स्टोरी की इमोशनल हार्ट बीट बन जाता है। वैसे ये जो कहानी का पावरफुल इंटेंस डीपली मोटिवेशनल ट्रैक है ना, ये करेज और सेल्फ बिलीव की स्पिरिट को ब्यूटिफुली कैप्चर करता है। ओरिजिनली रविंद्रनाथ टैगोर जी की टाइमलेस कॉम्पोजिशन को फिल्म में मॉडर्न येट सोलफुल टच के साथ प्रेजेंट किया गया। अगर आपने फिल्म देखी तो आप समझ गए होंगे। मेरा वाला सॉन्ग सुन रहे हैं आप, और जहां मैं हूं प्रियंका वर्मा आपके साथ। और चलिए आपके मैसेजेस ले लेते हैं, आप कौन कौन से गीत जो हैं वो सुनना चाहते हैं, कौन कौन से ट्रैक्स आपके दिल के करीब हैं। और ये मैसेज आया है, माचिस छोड़ आए हम वो गलियां, सैनिकों को समर्पित एक सैनिक जम्मू कश्मीर से हमें लिखते हैं। देखिए आपका मैसेज फ्लैश हुआ, और मैंने सच्ची बताऊँ आपके मैसेज, आपने लिखा एक सैनिक, आपने नाम नहीं लिखा,

एक सैनिक ने न जाने हमारे कितने भाइयों की बात इस गाने के जरिए कही है। जी हाँ, छोड़ आए हम वो गलियां, मतलब ये हर सैनिक की इमोशनल जर्नी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है ना, क्योंकि गाना सिर्फ गाना नहीं है, मेलोडी नहीं है, ये जो घर से दूर रहने की फीलिंग होती है, अपनी मिट्टी की याद और ड्यूटी के लिए किए गए सेक्रीफाइस, आप हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं, उसका एक म्यूजिकल एक्सप्रेशन है, हम यही कहेंगे। आपके दिल की आवाज़ इस गाने में हमें सुनाई देगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ये मैसेज किया, और एग्जैक्ट 1:05 पर आपका मैसेज आया दोस्त। तो बस ये कहूँगी कि आप हमारे लिए, इस वतन के लिए, इस देश के लिए खड़े हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ये गाना मैंने क्यों कर दिया है, चलिए बाकी मैसेजेस में बाद में लूंगी, क्यों ना इस गाने को ही सुना जाए इस वक्त, है ना।

माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चलो। दोस्तों ये सिर्फ एक पेट्रियोटिक गाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सोल्जर के जज्बात का गहरा एहसास है। उन्होंने अपने माथे पर सिर्फ माटी नहीं बल्कि देश की इज्जत, अपनी भारत माता का गुरूर भी सजाया है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर मेरा वाला सॉन्ग। जी हाँ, और ये रिक्वेस्ट आई थी नैनीताल से, मीनू, काजल, रोहित, चाचा जी, चाची जी सुनना चाहते हैं देशभक्ति गीत। तो आपके चाचा जी सुनना चाहते हैं और आप भी सुनना चाहते हैं। दोस्तों मैंने ये गाना लगाया, आई होप आपने पसंद किया होगा। ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है। एक एक लिरिक जो है, एक एक पंक्ति जो है, वो दिल को छू जाती है। इसी के साथ गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली फिल्म, सर काइट या क्रिश 3 का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए। ओके, एक उम्र बीत गई उसे छोड़े हुए मगर दिल आज भी उसी गली के मोड़ पर खड़ा है। मकान बदल गए, शहर बदल गए, मगर वो एक बचपन था, उसी गलियों में रह गया, छोड़ आए। बेहतरीन सॉन्ग, मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैम, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली। जी हाँ, ये गाना जो है ये बहुत ही एक कहते ना कि दिल को छू जाता है। इसके एक एक जो पंक्ति है, एक एक जो जज्बात के साथ हमारे कनेक्ट हो जाते हैं। और बचपन की यादें, बचपन की गलियाँ, चाहे वो दो कमरों का मकान क्यों ना हो, आज चाहे हमारे पास कितना भी कुछ क्यों ना ही है हमारे पास, उस समय कहाँ मोबाइल, ये सब चीज़ें होती थी, लेकिन कितने खुश थे ना, पार्क में खेलते खेलते बड़े हुए हम भी। और बस चलिए, मैंने काइट का जो गाना है जिंदगी दो पल की, मैंने क्यों कर दिया है, मोहम्मद इम्तियाज जी और इसी के साथ गुड आफ्टरनून मैम, राज मूवी का सॉन्ग आपके प्यार में, अनुजा शर्मा फ्रॉम मेरठ हमें लिखते हैं। ओके, हेलो गुड आफ्टरनून आज, दिस इज कुत्सु नागा फ्रॉम कोहिमा नागालैंड, काइंडली प्ले अ सॉन्ग ऑफ द ओके दोस्ती शोले मूवी, द सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू जो जो थीता जुंजू ओशो एंड ऑल लिसनर्स। आई होप दोस्तों मैंने सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण मैंने किया हो आपके नाम का, अगर कहीं भी गलती हो तो आई एम सॉरी। और बहुत अच्छा लगा कि नागालैंड से आपने हमें यू नो मैसेज किया है। और लेकिन एक रिक्वेस्ट थी कि दोस्ती का मैं कोई भी गाना लगा दूँ या शोले का ही लगाऊँ, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम का जो प्रोटोकॉल है वो है 2000 ईयर के बाद गाने लगा सकते हैं। तो दोस्ती से जुड़ा कोई और ट्रैक है अगर आपको लगता है कि आप ही सुनना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ और ज़रूर मैसेज करना। और इसी के साथ है कि देवभूमि उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल, कविता चौहान, फिल्म हनुमान अंश, जब जिद पे आ गई पार्वती, सॉन्ग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, मेरा ये सॉन्ग प्ले कीजिए, क्योंकि ये गाना अभी तक FM पे नहीं सुना दोस्त। अगर ये लिस्ट में हमारे भी सिस्टम में होता हम ज़रूर प्ले करते। और ये गाने हनुमान अंश सीरियसली एक जो डिवाइन पावर है, जो फीलिंग है, ये जो है तो मूवी, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कुछ डिवाइन पावर है, एक फीलिंग है जिस पे हम सब कनेक्ट हुए हैं, अंतरात्मा तक ये फिल्म पहुंची है। और ये गाना भी हमारे उसमें भी हमारे भी सिस्टम में नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा डेफिनेटली प्ले किया जाएगा। और इसी के साथ मैसेज आया है कि ओके ये है हनुमानंद मिश्रा फ्रॉम बलमपुर उत्तर प्रदेश, प्रियंका मैम प्लीज एनी सॉन्ग फ्रॉम हनुमानंद मूवी। ओके दोस्त, कोशिश अभी तो मैं नहीं कह सकती हूँ की जाएगी, क्योंकि ज़रूर हमारे सिस्टम में आएगा। चलो एक गाना हमारे शायद सिस्टम में मेरे को अभी क्यों हुआ है, मैं इसके बाद कोशिश करती हूँ, अगर ये गाना है मैं भी प्रॉपर से चेक करती हूँ तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, इस ट्रैक के बाद ही लगाऊंगी। फिलहाल जिंदगी दो पल की, के की एवरग्रीन वॉइस, रिफ्रेशिंग वॉइस।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: वेल दोस्तों, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि हनुमान अंश का जो ये गीत है ये हमारे सिस्टम में है और देवभूमि उत्तराखंड से कविता चौहान जी और हनु आनंद मिश्रा जी फ्रॉम बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हमें रिक्वेस्ट की थी हनुमान अंश का, फिल्म का, इस गीत के लिए।

वैसे हनुमान अंश के इस भजन को सुनते ही सबसे पहले फीलिंग जो दिल में उतरती है वो है भक्ति और सुकून, है ना। ये भजन सिर्फ श्री राम जी के नाम को नहीं लेता बल्कि उनके नाम से जुड़ी उस डिवाइन एनर्जी और इमोशनल वार्म्थ को भी महसूस करवाता है। वेल, मैं तो इस गीत में खो गई थी और आई एम श्योर आपने भी इस गीत में जो आपने इमोशनल कनेक्ट महसूस किया होगा वो काफ़ी गहरा होगा। और वैसे भी दोस्तों, अगर हम इस म्यूज़िक इसके म्यूज़िक की बात करें तो इसका जो स्पिरिचुअल टेक्सचर है वो हर एक जो सुनता है उसको धीरे धीरे एक इनर जर्नी पे ले जाता है। कुछ पल के लिए लगता है कि सिर्फ दुनिया की सारी आवाज़ें पीछे रह गई हैं और बस एक ही धुन सुनाई देती है, राम नाम की धुन। एक्चुअली मैं भी खो गई थी और जो सोचा कि मैं कहूँ वो मैंने कहना चाहा है आपसे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर, और आपने हनुमान अंश जो ये मूवी है, पता नहीं मैं इसे एक फिल्म की तरह नहीं देखती हूँ क्योंकि इसकी रूह को समझना है तो ये कैसी कहानी है, मतलब जो भक्ति के साथ इमोशंस के साथ कनेक्ट होती है ना, क्योंकि उनके नाम आते ही दिल में एक अलग सी श्रद्धा और सुकून जगता है। चलिए, आपने भी आई एम श्योर इस मूवी को थिएटर में जाके ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है कि प्रियंका मैडम जी हमें भी हमारे नाम को भी शामिल कर लीजिए। कोलर रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालवीय। ओके, यमला पगला दीवाना का पल पल ना माने टिंकू जी आप सुनना चाहते हैं। इसी के साथ ये जो ट्रैक है, ये जो मैसेज आया गया है, आदाब। ओके, आपसे एक गीत की गुजारिश है, सुना दीजिए फिल्म दो कलियों।

और इसी के साथ हमें मैसेज आया, ये डोला रे डोला देवदास हमें के कविता हमें लिखती हैं। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, ओके यहाँ मूवी का कोई भी गाना सुना दीजिए, और इनका नाम है तरुण। ओके तरुण हमें लिखते हैं आगरा से। ओके आगरा से आपने लिखा है तरुण, तो मैं इस इनमें दो गाने हैं तो मैंने ये गाना क्यों कर लिया। आई होप आप इसे पसंद करेंगे तरुण, और इस यहाँ मूवी का है, बहुत टाइम बाद मैं सुनूंगी आप ही के बहाने। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है कि ओके ये मैसेज है, गुड आफ्टरनून प्रियंका, छोड़ आए हम माँ से है माटी, दोनों ही गाने बहुत ही खूबसूरत है, माँ से है माटी जब आप गाते हैं तो और भी प्यारा लगता है। थैंक यू डोली, बहुत अच्छा लगा, दिल से कनेक्ट कर जाते ना, हालांकि मैं भी जानती हूँ कि सुर और ताल मुझे बिल्कुल नहीं आते। इनफैक्ट मैं कहती हूँ ना कि गाना आए या ना आए गाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम जब गाते हैं ना तो क्योंकि गाना सिर्फ सुर और ताल का इसमें मेल नहीं होता, बल्कि दिल की आवाज़ होता है ना। हर इंसान के अंदर कुछ इमोशंस होते हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो पाते, और वही गाना उन इमोशंस को बाहर लाता है। जब हम गाते हैं तो मन हल्का होता है, स्ट्रेस धीरे धीरे कम होता है, दिल को सुकून मिलता है। यानी गाना एक नेचुरल थेरेपी है जैसा होता है, नेचुरल थेरेपी जैसा होता है। मैं कहूँगी इसमें पॉजिटिविटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस आता है, खुद से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। इसलिए आवाज़ कैसी भी हो दोस्तों, मैं इसमें ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आवाज़ कैसी भी हो कि लोग क्या कहेंगे उसे इग्नोर करिए। गाना सिर्फ स्टेज या किसी कॉम्पिटिशन या किसी को खुश करने के लिए नहीं गाते हम बाथरूम में गाते हैं, किचन में गाते हैं, अकेले कमरे में गाते हैं, जहाँ मन करे वहीं गाते हैं। क्योंकि जब हम अपने लिए गाते हैं ना, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, अपनी खुशी को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए आवाज़ परफेक्ट ना भी हो तो भी गाना गा लेना चाहिए, क्योंकि गाना दिल को जिंदा रखता है। फिलहाल हमें तरुण का जो चॉइस आया था दो गाने, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ यहाँ मूवी से। चलिए मैं जो गाना ही थोड़ा पेपी ट्रैक है, बहुत प्यारा इनोसेंस से भरा ट्रैक है, श्रेया घोषाल की मीठी सी आवाज। फिलहाल प्रियंका वर्मा अपनी आवाज को विराम देती है। मेरा वाला सॉन्ग सुन रहे हैं 9868107070 पे भी जीवो का नहीं चौजा बेवजह है आपके दिल के करीब।

जी हाँ, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं प्रियंका आपसे बातें करने के लिए। और मेरा वाला सॉन्ग सुन रहे हैं आप, जहाँ भेज सकते हैं वो गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं इस प्रोग्राम में। और इसी के साथ हमें जो मैसेज आया है, जी हाँ, हम उसे ऑन एयर कर लेते हैं इस समय। और जो इस समय मैसेज है वो है कि राम राम जी, राम राम जी, सुख का असली सुकून सदा से प्रभु के चरणों के पश्चात अपनों में है। ओके, अपना जिसे कह सकें समझने में जीवन बीत जाता है, वही जीवन फिर से उनके आने के बाद छोटा लगने लगता है। ये हैं अपने, हमारी छोटी प्रियंका कुछ ऐसी हैं। अपना सा एहसास तुम दूर से सबके पास, तुम मधुर संगीत का पवित्र श्वास, तुम कुछ भी कहो हमारे लिए वर्मा जी, हमारे लिए बहुत बहुत खास हो तुम। उदासी का नहीं खुशियों की वजह बना कीजिए, आते रहिएगा परंपरा अपने भाई की, मेरी बहना निभाते कीजिए। रोहित खेरा दिल्ली नौ से लिखते हैं, इतना सुंदर मैसेज लिखते हैं, इतने अच्छे भाव होते हैं, मैं कनेक्ट कर जाती। कोशिश रहेगी कि हम जल्दी आएँ आपसे मिलें और आपसे प्रोग्राम। इनफैक्ट बताइए, पता है अगर हम नहीं आते ना तो हमारा भी मन नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं आप सब। तो बहुत अच्छा लगा। दो ऋषि के साथ ये मैसेज आया है, तुम्हें कितना चाहने लगे हम, कोई भी सॉन्ग प्ले कर दीजिए। पामिला हमें कर्नाटका से लिखती हैं। प्रामिला, मैंने ये गाना जो है ये क्यों कर दिया। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, राजकुमार के संतानी जी का भी मैसेज है। इन्होंने भी कहा है कि ओके, अग्निपथ का श्री गणेश देवा सुना दीजिए। ओके, और इसी के साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमें लिखते हैं, इन्होंने भी हमें मैसेज किया है और जो रिक्वेस्ट की है, मैं पहले उनका गाना देखूँगी। पंकज जी, मैं ज़रूर प्ले करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अपने एक कहते हैं ना कि एक बात याद दिलाई है, तो डेफिनेटली मैं अभी देखूंगी। इसी के साथ प्रियंका मैम, थैंक यू। हनु आनंद मिश्रा जी लिखते हैं, क्योंकि हमने हनुमान अंश का ये भजन प्ले किया। अरे थैंक यू, तो हमें कहना चाहिए कि आपने हमें ये जो भजन है इसकी रिक्वेस्ट करी। और इसी के साथ लिखा है सौरभ और इला, सौरभ ने जर्मनी से, प्लीज़ प्ले लागी तुमसे मन की लगन फ्रॉम द मूवी पाप। बहुत ही अच्छा गाना है, मैं देखती हूँ ये गाना हमारे पास है या नहीं। वेरी नाइस प्रोग्राम प्रेजेंटेशन आज प्रियंका वर्मा मैडम जी, नाइस प्लेलिस्ट। पंकज हमें अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं। और इसी के साथ है ओके, हम ओके, ये तेरा कन्हैया हम साथ साथ का है, ये आपने ट्रैक लिखा है, ये है वरुण वाच ने, ये अलीगढ़ से हमें मैसेज आया है। राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, अनीता वर्मा द्वारका से लिखती हैं, गणपति बप्पा मोरिया जी। बिल्कुल, चलिए हमें गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है जी एस गिल का पटियाला से, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है। और इसी के साथ रेडियो लिसनर क्लब से संजय मलाकर बाबलू, आपके मैसेज कितने सारे, मैं यही देख रही हूँ। ओके ओके ओके, मैं काउंटलेस है, देखिए मैं अभी भी आपके मैसेज देख रही हूँ, ये कंटिन्यू, मुझे नहीं पता ये तो कितने सारे। मैं आपके लास्ट मैसेज पे अगर आऊँ ना तो आई एम सॉरी, आप एक दो बार ही भेज दीजिए, मैं देख लूँगी, मैं सारे मैसेज देखती हूँ। संजय मलाकर, मिसेज मीरा, मयंक कुमार, संगीता कुमारी, पुष्पा कुमारी, केवल पाक, आदर्श नगर, डी आर जे प्रियंका वर्मा जी नमस्कार, प्लीज़ अखियों के झरोके से फिल्म का टाइटल सैक सुना दीजिए। ये पुरानी है नहीं, क्योंकि पुरानी मूवी का 2001 के बाद के गाने हैं, तो मैं वही कहूँगी कि अगर आप कोशिश कीजिएगा, हमें कहते हैं ना कि वो रिक्वेस्ट भेजेगा जो प्रोग्राम का प्रोटोकॉल है। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है ओके, गाने सभी

अच्छे लग रहे हैं। मेरी हाजिरी कब लगेगी? भगवती जी हमें लिखती हैं न्यू दिल्ली से। देखिए लग गई, एकदम से लग गई। मैं चाहती हूँ कि सबकी हाजिरी लगे भाई, सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक दोस्त जरूरी होता है। फिलहाल तुझे कितना चाहने लगे हम, कर्नाटका से हमें पामिला की चॉइस आई है।

करने के लिए, और जैसे कि हमें बहुत सारे मैसेजेस आए कि गणपति बाप्पा मोरया, भगवती जी भी लिखती हैं, बहुत सारे मैसेज आए। हमें राखी का भी मैसेज आया है न्यू दिल्ली से, इन्होंने भी हमें कहा है कि अग्निपथ का हमें ट्रैक प्ले कर दीजिए, देवा श्री गणेशा। बिल्कुल दोस्त, मैंने ये गाना, ये जो गाना है जो हम सबके दिल के करीब है, इसको भी हमने क्यों कर लिया। वैसे भी दोस्तों ये हम जानते हैं कि जो गणेश चतुर्थी का जो ये फेस्टिवल है, ये एक फेस्टिवल से ज़्यादा हमें लगता है कि फेथ, पॉजिटिविटी और न्यू बिगनिंग्स का सेलिब्रेशन है ना। बप्पा का घर का आना जैसे हर दिल में एक नई उम्मीद और हर आंगन में खुशियों की रोशनी भर देता है। वैसे गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है ना, जो सारी मुश्किलों को दूर करके हमारे हमें विजडम, स्ट्रेंथ और सक्सेस की राह भी दिखाते हैं। बड़ी ही उनकी जो जो बड़ी सी सूंड होती है, हमें अडेप्टिलिटी, और जो बड़े कान होते हैं उसे पेशेंस से सुनने, और छोटी आंखें जो होती हैं फोकस के साथ देखने का मैसेज देती हैं। बस हम यही कहेंगे कि हर शुरुआत में आपका नाम रहे, हर दिल में आपका धाम रहे, दूर हो जीवन के सारे विघ्न, बस बप्पा का आशीर्वाद रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और ये मैंने जो गीत है ये मैंने क्यों कर दिया, उसके बाद में आप सबके मैसेज

0: वेल दोस्तों, आज मैसेज आया हमें कि उनमें से वो जो मैसेज था वो कॉल करते करते पीछे हो गया, क्या राधा अष्टमी है तो हमें गीत सुना दीजिए। तो बस ये कहूँगी कि राधा अष्टमी पर जो ये ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ, ये कैसी म्यूजिकल जर्नी बन जाता है जहाँ कृष्ण की धुन में राधा का प्रेम महसूस होता है और राधा का प्रेम में कृष्ण का प्रेजेंस महसूस होता है। कृष्ण एक नाम नहीं, एक एहसास है और राधा उसी एहसास की सबसे खूबसूरत धड़कन है। इसी के साथ प्रियंका वर्मा को दीजिए इजाज़त। हमारी जो नेक्स्ट प्रेजेंटर हैं, अपना नाम बताएंगी दोस्त?
1: दीपिका
0: आ गई हैं प्रोग्राम आशियाना लेके, तो ले उनके साथ भी रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दोपहर के 2 बज चुके हैं। सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में अलग अलग सरकारी संगठनों के नव नियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का विषय इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। केंद्र सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए 14 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जिलावार आंकड़ों के अनुसार भारत के 57.8% जिलों में महिला श्रम बल भागीदारी दर 40% या उससे ज्यादा दर्ज की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद के नियमों में संशोधन किया है। राष्ट्रपति शासन में पुद्दुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपाल बैठकों में भाग ले सकेंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में आज से 2 दिन के देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत रूसी तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक शुल्क लगाए जाएंगे। और खेलों में 20वें एशियाई खेल आज से जापान के आइची नागोया में शुरू होगा। मनु भाकर और तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहेंगे। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम आशियाना। सैटरडे का ये दिन है, सैटरडे की दोपहर है और जरा हल्की फुल्की होती है, हम जानते हैं, क्योंकि वीकेंड के बाद हम भी थोड़ा रिलैक्स मूड में होते हैं। तो इस सैटरडे की दोपहर में प्रोग्राम आशियाना में किस खूबसूरत से टॉपिक पर आपसे मैं बात करने वाली हूँ बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। लेकिन मेरे दोस्त, जरा इस प्यारे से खूबसूरत से गाने के साथ शो की शुरुआत कर लीजिए और फिर बस थाम लीजिए मेरा हाथ और निकल पड़िए मेरे साथ इस सफर पर, जहां पूरे एक घंटे आप होंगे, मैं होंगी और साथ ही साथ खूबसूरत सी बातें, यकीन मानिए वो बातें जो आप बस रिलेट कर पाएंगे खुद से, क्योंकि ऐसा ही है आज का मेरा टॉपिक, और साथ ही साथ प्यारे प्यारे गानों का साथ भी होगा। तो चलिए इस गाने के साथ, लाइफ इन अ मेट्रो मूवी के सॉन्ग के साथ करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत। दीपिका के साथ बने रहिए आप यहाँ

दीपिका के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। प्रोग्राम है आशियाना। गाने से पहले मैंने जिक्र किया था कि एक ऐसे टॉपिक पर आज मैं यहाँ आपसे बात करने वाली हूँ जिससे यकीन मानिए आप और मैं हम सब रिलेट कर पाएंगे। देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। हम सभी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं, अपनी लाइफ से जुड़ी चीज़ें पोस्ट करते हैं, कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो सबसे पहले जहन में यही आता है कि इसे किस कैप्शन के साथ मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करूंगा या पोस्ट करूंगी। अब मैं इसे गलत नहीं कह रही, इसे सही नहीं कह रही, ठीक है। सबका ज़िंदगी जीने का अपना अपना तरीका है और वक्त के साथ बदलना तो ज़रूरी ही होता है। अब ये वक्त का ही बदलाव है कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आज के वक्त में पॉपुलर हो चुका है। पर मैं यहाँ ये सोच रही थी आज कि क्या हम एक्चुअली ज़िंदगी जी रहे हैं इस वक्त, या फिर सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक बना रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आप भी सोचकर देखिए और मुझे क्या लगता है मैं भी आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे हिसाब से तो देखिए ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं ये सवाल तो है ना कि ज़िंदगी जी रहे हैं हम या फिर बस उसे पोस्ट करने लायक बना रहे हैं कि ऑनलाइन उसे अच्छे कैप्शन के साथ पोस्ट कर सके।

सुबह की पहली चाय पीनी है, लेकिन वो चाय सुकून भरी चाय होने से पहले उसकी एक फोटो क्लिक करनी है। दोस्तों के साथ कोई अच्छा पल जीना है, लेकिन पहले उसकी वीडियो तो बना ली जाए, सोशल मीडिया पर पोस्ट जो करनी है। कहीं घूमना है तो उस जगह को देखने, वहां यादें बनाने की फिक्र कम है, उस जगह एक अच्छी फोटो लेने की फिक्र ज्यादा है, क्योंकि एक अदद अच्छी सेल्फी की जो कीमत है वो आजकल खूबसूरत पलों को जीने से कहीं ज्यादा हो गई है। और यही है वो बात जिसकी आज मैं बात कर रही हूं कि क्या हम वाकई जिंदगी को जी रहे हैं या सिर्फ उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लायक बना रहे हैं। अब देखिए, दोनों ही चीजें मैं नहीं कहूंगी कि गलत है अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी तो जिंदगी जीना है ना मेरे दोस्त। अगर आप उन पलों में खुद को जी ही नहीं पा रहे हैं, अगर आप एक फोटो क्लिक कर रहे हैं, अगर आप एक अच्छा मोमेंट जी रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, लेकिन उस मोमेंट में आप जरा फोन को साइड में रख के अपने अपनों के साथ एंजॉय करने की जगह बस ये सोच रहे हैं कि ये जो अच्छा सा पल है ना, ये जो इमोशंस हैं, ये हमारे कैमरे में कैद हो जाए, गलत नहीं है। फोटो लेनी चाहिए, तस्वीरें लेनी चाहिए, तस्वीरें ही आगे चलकर यादें दिखाती हैं, लेकिन तस्वीरें लेना अलग चीज़ है और उन तस्वीरों को इस तरह से परफेक्ट बनाने की कोशिश करना, अलग अलग एंगल से शॉट लेना, या फिर दिमाग में बस एक थॉट होना कि अच्छी सी फोटो आ जाए जिसे मैं अच्छे कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकूं या इसकी एक अच्छी सी वीडियो बन जाए, इसमें कहीं ना कहीं हम जिंदगी जीना, जिंदगी के उन पलों को महसूस करना भूलते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? आकाशवाणी FM रेनबो, दीपिका के साथ हैं आप। प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन रहे हैं आशियाना।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ हैं आप। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं आशियाना। बात मैं कर रही हूं कि क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक अपनी जिंदगी को बनाने के लिए हम जिंदगी को जीना ही भूल गए। यहां पर एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि कई बार सोशल मीडिया पर हम ऐसी चीज़ें भी पोस्ट करते हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई नहीं होती, या जो मैं कहूँ कि हम प्रिटेंड करने के लिए पोस्ट करते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि हमारी लाइफ भी लोगों को अच्छी दिख सके। अगर किसी दोस्त ने कुछ ऐसा पोस्ट किया है तो मैं भी कोई ऐसी फोटोज या फिर वेकेशन की फोटो या कुछ तो पोस्ट करूं कि लोगों को लगे कि मेरी जिंदगी में भी कुछ है दिखाने के लिए। ये जो तुलना वाला सीन है ना, ये जो तुलना वाली बातें हैं या फिर ये सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकने की जो सोच है, ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई पल ऐसा जी रहे होते हैं जिंदगी में जिसे दुनिया के सामने हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, दिखाना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे हाथ में हर वक्त फ़ोन होता है। हम किसी खूबसूरत जगह पर होते हैं लेकिन ध्यान उस जगह पर होने की जगह फ़ोन की स्क्रीन पर होता है, और इसी बीच एक सवाल कहीं पीछे छूट जाता है कि क्या हमने सच में उस पल को जिया। अगर आप सोच के देखेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पल ऐसे ज़रूर याद आ रहे होंगे जब आपको बाद में ऐसा महसूस हुआ होगा कि फ़ोटोज़ तो अच्छी आ गई लेकिन क्या यादें बन पाई।

0: है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आज फिर लेट हो गए?
1: अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे।
0: क्यों बैठे थे बाहर?
1: क्यों ना बैठूं? बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता।
0: मुझे पता है, HIV AIDS असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित

0: एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

हाँ जी, ये है आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6। आपके साथ मैं हूँ दीपिका, और बात मैंने यहाँ पर छेड़ी है कि क्या आज के वक्त में हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या फिर उसे बस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक बना रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, पल आता है, हम मुस्कुराते हैं, कोई भी पल हो सकता है वो, फिर अचानक से हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ चल जाता है, दिमाग में ख्याल आता है, एक तस्वीर तो बनती है, और उस पल को महसूस करने से पहले हम सोचने लगते हैं इसे पोस्ट कैसे किया जाए। और बस यही वो सवाल जन्म लेता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कि क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी का एक खूबसूरत सा वर्जन बनाकर बस दुनिया को दिखा रहे हैं। हम सभी ने देखिए कभी ना कभी ऐसा किया है, चाहे कि बाहर जाकर खाना खाना हो तो खाने से पहले उसकी तस्वीर, कहीं घूमने गए जगह को निहारने से पहले कैमरा एंगल, दोस्त से मिले बहुत दिन हो गए लेकिन उससे पहले बात बाद में होगी, पहले उसके साथ सेल्फी क्लिक करके ये पोस्ट तो कर ले कि बड़े दिन बाद मिले हैं, किसी ने बर्थडे पर सरप्राइज दिया तो पहले रिएक्शन का वीडियो। ये सब करना गलत मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, यकीन मानिए। हम ये सोचते हैं कि हमें अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, लोग हमारी लाइफ के बारे में ये सोचेंगे वो सोचेंगे, या फिर सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। बिल्कुल कीजिए, पर याद रखिए कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें किसी कैप्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो बस आपकी ज़िंदगी में, आपके मन में, आपकी यादों में कैद होने चाहिए। और जब आप अपनी यादों को दिल में कैद कर रहे होते हैं, जब कुछ पल आपकी यादों में कैद हो रहे होते हैं, तो वही पल आगे चलकर ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल बनते हैं। सोशल मीडिया बिल्कुल गलत नहीं है, बुरा नहीं है, वक्त की मांग है, वक्त के साथ चलना भी चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए वक्त से। आजकल तो वैसे भी क्या कहते हैं, वो फोमो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ ज़िंदगी जीने के बारे में भी सोचिए। और फिलहाल यहाँ दीपिका के साथ बने रहिए, प्रोग्राम आशियाना, ये गाना आप तक पहुँच रहा है, एंजॉय कीजिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ। बातें हो रही हैं कि क्या जिंदगी को जी पा रहे हैं हम, या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लायक बना रहे हैं बस उसे। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि यादें जो हैं वो तस्वीरों में कैद कर लेनी चाहिए, क्योंकि बीते हुए पल लौट कर नहीं आते हैं, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वो लम्हा लौट कर नहीं आ सकता। बात पूरी तरह सच भी है, करनी चाहिए तस्वीरों में कैद अपनी यादें, लेकिन उन यादों को दिल में भी कैद करना चाहिए, ताकि जब वक्त आगे बढ़ जाए तो आपको ऐसा एहसास हो कि आपने वो पल जिया था। क्योंकि अगर आपको ये एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि आपने वो पल जिया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो आपसे पीछे छूट रहा है। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस प्रोग्राम में, यानी कि आशियाना में, दीपिका के साथ बने रहिए।

एक चीज मैं और यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, जब बात ये हो रही है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक बना रहे हैं हम जिंदगी को या जिंदगी जी भी रहे हैं, यहाँ एक चीज मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि कई बार सोशल मीडिया पर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करने लगते हैं, जिस तरीके से बिल्कुल शेयर ना करना भी आज के वक्त में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रहने जैसा है। हाँ, वो आपकी चॉइस हो सकती है, आप बहुत प्राइवेट हों, आपको बिल्कुल कुछ शेयर करना अच्छा ना लगे, दैट्स ओके। लेकिन कई बार हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं जो सेफ्टी के लिहाज से भी सही नहीं है। ऐसे में आप जब भी कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपको क्या पोस्ट करना चाहिए, आपको क्या पोस्ट नहीं करना चाहिए। कहीं दुनिया को दिखाने, अपनी ज़िंदगी दिखाने की जो चाह है उसमें आप कोई गलती ना कर बैठे। थोड़ा रुकिए, सोचिए किन तस्वीरों को पोस्ट करना है, किन को नहीं करना है। कई बार हम अपने पल पल की जानकारी देते हैं, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं, ऐसे इमोशंस शेयर कर देते हैं जो शायद सोशल मीडिया के लिए नहीं बने हैं, जो हमारे दिल के लिए बने हैं, हमारे अपनों से शेयर करने के लिए बने हैं। बस इतना ही, इस बात को याद रखिए जब भी आप कुछ शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया पर। फिलहाल यहाँ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ बने हुए हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना। इस साथ को यूं ही बनाए रखिए।

फिल्म मैं वापस आऊंगा से इस ब्यूटीफुल से कंपोजिशन को आपने अभी यहाँ पर सुना। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं, प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन रहे हैं आशियाना। और आज मैंने जिक्र किया कि कैसे हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लायक जिंदगी को बनाने की जद्दोजहद में जिंदगी जीना भूलते जा रहे हैं। देखिए, एक जिंदगी हम ऐसी जी रहे हैं इस वक्त जहां पर कभी सुबह की चाय ठंडी हो जाती है, कभी कमरे में कपड़े बिखरे होते हैं, कभी मन बेवजह उदास होता है, कभी छोटी सी बात पूरे दिन को खुश कर देती है। और एक जिंदगी पता है कौन सी जी रहे हैं, जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, जहां सुबह एकदम परफेक्ट है, चाय का कप एकदम एस्थेटिक है, कमरा बिल्कुल एकदम सजा हुआ है, हर शाम सनसेट एंजॉय किया जा रहा है, हर वीकेंड कोई खूबसूरत जगह है और हर खुशी के पास एक अच्छी सी तस्वीर है। अब इन दोनों जिंदगियों को जीने में पीछे जो छूट रहा है वो हम हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात का रखिए आप ख्याल कि बेशक सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी या फिर अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें पोस्ट कीजिए, लेकिन ज़िंदगी को जीना बिल्कुल मत भूलिए। और इसी के साथ जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, कुछ भी पोस्ट करते वक्त सेफ्टी का ध्यान भी ज़रूर रखिए। फ़िलहाल यहाँ दीपिका को इजाज़त दीजिए, 4 बजे से दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी मैं, कराऊंगी प्रोग्राम अल्फा जैन, और यहां 3 बजे से आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर। तो बस आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 एफएम रेनबो के साथ आपको बने रहना है, 4 बजे दोबारा मुझसे मिलना है।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: एक चोट, एक हादसा और जिंदगी बदल सकती है, लेकिन सही फर्स्ट एड से जिंदगी फिर से संभल सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। दुर्घटना कभी बताकर नहीं आती, लेकिन सही समय पर दी गई फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा किसी की जान बचाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। घटना के बाद के शुरुआती कुछ मिनट कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन जाते हैं। यही विषय हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का, फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर। आज हम जानेंगे कि गंभीर चोट की स्थिति में क्या करें, क्या ना करें और मरीज को सुरक्षित तरीके से अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: और हमारे साथ हैं डॉक्टर सचिन महेश्वरी, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: थैंक यू सो मच।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर क्या है और दोनों में क्या अंतर है।
3: जी, जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, प्राथमिक जो केयर होता है, वो जो आपके जो जब आपको चोट लगती है या कोई भी आपदा आती है या कोई भी आपको इंजरी होती है, तो उसमें जो आपको जो फर्स्ट जो रिस्पांस होता है, जो बाईस्टैंडर वहां पे जो मौजूद होते हैं वो देते हैं। और ट्रॉमा केयर होता है, तो जैसे कि मान लो, अब अगर ट्रॉमा नहीं भी है, जैसे मान लो स्नेक बाइट हो गया है ना, या बर्न हो गया, तो वो मतलब वहां पे जो फर्स्ट एड होगा, वो जो प्राथमिक चिकित्सा होगी, वो आपको फर्स्ट एड के नाम से खिलाया जाएगा। वेयर इज ट्रॉमा केयर इज टोटली डिफरेंट, अलग से वो है, जिसमें कि खास करके जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं या ऊंचाई से गिरना होता है या अन्य जो ट्रॉमा कंडीशंस होते हैं, जिसमें आपको प्राथमिक उपचार जो होता है वो आपको जो केयर होती है उसको अलग से कहा जाता है।
2: डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो हमें फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या करना चाहिए।
4: देखिए, फर्स्ट एड की बात करें, जनरली फर्स्ट एड को हम यानी छोटी इंजरी में कंसीडर करते हैं। ट्रॉमा केयर हमारे जो एक्सीडेंटल केसेस, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हम इसे मेजर एक्सीडेंट या स्नेक बाइट बर्न के केसेस हैं, इस टाइप के केसेस में यूज करते हैं इनको। फर्स्ट एड में सपोज जैसे कि हमारा कोई पैर, हम चल रहे हैं, पैर में हमारी स्प्रेन आ गया, तो उस केस में हमें बेसिक हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हमारे जैसे रेस्ट करना चाहिए, आइस कंप्रेशन देना चाहिए और लिम्ब एलिवेशन करना चाहिए। और अगर कोई हमारा सपोज हमारा ट्रॉमा के एक्सीडेंटल केसेस हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट है, वहां पे उस केसेस के लिए सबसे पहला जो लेटेस्ट गाइडलाइन में आजकल है, हमें उसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो उसको रोकना चाहिए, और उसके बाद फिर हमारा जो एयर वे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इसको मेंटेन करके रखना चाहिए।
2: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होए। चोट किसी को भी लगे, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया, लेकिन देख के दर्द तो होता ही है और बाद में कुछ देर तक हमारे शायद जहन में भी रहता है। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर। तो डॉक्टर साहब, हम तो जानना चाहेंगे कि अगर किसी को चोट लगे तो इमीडिएटली हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए, ट्रॉमा जो है उसमें देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा इंजरी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या हल्की सी चोट है, जैसे आप फिसल गए, सीढ़ी पे गिर गए, थोड़ी बहुत चोट लगी है। तो पहले तो सीन सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आप जहां पे हैं कि कहीं आप उसको बचाने जा रहे हैं, किसी को मान लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है उसको बचाने जा रहे हैं, तो कहीं आप अपने आप को डेंजर में तो नहीं डाल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वहां पे मान लो स्पिल हो रखा है, पेट्रोल डीजल आग छोटी सी लगी हुई है, उसमें ऐसे कंडीशन में बड़ा डेंजरस हो सकता है, या व्हीकल एक टेढ़ी सी व्हीकल जो है जो उल्टी पड़ी हुई है उसमें आप जा रहे हैं किसी को निकालने, तो वो व्हीकल पूरी टेढ़ी हो सकती है, आपके ऊपर भी गिर सकती है। तो सीन सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने आप को बचाते हुए, उसके बाद जो आता है कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लीडिंग आप उसमें देखिए, पहले ABC होता है, उससे पहले आपका ब्लीडिंग कहीं मेजर ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है तो पहले पेशेंट को एसेस करना है। तो पहले पेशेंट को एसेस करेंगे तो एयरवे देखते हैं कि भाई वो कहीं सांस ले रहा है कि नहीं, या उसके एयरवे पेटेंट है कि नहीं, और दूसरा ब्रीदिंग है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, और तीसरा होता है सर्कुलेशन कि यानी कि वो उसकी पल्स, या तो कई बार क्या होता है पल्स लोग नहीं जान पाते हैं कि पल्स कैसे देखना है, लेकिन अगर वो कॉन्शियस है, बातें कर रहा है और सांस ले रहा है तो हम समझ लेते हैं कि कोई मेजर वो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फिर हम देखते हैं कि कहां से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो उसको हमें रोकना, तुरंत उसको रोकना जरूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट।
0: जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि अगर रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो जब होता है और जब तक हम उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसके बीच में अगर कोई आसपास है तो उन्हें क्या करना चाहिए?
2: जैसे अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो रहा है और उसको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें सबसे पहले उसको बाइंड, हमारे पास कोई भी कपड़ा हो उसे टॉर्निकेट कहते हैं, उसके ऊपर जिस जगह चोट लगी है उसके ऊपर उसको बांध देना चाहिए, तो उस जगह की सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी, इससे वहां पे ब्लीडिंग के चांसेस कुछ कम हो जाएंगे। और अगर हमारा वुंड है, मतलब कि घाव अगर गहरा है, कोई हमारे पास साफ कपड़ा है अगर उस समय, तो उसमें से घाव से ब्लीडिंग हो रही, तो उस कपड़े से हमें उसको ढक देना चाहिए और उसमें दबाव प्रेशर देके रखना चाहिए जिस जगह ब्लीडिंग पॉइंट अगर हमें दिख रहा है। सपोज कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ है कि जिसमें हड्डी टूटी हो और वहां से अगर धमनी से ब्लड का रक्त स्राव हो रहा हो, स्पर्ट जिसे कहते हैं, तो उस पर कंप्रेशन देके या अपने साफ कपड़े से या हाथ से किसी भी तरीके से उस पर कंप्रेशन देके रखना चाहिए, तो इससे ब्लीडिंग के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं जब तक कि हमको जैसे एडवांस फैसिलिटीज प्रोवाइड ना हो जाए उसमें, और इमीडिएटली उसको नियर बाय हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए।
0: कई बार होता है कि कोई बेहोश हो जाए तो उसमें हमेशा ही एक माइंड में रहता है कि उनको पानी पिलाएं या नहीं पिलाएं, तो क्या करना चाहिए डॉक्टर संजय?
1: हाँ जी, अगर कोई बेहोश है तो ऑब्वियसली वो चीज को पानी को घुटक नहीं सकता है ना, वो उसके कफ रिफ्लेक्सेस भी नहीं है, घटक नहीं सकता, तो उसके मुंह में पानी डालेंगे तो वो चांसेस हैं कि उसके लंग्स में जाने के और उसको नुकसान करने का। ऐसे कंडीशन में तो कतई ही उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए, है ना, उससे और उसको नुकसान हो सकता है।
0: और किसी की अगर हेड इंजरी हो या इस तरह से हो तो तब क्या करें, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए?
2: बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर किसी को हेड इंजरी हो, इसमें इंजरी कई तरीके की हो सकती है, कुछ इंजरीज ऐसी होती है हेड इंजरी में कि हमें ऊपर से दिखती है कि ऊपर से घाव दिख रहा है, ब्लड हमें दिख रहा है कभी, और कभी कभी इंजरी ऐसी होती है कि सपोज जैसे स्कूटी से जा रहे हैं, स्कूटी से अचानक स्पीड ब्रेकर आया, हम गिर गए, इसमें क्या होता है कभी कभी इंजरी ऊपर से नहीं दिखती है लेकिन अंदर, इसे हम लोग कंट्यूजन या काउंटर कूप इंजरी कहते हैं, वो हो जाती है। इस केस में हमें पेशेंट को या विक्टिम जो स्टेबलाइज करके और अगर सर्वाइकल इंजरी, इसमें स्पाइनल इंजरी का बहुत खतरा होता है, सर्वाइकल इंजरी अगर इसमें इंजरी हो जाती है, अगर ध्यान नहीं दिया तो इसमें हमारे हाथ पैर में लगवा पैरालिसिस कह सकते हैं, क्वाड्रीपैरालिसिस हो सकता है, इसलिए इमीडिएटली कोई भी रोड साइड हेड इंजरी है हमें उसको सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करना चाहिए और इमीडिएटली उसको किसी अस्पताल पे ले जाना चाहिए उसको।
1: इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे रोड साइड जैसे हेलमेट पहना हुआ है तो सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हेलमेट निकालने की कोशिश करते हैं, तो हर हमेशा ऐसा करना जरूरी नहीं होता है। पहले आप व्यक्ति से बात करें, अगर वो कॉन्शियस है, सांस ले रहा है, और कई बार क्या होता है कि हेड इंजरी हुई है ना, साथ साथ में नेक इंजरी भी है, उसमें हेलमेट निकालना थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे में अगर आपको जैसे मान लो अगर वो सांस नहीं ले रहा है या आपको CPR करना है या आपको असेसमेंट करना है कि वो अनकॉन्शियस पड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में हेलमेट निकालना जरूरी होता है, लेकिन हर केस में ये जरूरी नहीं होता।
0: जैसे कि आपने अभी सीपीआर के बारे में कहा, तो सीपीआर क्या है?
1: हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप, वैसे तो सभी को आना चाहिए ये सीपीआर, बेसिक जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, सांस नहीं ले रहा है और उसकी जो हार्ट रुक गया है, तो ऐसे कंडीशन में चेस्ट कंप्रेशन देना होता है। तो उसमें हम जो बिल्कुल आपका जो छाती का बीच का हिस्सा होता है, उसमें हम अपने जो पाम का जो हील होता है उससे हम उसको कंप्रेशन देते हैं और इसको 100 से 120 बार हम कंप्रेस करते हैं, उसको पूरा रिकॉइल होने देते हैं। 5 से 6 सेंटीमीटर का दबाव आना चाहिए उसमें, और बीच बीच में हमें रेस्क्यू, अगर ब्रीदिंग नहीं कर रहा तो रेस्क्यू ब्रेथ्स भी देना होता है, 30:2 रेशियो में 30 बार कंप्रेशन फिर 2 बार ब्रेथ्स। इसको हम सीपीआर करते हैं जब तक कि हमारे पास प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं आ जाता है या एम्बुलेंस नहीं आ जाती है।
0: तो कब देनी चाहिए हमें सीपीआर, किस कंडीशंस में? मतलब
1: जैसे कि अगर वो अनकॉन्शियस पड़ा है, सांस नहीं ले रहा है और वो उसका हार्ट, आपने पल्स फील किया, पल्स नहीं आ रही है, तो ऐसे में मान लेना चाहिए कि उसका हार्ट रुक गया है। और तो ऐसे कंडीशन में उसको हम तुरंत, अगर हम बिल्कुल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट किया, कहीं पे भी जो इंजरी हुई है वहां पे हम हैं, तो इसको तुरंत हमें स्टार्ट करना चाहिए।
0: तो कोई भी दे सकता है सीपीआर?
1: कोई भी दे सकता है अगर उसने सीखा हुआ है तो। बहुत आसान है,
0: जैसे कि आपने हमें प्रोसीजर बताया किस तरीके से देते हैं। डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जैसे हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कहा था कि कई बार बर्न हो जाता है, कोई किचन में काम कर रहा है या घर में लग गई या कोई फैक्ट्री वगैरह में है, जल गया, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए?
2: बर्न की इंजरी में हमें सबसे पहले तो ये ग्रेडिंग में हो जाता है किस तरीके से, किससे हमें बर्न हुआ हो। सबसे पहले सीन सेफ्टी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमें अपने को सीन सेफ्टी उस जगह लेके आना है, अपने आप को सेफ रखना है, नंबर एक। दूसरा, इसमें कैटेगरी होती है बर्न की केसेस में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, किस कैटेगरी का बर्न हुआ है। अगर फर्स्ट डिग्री कैटेगरी का बर्न है, सपोज तो उसमें रेडनेस और स्वेलिंग हल्की सी होती है, ऊपर की स्किन की एक परत निकल जाती है इस पर हमें, और दूसरी कैटेगरी सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री इज सो उसमें हमारा डीप बर्न के कारण इंजरी हो जाती है इसमें। सेकंड डिग्री में जो होता है पेनफुल बहुत हो जाता है इसमें, और ब्लिस्टर्स डेव डाउन। इसमें पहला काम हमें करना चाहिए कि रनिंग वाटर में, कोल्ड रनिंग वाटर में उसको ठंडा करके, मतलब वॉश करते रहना चाहिए इसके, और कोई साफ कपड़े से उसके ऊपर एक कवरिंग कर देनी चाहिए ताकि इसमें रगड़ ना लगे इस तरीके से, और इसमें हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये फिर इमीडिएटली हमें नियर बाय हॉस्पिटल जाकर उसको मैनेज करना चाहिए।
0: और अगर जैसे किसी के जैसे लग जाती है तो क्या हम कुछ क्रीम या वॉन्स कुछ लग इमीडिएटली कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, क्रीम वगैरह जो मतलब जो बेसिक हमारे घर में जनरली मिल जाती है उसको एक अप्लाई कर देना चाहिए उस पर उसको।
1: इसमें एक चीज रहता है कि कुछ लोग ना इसमें टूथपेस्ट लगा देते हैं, कुछ लोग ऑयल लगाते हैं, घी लगाते हैं, या फिर कई कुछ लोग तो मड लगा देते हैं। मैं, मुझे याद है मैं जब लोकनायक हॉस्पिटल में था तो एक बच्चे को लेके आए उसके माँ बाप, और उसको जला हुआ था काफी ज्यादा, वो पानी से जल गया था, उसके ऊपर वो नमक लगा के लेके आए थे। तो कहते हैं ना कुछ जले हुए पे नमक लगाना, अब किसी ने उनको राय दी थी कि भाई जले पे नमक, तो वो इतना मतलब वो बच्चा बेहोश था उसमें। तो इस तरह की चीजें क्या नहीं करना है, क्या करना है, ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं करना है,
0: क्या नहीं करना। हाँ, तो जलने के जैसे कई बार कहते हैं कि निशान नहीं जाते, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ली जाए तो क्या जले के निशान भी चले जाते हैं?
2: ये तो ट्रीटमेंट के बाद अगर हील हो जाता है उस पर डिपेंड करता है किस तरीके के निशान है। इसे केलॉइड कहते हैं, कभी कभी स्किन इकट्ठी हो जाती है, केलॉइड बन जाता है, तो वो बाद में अगर कॉस्मेटिकली अगर आप चाहें तो उसको सर्जिकल स्किन स्पेशलिस्ट से जाके करा सकते हैं। अदरवाइज अगर छोटे छोटे निशान होते हैं जलने के, तो वो टाइम के साथ चले भी जाते हैं अगर हल्के निशान होते हैं तो।
0: जैसे कि हम रोड साइड एक्सीडेंट्स की भी बात कर रहे थे, तो अगर कई बार एक्सीडेंट्स होता है, किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो बाय द टाइम हम हॉस्पिटल पहुंचे तो और क्या क्या कर सकते हैं हम?
1: सबसे पहले देखिए, जो कोई भी ट्रॉमा में गुजरा है उसको पेन, एक कई बार बहुत सीवियर पेन हो रहा होता है, या फिर एंजाइटी बहुत होती है ना, घबराहट भी बहुत हो रही होती है, तो इसके वजह से भी ना ब्रीदिंग थोड़ा सा तेज हो जाती है ना, उसको ऐसा महसूस हो सकता है कि ब्रीदिंग, अगर वो बात कर रहा है सही ढंग से, है ना, सांस थोड़ा सा तेज हो सकती है, लेकिन अगर वो कॉन्शियस है, बात कर रहा है, कहीं स्लरिंग ऑफ स्पीच नहीं है, है ना उसको, या आंखों में देख

0: में कोई दिक्कत नहीं है या कोई और जैसे कि वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसको हमें बहुत ज्यादा मेजर अभी फिलहाल में कोई इंजरी नहीं है और उसको हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।
1: तो हॉस्पिटल ले जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: जी हाँ, उससे हम बात करते रहें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसको हम सोने ना दें, क्योंकि हमें अगर वो सोएगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि वो उसकी मेंटल स्टेटस क्या है। उसके पानी ना दें, उसको खाना ना दें, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इंजरी हमें दिख रही है, जैसे मान लो पैर टूट गया है, तो उसको स्प्लिंट करके लेके जाएं, उसको बहुत ज़्यादा हिलाएं दुलाएं नहीं। और अगर कहीं ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग जैसे कि हमने बताया उसको प्रेशर बैंडेज करके उसके ऊपर हाथ रख के उसको कोई भी साफ कपड़े से उसको दबा के, और कई बार ये होता है कि जैसे मान लो एक पूरा रुमाल रखा हुआ है हमने और वो पूरा सोक हो गया ब्लड से, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा रुमाल लेके सोक्ड वाला रुमाल को फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो सोक्ड वाला रुमाल है जो उसी के ऊपर आप एक और साफ रुमाल रख के उसको प्रेशर बैंडेज दीजिए उसको, है ना। ऐसा नहीं है कि पहला वाला, तो वो प्रेशर से और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आप उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जा सकते हैं।
1: आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे?
2: हाँ, बस ये ठीक है, बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने। बस इसमें कि जो बताया डॉक्टर साहब ने कि ब्लीडिंग पॉइंट है कैसे करना है, कोशिश करना चाहिए कि हमें अगर उसको लैटरल मतलब कि एक करवट की साइड जब भी ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक करवट करा के लेके जाना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस किसी इंजरी के कारण या उसने खाना खाया हुआ है तुरंत उसने वोमिट कर दिया अगर, तो वो हम करवट करेंगे तो बाहर चला जाएगा, फेफड़ में नहीं जाएगा, तो ये हमारा एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं इसे, तो इससे हम बच सकते हैं और ये जानलेवा हो जाता है कभी कभी।
0: एक चीज और है इसमें कि स्पाइन इंजरी का हमें ख्याल रखना चाहिए, है ना। ट्रॉमा में हमेशा हम लोग ज्यादातर जो इसमें ट्रेंड नहीं होते हैं, बायस्टैंडर्स होते हैं, वो इस चीज का नहीं देखते हैं कि भाई अगर हेड इंजरी है, नेक इंजरी है, तो स्पाइन इंजरी हो सकती है, तो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा आपको मूव नहीं करना है पेशेंट को, है ना। स्पाइन को स्टेबलाइज करते हुए उसको एक स्पाइन बोर्ड आता है, जब वो हॉस्पिटल वाले आते हैं या एम्बुलेंस वाले आते हैं तो स्पाइन बोर्ड के साथ वो उसको ट्रांसफर किया जाता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: ओम शांति।
1: ओम शांति, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा पूछना है कि इंसेक्ट बाइट, स्नेक बाइट और बहुत पेन भी होता है, तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा क्या दी जाए?
0: जी देखिए, स्नेक बाइट में क्या होता है कि ज्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि नॉन पॉइजनस स्नेक के बाइट से भी आदमी मर सकता है। उसका रीजन ये होता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो इसको डरने से वो शॉक में चला जाता है। तो ऐसे में सबसे जो बेसिक वो होता है कि आप उसको रीअश्योरेंस दें कि कुछ नहीं है, कि 90% जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, सिर्फ 4 स्नेक्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। तो ऐसे अगर आप उनको बताएंगे कि 90% जो स्नेक्स होते हैं नॉन पॉइजनस, लैंड स्नेक्स जो होते हैं, ज्यादातर सी स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, लेकिन जो लैंड स्नेक्स होते हैं ज्यादातर 90% केसेस में वो नॉन पॉइजनस होते हैं। तो उनको रीअश्योरेंस जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग क्या करते हैं कि कई लोग उसको जो बाइट जहां पे होता है उसको सक करते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है, या उस पर कुछ केमिकल लगाते हैं, या उसको चीरा मार देते हैं, या टॉर्निके भी बांध देते हैं, या और भी उपचार करते हैं, वो सब चीज नहीं करना होता है, है ना। अगर ज्यादा से ज्यादा आप उसको वॉश कर सकते हैं सिंपल सोप एंड वाटर से, और उसको इमोबिलाइज करना बहुत जरूरी होता है, है ना, कि उसको ज्यादा चला के नहीं लेके आए मरीज को, है ना, क्योंकि जितना चलेगा उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वो जो पॉइजन है वो फैलेगा। तो इसमें प्राथमिकता उपचार यही है कि रीअश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो डरे नहीं, उसको बात करते रहे, उसको रीअश्योर करते रहे और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके आए।
1: आप डॉक्टर सचिन इस पर कुछ एड ऑन करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे?
2: जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि उसको जो भी चीजें बताई वो ठीक है, प्राथमिकता पर उसको रखना चाहिए। और अगर कोई सपोज अगर हमारे पास कोई पॉइजनस स्नेक है उसके साइन सिम्टम हमें दिख रहे हैं किसी भी तरीके के, मसल्स वीकनेस या जो भी है, पर्सन बेहोश होता जा रहा है, उसके हाथ पैर में एकदम वीकनेस ही फील हो रही है, सांस में सांस नहीं आ रहा है, या हृदय की धड़कन हमारी कम हो रही है, अगर हम नब्ज पकड़ के देखते हैं इमीडिएटली अस्पताल में लेके जाते हैं उसको, एज पर सिम्टोमेटिकली एंटी स्नेक वेनम होता है, वो ट्रीटमेंट का अस्पताल का पार्ट है, वहां पर तुरंत उसको दिया जाता है और वो उससे होपफुली रिकवर कर सकता है।
0: एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा कि जो स्नेक को ना कई बार क्या लोग ना उसको पकड़ने के लिए चेष्टा करते हैं, है ना, या उसको मारने के लिए, तो ये सब नहीं करें। ज्यादा से ज्यादा अगर फोटो खींच सके तो वो, है ना, वो लेके आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा समय इसमें जाया ना करें कि उसको पकड़ के लेके आना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है।
1: लेकिन जैसा कि आजकल डॉक्टर साहब जंगल सफारी का बहुत ट्रेंड है, लोग जाते हैं सफारीज करते हैं, तो यूजुअली कई बार होता है मॉस्किटो बाइट हो जाती है, कई बार तो आईज में हो जाती है, तो आईज पूरी स्वॉलन हो जाती है,

0: और मोबाइल नेटवर्क नहीं होता, डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाता, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम कैरी कर सकते हो कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, स्नेक बाइट या मॉस्किटो बाइट, तो हम इमिडिएटली कर सकें।
1: अब अगर सपोज हम ऐसी जगह जा रहे हैं, हमें डाउट है कुछ भी, तो इसके लिए हमें वैसे तो इंजेक्टेबल्स होते हैं, लेकिन ठीक है हमारे पास उस समय इंजेक्टेबल तो नहीं हो पाएंगे, हमें अपने उसमें एंटी एलर्जिक टैबलेट रख के ले जाना चाहिए जो हमारे कॉमन में भी, जो जुकाम में भी हमें फ़ायदा करती हैं, तो वो कहीं कुछ हद तक इसमें भी फ़ायदा कर सकती हैं। जब कभी स्नेक बाइट हो गया, कभी बी बाइट कर दिए, तो हम इमिडिएटली जैसे कि सिटीजिन ही ले लेना चाहिए, तो इससे कुछ हद तक फ़ायदा मिल सकता है जब तक हम प्रॉपर उसकी सिचुएशन सुविधा ना ले सकें हॉस्पिटल।
0: तो डॉक्टर साहब की ये तो हमने आपने हमें बताया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें हम कुछ घरेलू उपाय कर सकते हो? अगर कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है, हमें कोई अंदरूनी चोट लग गई है, तो हम यूजुअली घर पे ले गए तो खुद कुछ कर सकते हो, या सभी केसेस में हमें डॉक्टर्स के पास जाना जरूरी
2: नहीं,
0: है?
2: नहीं, सब में जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर मेजर ट्रॉमा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, फ्रैक्चर आपको दिख रहा है कि टूटा हुआ टांग है, या वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है ना, वो पैर ही नहीं रख पा रहा है, सूजन बहुत ज्यादा है ना, और ब्लीडिंग हो रही है, तो इन सब कंडीशन में, और अच्छा अगर हेड इंजरी है, बेहोश हो चुका है, कई बार एक बार बेहोश हो गया फिर होश में आ गया है ना, या दौरे पड़ गए, या बोल नहीं पा रहा, या लड़खड़ा रहा है बोलने में, या उसको आंखों में देखने में दिक्कत है, या कहीं कान और नाक से ब्लीडिंग हुई है ना, और वॉमिटिंग कर रहा है, इन सब कंडीशन में ले जाना अति आवश्यक होता है। बाकी अगर छोटा मोटा चोट है, गिर गया, छोटा सा उपचार है ना, तो वो अपने घर पे भी हम बैंडेड लगा के तो करते ही हैं इलाज।
0: और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए जब तक हम बाय द टाइम उनको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर जाएं? जैसे कि एक्सीडेंट हो गया है, टक्कर हो गई है, कुछ भी है, मतलब हम बाय द टाइम लेके जाते हैं, तो कई बार कुछ ऐसी चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए?
1: जैसे कि वही बताया कि हमें ये इंजरी पे, इंजरी टू इंजरी डिपेंड करता है हमारा, पेशेंट की जो सबसे पहले जनरल कंडीशन जिसे जीसीएस हम लोग मेडिकल उसमें कहते हैं कि वो हमें देखना चाहिए कि वो होश में है कि नहीं है, होश में है, बातें कर रहा है बिल्कुल, अगर कंफर्टेबल है, सांस में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ब्लीडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है हम अपने घर जा सकते हैं, जो बताया डॉक्टर साहब ने कि छोटी में। अगर हमारे पास इससे थोड़ी गंभीरता हालत में जो बेहोश हो गया, सांस में दिक्कत हो रही है, ये सब चीज़, तो हमें उसको, अगर सपोज रोड साइड एक्सीडेंट है, जो बताया गया कि हमें बिल्कुल इस हेड को मतलब पोजीशन टिल्ट करके रखना चाहिए, सर्वाइकल स्पाइन या स्पाइन इंजरी, उसको बिल्कुल स्टेबलाइज, इमोबिलाइज जिसे कहते हैं, उसको मूव नहीं कराना चाहिए। बोनी फ्रैक्चर है, कभी कभी क्या होता है कि बोन अगर दिख रहा है, बोनी फ्रैक्चर है, हड्डी टूट गई, सपोज पैर की हड्डी टूटी है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, बोन कभी कभी देखा होगा बाहर निकल आती है स्किन, उसको अंदर करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उसको बस एक रैप कर दिया हमने ब्लीडिंग रोकने के लिए, और जब अस्पताल जाएंगे तो वहां देंगे। इससे क्या होगा कि अगर हमने अंदर करने की कोशिश की उसको, तो उसमें हमारे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं कभी कभी।
0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर। हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342108020 2342108020। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन करें तो 011 लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर, तो अगर सिर पर चोट लग जाती है, कोई भी एक्सीडेंट है या कहीं पर भी हो सकता है व्यक्ति, अगर सिर पर चोट लग जाती है तो कौन कौन से संकेत हैं जो हमें गंभीर माने जाते हैं?
2: हाँ जी, मैंने अभी बताया था अभी थोड़ा देर पहले, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि हेड इंजरी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऊपर से पता नहीं चल रहा है लेकिन अंदर इंजरी हो रखी है, कंकशन या काउंटर कूप इंजरी होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स देखने पड़ते हैं जिससे हमें थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि नहीं, इसको अंदरूनी चोट है। और जो बाहर की चोट होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि या तो ब्लीडिंग हो रहा है वो दिख जाता है, और नहीं तो अगर कई बार क्योंकि बालों की वजह से स्वेलिंग वगैरह पता नहीं चलता है, तो उनको अगर आप हाथ से फील करेंगे तो आपको स्वेलिंग का मालूम पड़ जाता है ऐसे कंडीशन में कि कहाँ पे स्वेलिंग है। दिखता नहीं है लेकिन फील हो जाता है हाथों से। और जहाँ अंदरूनी चोट की बात है, तो सबसे पहले तो अगर वो कॉन्शियस है, बात कर रहा है, तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं, या फिर तुरंत बिल्कुल अनकॉन्शियस है, तो अगर तुरंत अनकॉन्शियस है तो मतलब कुछ ज़्यादा इंजरी हो सकती है अंदर। दूसरी बात है कि नाक कान से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, या पानी जैसा जिसको CSF कहते हैं वो लीक कर रहा हो, नाक से लगातार लीक कर रहा हो या ब्लीडिंग आ रही हो, तो ये भी एक संकेत है कि अंदर फ्रैक्चर हो गया है, कोई एक जो बोन होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है, उसके कंडीशन से ही ऐसा होता है। तीसरा है कि आपका अगर वो आंखों में देखने में उसको दिक्कत है, ब्लरिंग ऑफ विजन जिसको कहते हैं, या बोलने में दिक्कत है उसको, स्लरिंग हो रही है स्पीच की, या मुंह टेढ़ा हो गया है ना, मुंह एक तरफ हो गया है, और या फिर उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, या फिर नेक में उसको बहुत सीवियर पेन है ना, हेडेक हो रहा है, या फिर वॉमिटिंग हो रही है। अच्छा, इसमें दो तरह की वॉमिटिंग होती है, कि नौजिया के साथ है कि नहीं, तो अगर जैसे बात करते करते वॉमिटिंग कर दिया उसने, है ना, तो वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं इसको। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि रेज्ड इंट्राक्रैनियल टेंशन है और उसके वजह से जो पेशेंट है वो, और जैसे कि GCS हम लोग असेस करते ही हैं, है ना, उसमें मोटर रिस्पांस होता है, वर्बल रिस्पांस होता है, आई ओपनिंग होती है, आई कैसा है ना, तो ये सब हम पीपल्स भी अगर आप देखें, एक पीपल बड़ा है एक छोटा है, तो वो भी, या दोनों ही बिल्कुल पिन पॉइंट पीपल हैं, है ना, तो पॉन्टाइन हेमरेज का वो होता है ना, या फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है वो भी पॉन्टाइन हेमरेज, या सांस बहुत तेज लिया जा रहा है ये भी पॉन्टाइन हेमरेज, यानी कि ब्लीडिंग है ब्रेन स्टेम में। तो बहुत सारे ये सारे सिम्टम्स होते हैं या साइंस होते हैं जिसको हम पहचान लें तो हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रेन में इंजरी हुई है।
1: तो जैसे आपने अभी हैंड इंजरी की बात करी, तो कई बार होता है कि हम चोट लगी अगर सिर पर, अंदरूनी चोट है, हमें लगता है ठीक है, लेकिन उसका क्या असर कई बार कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद भी आता है?
2: हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि आप बेहोश हुए और एकदम से आप थोड़ी देर बाद बिल्कुल होश में आ गए और आप बातचीत कर रहे हैं, आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया। इसको एपिडुरल या एक्स्ट्राडुरल हेमरेज कंडीशन में लूसिड इंटरवल हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एकदम से प्रेशर बढ़ गया, मान लो एक आर्टरी होती है, मेनिंजल आर्टरी होती है, उसका ब्लीडिंग हुआ, आपको चोट लगी या वैसे भी, तो वो ब्लीडिंग से क्या हुआ, एकदम से प्रेशर बढ़ा आपका, आप अनकॉन्शियस हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या ब्रेन एडजस्ट करता है तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं, तो आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये लूसिड इंटरवल हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कुछ ठीक है, और पेशेंट को अगर अनकॉन्शियस कभी भी हुआ है तो उसे जरूर हमें हॉस्पिटल ले जाना, क्योंकि फिर वो थोड़ी देर बाद और ज्यादा मतलब डीप कोमा में जाने का उसका वो रहता है। और कई बार क्या होता है, जैसे स्ट्रोक होता है कुछ लोगों को, जिसमें हम दो तरह के स्ट्रोक होता है, एक होता है जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में, एक होता है जिसमें कि नस जो आपकी जो ध्वनि है उसमें ब्लड रुक गया, कोई खून का चकता आ गया तो आगे ब्लड नहीं जा रहा है, उतना एरिया ब्रेन का डैमेज हो गया। तो उसमें क्या होता है, जो वो पेशेंट जब इस कंडीशन में, जिसको इन्फार्क्शन कहते हैं हम, जो स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है कि उस वक्त सूजन नहीं आती है ब्रेन में, एक दो दिन बाद सूजन आती है, तो जब सूजन आएगी ब्रेन में तो फिर बेहोशी की हालत में पेशेंट चला जाता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम जाता है, जब उसको वीकनेस है, एक तरफ मुंह टेढ़ा हो गया, एक तरफ एक हाथ एक पैर नहीं काम कर रहा, उस वक्त तो वो कॉन्शियस रहता है, लेकिन क्या होता है कि दो दिन बाद दूसरे दिन वो कोमा में चला जाता है या ऑल्टर्ड सेंसोरियम, मतलब होश में नहीं रहता। तो मरीज के जो रिलेटिव्स होते हैं वो कहते हैं कि हम तो जब लेके आए थे तो वो बिल्कुल कॉन्शियस थे और बातचीत कर रहे थे, और अभी ये, तो ये चीज़ हमें उनको एक्सप्लेन करना होता है। अगर स्पेशली अगर बहुत बड़ा एरिया ब्रेन का है जो डैमेज हो गया है, उसको इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड उसको नहीं जा रहा है, जितना बड़ा एरिया डैमेज होगा उतना ज़्यादा सूजन होगी ब्रेन में, और सूजन क्या होता है वो पहले दिन नहीं आएगी, फर्स्ट डे सेकेंड डे आती है। तो ऐसे कंडीशन में सेकेंड डे में वो अनकॉन्शियस होने के चांसेस रहते हैं, कोमा में भी जाने के चांसेस रहते हैं, तो वो हमें पहले से उनको बता के रखना पड़ता है।
1: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
3: मेरा नाम सना है, मैं मेरठ से बोल रही हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है?
3: ये है कि अगर रात को सोते सोते किसी के हाथ या पैर अचानक से सुन हो जाते हैं तो उन्हें कैसे फटाफट मेडिकेशन करना चाहिए, कैसे फटाफट फर्स्ट एड करना चाहिए घर पर?
4: देखिए, जो आपने बताया कि अगर हाथ पैर एक साइड का सुन हो रहा है, अगर है ना, या दोनों साइड के सुन हो रहे हैं, इस पर डिपेंड। अगर हमें एक साइड का
3: हाथ हो जाता है, कभी दूसरी साइड का सुन हो जाता है।
4: नहीं, तो आपका अगर सपोज एक साइड का हाथ पैर सुन हो रहा है सोते सोते, है ना, कुछ अगर एज कितनी है उस पर डिपेंड करता है, नहीं तो आपको इमीडिएटली जो है अस्पताल लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो भी डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे जिसे हम या तो TIA भी कह सकते हैं या ब्रेन में इन्फार्क्शन की जो प्रॉब्लम हो वो हो सकती है कभी कभी। ठीक है,
2: इसमें एक चीज और है कि क्या आप हाथ जो है अपना सर के नीचे लगा के सोते हैं? पोजिशन भी कई बार मैटर करता है, जैसे कुछ लोग तकिया नहीं लगाते हैं, अपना जो फोल्ड करके हाथ ना सर के नीचे तकिया बना करके उसको सोते हैं, ऐसे कंडीशन में हाथों में सूजन आ सकती है, सुनपन हो सकता है, लेकिन पैरों में सुनपन नहीं होगा ऐसे में। तो अगर आप ऐसे सोते हैं तो इस तरह से ना सोएं, तकिया और बहुत बड़ा मोटा तकिया भी ना लगाएं, उससे भी दिक्कत आ सकती है, नेक में पेन हो सकता है, बिल्कुल मीडियम साइज का जो तकिया होता है वो लगाएं।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब अगर गले में कुछ फंस जाए तो फर्स्ट एड में क्या करें? ये लिखते हैं प्रकाश, रोहिणी दिल्ली से।
4: अगर गले में कुछ फंस जाता है, पहले तो हमें देख लेना जानना चाहिए कि क्या चीज फंसा हुआ है उसको। उसके लिए हमें, इसे हेमलिक मैन्यूअर कहलाते हैं, इसमें पेशेंट जो भी जिसके गले में जो चीज फंसी हुई है उसके एक व्यक्ति को पीछे जाके उसपे, उस व्यक्ति को आगे और आगे की तरफ लीनिंग फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड करके उसको झुका के रखना चाहिए, और जो पीछे वाला व्यक्ति उसको है उसको एक अपने हाथ को हाथ में फंसा के उसके जो जस्ट बारा जो

0: नेवल है, नेवल के ऊपर और बोनी प्रोमिनेंसी के बीच में एब्डोमेन पे रखना चाहिए और इसमें जस्ट थ्रस्ट देना चाहिए, इसको आगे की झुका के 4-5 बार उसको थ्रस्ट देना चाहिए और आगे झुका के, जिससे कि उसके मुंह में जो चीज है थ्रस्ट देंगे तो वो पार्टिकल हो सकता है उसको निकल जाए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए इसको, ठीक है। होपफुली
1: ये खासकर चीजें बच्चों में खासकर होता है, जैसे बच्चे कोई कॉइन ले रखा है या कोई आजकल जो कैंडी आती है जो हार्ड कैंडी शुगर कैंडी होती है।

0: जब वो बात नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, सांस लेने में उसको दिक्कत आएगी और खांस भी नहीं पा रहा है वो, है ना, और मूर्छित होने के कगार पे है। ऐसे कंडीशन में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें पीछे जा करके उसके पेट में थ्रस्ट देना है, वो आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं उसका एक्चुअल पीछे जाके किस तरह से उसको डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट आपका नीचे से ऊपर होना चाहिए, है ना, और अंदर की तरफ। तो ये डायरेक्शन होता है जो आपके नाभि होती है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप एक फिस्ट बना करके इस तरह से, और उसको थ्रस्ट पीछे से आप करते हैं ताकि जो भी चीज उसने लिया है वो बाहर आ जाए। या फिर कई बार क्या होता है, इससे नहीं होता है तो आप पीछे भी उसके पीठ पे भी मार सकते हैं, गले के जस्ट नीचे एरिया में भी आप मार सकते हैं, तो उससे भी वो बच्चा निकाल सकता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी, मैं आईपी पांडे बोल रहा हूँ, मेहरौली दिल्ली से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: अच्छा, डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा। डॉक्टर साहब से पूछना है कि जैसे जनरली रेगुलर काम करते हो या नेल काटते हो या कभी बाइक चलाते हुए कभी गिर गया, थोड़ा सा माइनर चोट लग गया, इंजरी हो गई, हल्का कट हो गया, उस समय हमने लगा लिया, तो क्या हमें पूछना है कि बार बार वो टेटनेस का इंजेक्शन लेना जरूरी होता है क्या? टेटनेस वाला जो इंजेक्शन आता है उसको लेना जरूरी है या डिटॉल वगैरह से धो लिया, फ्रेश वाटर से धो लिया तो काम कर जाएगा, मतलब उसके बाद कुछ ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत नहीं है?
0: हाँ देखिए, इसमें क्या है कि बार बार टेटनेस का इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है अगर आपने पूरा टेटनेस का कोर्स नहीं लिया है। तो ये हमेशा याद रखिए, जो टेटनेस के जो स्पोर्स होते हैं वो यूबिक्विटस होते हैं, यानी कि पूरे हर जगह हैं, मतलब हर चीज पे हैं टेटनेस के स्पोर्स, ऐसा नहीं है किसी चीज में, और खास करके जो मिट्टी से सना जैसे चोट होता है, बाइक से गिर गए, तो ऐसे कंडीशन में प्रिकॉशनरी आपको टेटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, या फिर आप एक पूरा कोर्स कर लें टेटनेस का जो कि 3 डोज का कोर्स होता है, तो फिर आपको ये बार बार का, अगर आपको ऐसा कोई काम है जिसमें आपको फ्रीक्वेंटली इंजरी हो रही है, मान लो आपका जॉब ऐसा नेचर है कि कुछ ना कुछ चोट लगता ही रहता है, तो ऐसे में टेटनेस का पूरा कोर्स ले लें तो बार बार आपको टेटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चों को खेलते खेलते लग जाती है और इंजरीज की भी बात कर रहे थे, तो स्पोर्ट्स इंजरीज में कौन कौन सी इंजरीज हैं जो सबसे कॉमन होती है और उस टाइम पे हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए स्पोर्ट्स इंजरीज में?
0: देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे कॉमन, अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग होता है, जैसे कि आपके बैडमिंटन में है वो ट्विस्टिंग इंजरी बहुत होती है, उसमें स्ट्रेचिंग लोगों को करना पड़ता है, तो नी का ट्विस्ट हो जाना, उसमें आपके लिगामेंट्स हैं, मेनिस्कस हैं, वो उसकी इंजरी बहुत कॉमन है, एंकल स्प्रेन काफ़ी कॉमन है। इसी तरह क्रिकेट की बात करें तो उसमें बॉल कहीं पे भी लग सकता है आपको, है ना, हाथों में, खास करके जब कैचिंग करते हैं तो उसमें कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है, और अगर आप बहुत पास फील्डिंग कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट बॉल लग गई तो कई बार वो भी, अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो सर पे चोट लग सकती है, कहीं पे भी चोट लग सकती है, जैसे मेरे ख्याल से मिस्टर लांबा जी थे जिनको सर पे चोट लगी थी और उनको डेथ भी हो गई थी। तो ऐसे कंडीशन में इंजरी बहुत जानलेवा भी हो सकती है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जैसे रग्बी है, उसमें भी कई बार ऐसा होता है। जो एथलेटिक्स स्पोर्ट है उसमें खास करके जैसे कि हार्ट की समस्या कुछ लोगों को हो जाती है, HOCM कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा एथलेटिक्स करते हैं उनका हार्ट में, कई बार हमने देखा है फुटबॉल में भी कि सडन कार्डियक डेथ, वो फील्ड पे ही वो डेथ हो जाना, तो ऐसे कंडीशन में HOCM जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन होती है, तो वो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनको ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो वो एक्चुअली जब आप पीरियोडिक चेकअप कराते हैं तो वो चीज़ें सामने आती है, ECG में भी डायग्नोस हो सकता है या इको 2D इको करके हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग में अलग इंजरीज हैं, ड्राउनिंग का हो सकते हैं केसेस या अलग कोई तरह के इंजरीज हैं, तो हर तरह के स्पोर्ट्स में अलग तरह की इंजरीज हो सकती है।
1: तो इन सब में अगर देखा जाए तो क्या कुछ ऐसे कॉमन फर्स्ट एड है जो हम दे सकते हो?
0: हाँ नहीं, वो तो इंजरी पे डिपेंड करेगा किस तरह की इंजरी है, ज्यादातर चोट लगने की ही इंजरी होती है, और जैसे कि कईयों में जैसे एथलेटिक्स जो होते हैं हमारे पास, गर्मी में भी जो एथलेटिक जो प्रोफेशनल एथलेटिक्स होते हैं उनको तो एक्सरसाइज करना ही करना है ना, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, तो वो गर्मी में भी एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन है, तो वो कई बार क्या हो, हीट स्ट्रोक के केसेस आते हैं, इस तरह के मसल स्प्रेन के केसेस आते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं या फिर सिनकपी, बेहोश हो जाते हैं वो एकदम से ना, क्योंकि वाटर लेवल उनके बॉडी में कम हो जाता है, सोडियम लेवल कम हो जाता है बॉडी में, या बहुत ज्यादा अगर कंडीशन होती है जिसमें हीट स्ट्रोक होता है, जिसमें कि जो हाइपोथैलेमस है हमारे बॉडी में, जो ब्रेन में है एक कंडीशन है, वहां पे थर्मोस्टैट होता है, वो थर्मोस्टैट काम करना बंद कर देता है। जब वो थर्मोस्टैट जो होता है आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है पूरे बॉडी के, जब वही खराब हो जाता है तो टेम्परेचर अनप्रेसिडेंटेड बढ़ने लग जाता है और वो 106, 107, 108, इवन 109 तक भी चला जाता है और आदमी जो है वो बेहोश होकर के आता है। ऐसे इसी को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं और उसमें स्वेटिंग आपकी बंद हो जाती है क्योंकि हाइपोथैलेमस का काम होता है कि वो हीट को लॉस करना स्वेटिंग के माध्यम से, है ना। तो जब वही खराब हो गया तो स्वेटिंग बंद हो जाती है, तो ऐसे में फिर टेम्परेचर बॉडी का बहुत तेज राइज करता है। आजकल मेरे ख्याल से 2024 में बहुत बड़ा दो दिन का 17 और 18 जून में दो दिन में बहुत सारे केसेस हमारे पास आए थे और ज्यादातर ब्रॉड डेड केसेस थे उसमें 2024 में। 25 में इतना सीवियर हीट स्ट्रोक नहीं आया, केसेस नहीं आए। 26 में हमारे पास एक केस आया था, 25 में भी एक केस आया था।
1: तो प्रिकॉशन के तौर पे हमें क्या करना चाहिए कि जिससे ये कंडीशन तक हम ना पहुंचे?
0: यस इसमें एक तो हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है, दूसरा है कि सिर्फ पानी ना पिए, है ना, क्योंकि आपको आपके स्वेटिंग में सोडियम भी लॉस हो रहा है तो सोडियम यानी कि सॉल्ट लेना जरूरी है। और जब भी एक्सरसाइज करें तो छाए में यानी कि अर्ली मॉर्निंग करें या फिर धूप जब निकल जाए तब करें। खास करके जो लोग जैसे पुलिसमैन हैं या फिर कोई वेंडर्स हैं जो हॉकर्स स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं जो मजबूर हैं गर्मी में, तो वो उनको ध्यान रखना चाहिए कि भाई 12 बजे से 2 से लेकर 3-4 बजे तक ये जो बहुत तेज धूप पड़ती है उसमें वो छाए में रहें और अपने आप को हाइड्रेशन करते रहें। ये अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे और कपड़ों का भी इसमें होता है कि कॉटन के कपड़े लाइट कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़ों से इवेपोरेशन नहीं होता है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उससे आपका इवेपोरेशन अच्छा होता है और सोखता भी है वो स्वेट को। तो ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर, बातें हम और भी करेंगे लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात करें फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर पर। तो डॉक्टर संजय, जैसे कि अभी हम आपने बताया था कि हीट स्ट्रोक में हमें खास ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हीट स्ट्रोक में अक्सर देखा जाता है नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है
1: जी,
0: तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए?
1: जी, नोज ब्लीडिंग यूजली क्या होता है कि बहुत ज्यादा नाक सूखने की वजह से नोज ब्लीडिंग होती है, या फिर कई जो एडल्ट्स होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, तो उसको बॉडी का मैकेनिज्म है कि वो नोज ब्लीडिंग के जरिए उस प्रेशर को कम कर देता है, जो हाई ब्लड प्रेशर एक तरह से सेफ्टी वेल्व की तरह काम करता है। कईयों में ऐसा नहीं हो पाता तो उनको सीधा ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो अनलकी लोग होते हैं, लेकिन जो लकी लोग होते हैं उनका नेजल ब्लीड के वजह से वो प्रेशर आपका जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो ब्रेन हेमरेज से बच जाते हैं और उनको एक वार्निंग भी मिल जाती है।

0: तो एनी हाउ दोनों केस में घबराने की जरूरत नहीं है। और कई बार कुछ लोगों को जैसे रनिंग नोज होता है या कुछ बहुत ज्यादा ऐसा कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं नाक सुखा जिससे, तो उससे भी वो नोज ब्लीडिंग होती है, या फिर नोज पिकिंग बहुत लोग करते हैं, बार बार नोज पिकिंग कर रहे हैं तो उससे भी, तो ये सब कंडीशन में नोज ब्लीडिंग होती है। तो उसमें घबराना नहीं है, नोज पिंच करना है अच्छी तरह से, और बीच बीच में सांस मुंह से सांस लेना है। ऐसे नहीं कि बीच में आपने पिंच कर दिया तो उसको बीच में छोड़ना है ना, उसको छोड़ना नहीं है, मुंह से आप आराम से सांस लेते रहें और नोज को अच्छी तरह से दबा के एक प्रेशर मेंटेन करके करते हुए उसको आप हॉस्पिटल लाएं। क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है, एंटीरियर नोज ब्लीड है, आगे का नोज ब्लीड है, पोस्टीरियर नोज ब्लीड है, वो ENT सर्जन देखते हैं और फिर वो उसके हिसाब से अगर कंट्रोल नहीं होता है, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर लोअर करने की मेडिसिन देते हैं, और अगर बहुत ज्यादा परसिस्टेंट नेजल ब्लीड हो रहा है तो उसमें फिर वो पैकिंग भी करते हैं, नेजल पैकिंग जो होता है।
1: तो कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी हैं जो हम कर सकते हो,
0: घरेलू
1: या कहीं ट्रेवल कर रहा हूं वहां पर हो जाए तो क्या करें?
0: नोज पिंचिंग से ही ज्यादातर वो ठीक हो जाता है, उसमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर तक आप नोज पिंच करके रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर माइनर ब्लीडिंग होते हैं, उसमें कुछ घबराने वाली बात होती नहीं है।
1: एक और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो देखी जाती है वो हार्ट की होती है, कि कई बार होता है कि हार्ट में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, कई बार लगता है ऐसे ही हो गया होगा, कुछ गलत खा लिया होगा उसकी वजह से हो रहा हो, या कई बार हार्ट अटैक की स्टार्टिंग सिचुएशन होती है उसकी वजह से भी होता है। तो डॉक्टर सचिन आप बताइए, अगर हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन हो तो उसमें हम इमिडिएटली फर्स्ट एड क्या दें?
2: अगर हार्ट अटैक के हमें साइन सिम्टम मिल रहा है, सपोज किसी व्यक्ति को कि हार्ट में लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो रहा है या लेफ्ट हैंड में उसका दर्द जा रहा है, या कभी कभी क्या होता है कि हार्ट अटैक के जो साइन सिम्टम होते हैं कि वो गर्दन में भी पेन होता है, या किसी किसी वेरी रेयर केसेस में एपिगैस्ट्रिक जैसे कहते हैं नाभि के ऊपर उसमें भी पेन हो सकता है, इन चीज़ों में हमें थोड़ा सस्पेक्ट करके रखना चाहिए कि उसको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेन की जो सीवियरिटी है वो इस तरीके की है, निचोड़ने वाली, छाती को एकदम ऐसा लग रहा है कि हमें निचोड़ जाएगा या बैक साइड की तरफ भी जा रहा है, इमीडिएटली हमें एक किसी छोटे सेंटर अगर पास में जो भी एक ECG करा के देख लेना चाहिए। अगर ECG में कुछ भी साइन चेंजेस दिख रहे हैं इमीडिएटली हमें जो है अस्पताल पहुंचना चाहिए। वहां पे उनके लिए बेसिकली भाई अगर घर में सपोज कोई व्यक्ति ब्लड थिनर नहीं लेता या कुछ है सोडियम सॉर्बिटेट रखी हुई है और आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक के साइन सिम्टम आप उससे पुख्ता है कि है, तो उसमें हमें ले लेना चाहिए और इमीडिएटली जो है अस्पताल की तरफ रुख करना चाहिए हमें जो है।
0: इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि ना सिम्टम्स जैसे नॉर्मल डॉक्टर साहब ने बताया कि ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो चेस्ट में पेन हुआ, कई बार क्या होता है जैसे डायबिटीज, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है तो उसमें ये सब सिम्टम्स नहीं आते, कई बार उनको सिर्फ पसीना आया या घबराहट हुआ, या कई बार एटिपिकल सिम्टम्स भी आते हैं जैसे कि आपको लेफ्ट हाथ में पेन की जगह राइट हाथ में पेन हो रहा है ना, या दोनों हाथ में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है, जॉ में पेन हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है ना, तो इस तरह के एटिपिकल सिम्टम्स हैं, तो या फिर आपको बहुत ज्यादा सिवियर वीकनेस हो रही है, ऐसे एकदम से जैसे कि मतलब गिरा जा रहा है शरीर, है ना, अचानक हो गया ये चीज, है ना। कई बार जैसे आपने कोई ऐसी न्यूज सुनी, इमोशनल स्ट्रेसर जो होता है वो आपने सुना, और या किसी का कोई भी ऐसा जो इमोशनल स्ट्रेस था तो वो आपने सुना और उसके बाद से आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रहा है, बहुत ज्यादा लिथार्जी और गिरा हुआ शरीर, फटीग आ रहा है, तो तुरंत आपको इसमें ECG कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब जैसे कि हमारा जाने का समय हो रहा है, लेकिन दो तीन चीजें मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं तक पहुंच जाए, तो मैं शॉर्ट में जल्दी मैं जानना चाहूंगी, अगर किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगे तो वो फर्स्ट एड क्या ले?
0: देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे आपका करंट पास होता है, और एक एग्जिट पॉइंट होता है ना, जहाँ से आपका वो निकल के बाहर जाता है। इसके बीच में जो होती है, जो करंट होता है वो ट्रेवल करता है आपके नसों के जरिए, और वो डिपेंड करता है कि आपका करंट कितना हाई वोल्टेज का है। अगर बहुत हाई वोल्टेज का है, ट्रांसफार्मर से या हाई टेंशन वायर से हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एग्जिट वुंड भी और एंट्री वुंड भी ज़्यादा होता है, और इंजरी भी ज़्यादा होती है, नर्व्स भी इंजरी होती है, मसल भी इंजरी होती है, तो अंदरूनी आपको बाहर से नजर नहीं आएगा, है ना, अंदर का चोट बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि वहां इन्वेस्टिगेशन होगा और उसका उपचार होता है।
1: और एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, अगर किसी के कान में कीड़ा चला जाता है, कई बार होता है कि सोते हुए चला गया, वैसे चला गया, तो वो क्या करें?
0: हाँ, उसमें क्या करना है कि एक तो यह है कि वो चल रहा है तो आपको खुरखुर आवाज आती है, तो उसमें क्या करना है, उस कान में कोई भी तेल हो, मिनरल ऑयल हो आपके पास, सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल है या कोई भी तेल है, उसके कान में आप डाल देंगे एक तरफ, 2-4-5 मिनट के लिए उसको उस तरफ नीचे ऊपर की तरफ उस कान को रखें, ताकि वो जो वो है उसमें मर जाए या वो बाहर आ जाए।

0: मैसेज भी हमारे पास ये लिखते हैं, नमस्कार सर, मैं शबनम हूँ, बीके दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। मेरी बेटी भरतनाट्यम नृत्यांगना है, वो हमेशा अभ्यास करती रहती है, ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
1: ऐसे में अगर वो भरतनाट्यम करती है, उसकी मसल्स वर्किंग ज़्यादा है, उसको अपने बेसिकली हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम पोटेशियम, जैसे हम लोग ORS वगैरह, इसको जरूर रेगुलर लेते रहना चाहिए, ताकि जो उसकी मसल्स वीकनेस, क्योंकि इतना वर्किंग है, तो वो कम हो जाएगी और इसमें फर्क पड़ेगा उसके लिए।
0: तो डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे फिट रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, और उनके लिए फर्स्ट एड सजेशन आपके लिए क्या होगी?
2: सबसे पहले तो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ना आप हेलमेट जरूर पहने, है ना, हेलमेट कई तो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है।
0: तो दोस्तों, आज की बातचीत से ये सीख मिलती है कि फर्स्ट एड सिर्फ इलाज की शुरुआत नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने की पहली कोशिश है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर सचिन महेश्वरी, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।
0: तो दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, हम आपके लिए लेकर आएंगे फिर एक नया विषय और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर दोपहर के 4 बज चुके हैं। सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अगले महीने से लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जिलावार आंकड़ों के अनुसार भारत के 57.8% जिलों में महिला श्रम बल भागीदारी दर 40% या उससे अधिक दर्ज की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राज्यीय परिषद के नियमों में संशोधन किया है। राष्ट्रपति शासन में पुद्दुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के उपराज्यपाल बैठकों में हिस्सा ले सकेंगे। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के टूरिस्ट अराइवल प्लाजा में आज से 2 दिन के देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और जरूरी चीजें शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत रूसी तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक शुल्क लगाए जाएंगे। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित मिखाइलोवस्काया मिलिट्री आर्टली अकादमी का दौरा किया। और 20वें एशियाई खेल आज से जापान के आइची नागोया में शुरू होगा। मनु भाकर और तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक होंगे। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

अजय चेतन। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कौन है। उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है। एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है। उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है। तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है। उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं। उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं। एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है। वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है। उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है। उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है। वो नवचार उन्मुख है। वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है, अर्थात क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करे, कहाँ उत्पादन करे और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है। ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है। यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है। उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है। ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो। दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं। हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। सोचने की शक्ति, यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं। आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं। व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है। इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें। निर्णय लेने की क्षमता, एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है। यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है। निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है
फीडबैक AMC

0: feedbackamc1@gmail.com. I repeat, feedbackamc1@gmail.com.
1: यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना। धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें, तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा, धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना। अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है। 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में यह तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है। ईमानदारी रखना है। आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन। सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति। एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना। एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व। एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।
0: दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दोबारा आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। और यहाँ इस वक्त मैं हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर के अल्फा जैन, जहाँ सैटरडे को हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। अब डिटॉक्स तो बहुत तरीके का होता है और डिटॉक्स बहुत तरीके से ज़रूरी भी है, इसके बारे में हम बात करते ही हैं हर शनिवार इसी प्रोग्राम में। तो बस आज भी जुड़ जाइए मेरे साथ, थाम लीजिए मेरा हाथ, निकल पड़िए इस सफर पर मेरे साथ। करूंगी मैं आपसे बातें, किस बारे में बताऊंगी। फिलहाल के लिए इस गाने के साथ करते हैं शो की शुरुआत, आप बने रहिए मेरे साथ इसी प्रोग्राम में।

दीपिका के साथ हैं आप, प्रोग्राम है अल्फा जैन, जहां सैटरडे को हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। किस बारे में बात कर रही हूं उससे पहले कुछ आपसे कहने जा रही हूं और मुझे यकीन है कि आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते हैं, फिर भी कर देते हैं। कभी किसी का मन रखने के लिए, कभी किसी को बुरा ना लगे इसीलिए, कभी लोग क्या सोचेंगे इसलिए, तो कभी अगर मैंने मना कर दिया तो कहीं सामने वाले के लिए मैं बुरा इंसान तो नहीं हो जाऊंगा ना। इस डर में न जाने कितनी बार हम अपने मन की आवाज को चुप करवा देते हैं और ना कहने की जगह हाँ में सिर हिला देते हैं। लेकिन ये हाँ का बोझ कई बार हमें परेशानी में भी डाल सकता है। बेशक मैं ये नहीं कह रही हूं कि कभी कभी दूसरों का मन रखने के लिए कुछ करने में कोई हर्ज है, लेकिन जब बात अपने दिल पर आने लगे, अपने मन पर आने लगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर आने लगे और बार बार आप उन चीज़ों के लिए हाँ करने लगे जिन्हें असल में आप ना कहना चाहते हैं, तो ये बन सकता है परेशानी की वजह। क्योंकि कभी कभी ना कहना भी होता है मेंटल डिटॉक्स का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा। इसी बारे में आज बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस गाने के साथ कर लीजिए आगे बढ़ने की शुरुआत। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को और दीपिका के साथ बने रहिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
6: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
5: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
6: हैं इतनी जल्दी?
5: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर 7 के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बम्बई। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

दीपिका के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। जिक्र मैंने छेड़ा था कि भाई क्यों मेंटल डिटॉक्स के लिए, मेंटल पीस के लिए कभी कभी जरूरी है ना कह देना। कई बार हम लोगों के बारे में सोचकर, लोग क्या सोचेंगे इस बारे में सोचकर, कभी रिश्ते ख़राब ना करने के लिए, कभी दोस्ती ख़राब ना करने के लिए, या फिर कभी कुछ और सोचने के लिए, कभी कभी तो किसी के गुड बुक्स में रहने के लिए भी, बस उन कामों के लिए भी हाँ कर देते हैं जिन्हें ना करने के लिए हमारा मन अंदर से हमें कह रहा होता है। अब देखिए इससे क्या होता है, सामने वाला खुश हो जाता है, लेकिन कभी कभी इस हाँ की कीमत आप अपनी मेंटल पीस देकर चुकाते हैं। वो वक्त शायद आपने अपने लिए रखा था, लेकिन आप किसी और का काम करने के लिए चल दिए। उस वक्त में शायद आप थोड़ा सा सुकून हासिल कर सकते थे, पर आपने नहीं किया। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा एनर्जी, और ये थोड़ी थोड़ी सी, छोटी छोटी सी चीजें कई बार मन पर बोझ बनने लगती हैं। कई बार मन अंदर से कह रहा होता है बस अब थोड़ा अपने लिए भी। और यही मेंटल डिटॉक्स का मतलब भी है, क्योंकि देखिए हर बार ना कहने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी इंसान से लड़ाई कर रहे हैं, उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं, आप सिर्फ उस सिचुएशन को मना कर रहे हैं क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं है। लाइक आज मैं नहीं आ पाऊंगा मिलने, अभी मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, या पिछली बार मैंने कर दिया था, इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, बस इतना ही कहना है। हर बार ना कहने के लिए आपको 10 वजह बताने की भी ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में, वो कोई भी हो सकता है, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, जो आपको जानबूझकर काम सौंप रहा है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि आप ना नहीं कर पाएंगे, उसने आपकी इस वीकनेस को पकड़ा हुआ है कि ये इंसान ना नहीं कर सकता, इससे ये भी करवा लो, ये भी करवा लो, तब अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यकीन मानिए, आपके लिए आप नहीं बोलेंगे तो शायद कोई नहीं बोलेगा।

आपको पता है ये ना हम क्यों नहीं कह पाते हैं, इसकी एक वजह और है। हम इसलिए ना नहीं कह पाते हैं क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि या तो ना कहने वाले से सामने वाला बुरा मान जाएगा, या फिर एक जो हमारी आदत होती है ना कि हम अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं, मतलब अपना सुकून, अपना वक्त, अपने लिए कुछ करना, इन चीज़ों को हम ज़रा पीछे रखते हैं। खुद के लिए जब वक्त निकालने का मन भी होता है तब भी दिमाग में थॉट आता है अभी नहीं, बाद में। लेकिन ये जो बाद में है ना, ये कई बार मेंटल हेल्थ पर बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि हम ना ना करके काम करते करते इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो बात कहीं ना कहीं हमारी मेंटल पीस पर आने लगती है। जब आप थकान के बावजूद कह देते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, जब आप परेशान होने के बावजूद कहते हैं कोई बात नहीं मैं कर दूंगा ये काम, जब आप आराम करने की ज़रूरत होने के बाद भी ये कह देते हैं कोई बात नहीं।

तुम्हारा काम ज़्यादा ज़रूरी है, लाओ मैं कर देता हूँ। नहीं, हर बार हर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं होता। कुछ दरवाज़े कभी कभी कुछ देर के लिए ही सही बंद करना भी ज़रूरी होता है, ताकि वो सुकून, वो चैन, वो पीस मिल सके जिसका हमारा दिमाग, हमारा मन इंतज़ार कर रहा है। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दीपिका के साथ अपने साथ को बनाए रखिए। प्रोग्राम है अल्फा जैन और यहाँ हम कह रहे हैं लेट्स डिटॉक्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दीपिका के साथ हैं आप। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं अल्फा जैन, जहां आज हम कह रहे हैं लेट्स डिटॉक्स। बात मैंने की कि क्यों जरूरी है कभी कभी ना कह देना, क्यों बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप सारा बोझ अपने कंधों पर लेकर चलें। कभी कभी आपका रुकना, आपका थकना, आपका ना कहना, आपका अपने आप को सबसे ऊपर रखना, ये सेल्फिश नहीं है बल्कि ये बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। और मेंटल हेल्थ बिल्कुल सीधे तौर पर कनेक्टेड होती है हमारी फिजिकल हेल्थ से। तो ऐसे में अपने लिए सोचना बिल्कुल भी सेल्फिश मूव नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जब लगे ना कहिए, और जब कह सकते हैं, कर सकते हैं तो हाँ भी कीजिए, मदद करना भी अच्छी बात है, लेकिन बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस मुझ तक पहुंच रहे हैं, जो बता रहे हैं कि प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पसंद आ रहे हैं उन्हें प्रोग्राम। मैसेजेस तो मैं शो में शामिल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन थैंक यू सो मच आप सभी का इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभी फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का वक्त भी बस आ ही गया है, उससे पहले मैं आपको आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी दे देती हूँ। यहाँ पर 5 बजे आपके साथ जुड़ेंगी कोमल, प्रोग्राम लेकर आएंगी सिटी लाइट्स, शहर की हलचल से करवाएंगी वो आपको रूबरू। 6 बजे मैसेज मसाला मिक्स लेकर आएंगी शालिनी सिंह, यानी कि आपके मैसेजेस पहुंचेंगे उन तक, वो शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो बस आपको आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ बने रहना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स यहां आप तक पहुंचने वाले हैं। फिलहाल के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत, जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूं, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते, गाते गुनगुनाते, जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते, आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे, और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे, क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6।

नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर शाम 5 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने लुधियाना में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आज कलिम्पोंग के पहाड़ी जिले से अवैध अफगानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 7,500 मेधावी छात्रों को ई स्कूटी वितरित की गई। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित मिखाइलोवस्काया मिलिट्री आर्टिलरी अकादमी का दौरा किया और जापान में 20वें एशियाई खेल आज भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुए। निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: शाम की ड्राइव है तो सफर के साथ कुछ काम की अपडेट भी हो जाए। नमस्कार दिल्ली, स्वागत है आप सभी का इवनिंग ड्राइव शो सिटी लाइट्स में। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी। आज शाम की कुछ खास खबरें कुछ इस तरीके से हैं जो कि आपके बहुत काम आ सकती हैं। जैसे हाईवे पर अचानक गाड़ी खराब हो जाए और आपको अपनी लोकेशन तक ना पता हो तो फिर भी मदद आप तक पहुंच सकती है, वो कैसे? और गणपति बप्पा की विदाई इस बार कहां और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आस्था के साथ साथ प्रकृति की सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही कुछ बातें होंगी और साथ ही बात होगी स्वच्छता ही सेवा की, क्योंकि सेलिब्रेशन हो या क्लीनलीनेस पार्टिसिपेशन हम सब की जिम्मेदारी है। तो खबरें हैं यूजफुल, कुछ में है ट्विस्ट और कुछ में है आपके लिए सीधे काम का टेक अवे। तो कहीं जाइएगा नहीं, सिटी लाइट्स के साथ जुड़िए। मैं हूं कोमल और शाम की इस ड्राइव में आपके साथ रहेंगे म्यूजिक अपडेट्स और कुछ ऐसे टिप्स जो शायद अगली बार आपके बहुत काम आ जाएं। तो दोस्तों, रेडियो की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ाइए क्योंकि आगे की खबर आपके काम की हो सकती है, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। हाँ।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो 102.6 पर और प्रोग्राम चल रहा है आपका इवनिंग ड्राइव शो सिटी लाइट्स। और दोस्तों, दांतों की सेहत सिर्फ खूबसूरत स्माइल की बात नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी जुड़ी हुई है। और डेंटिस्ट्री की दुनिया में लगातार नई टेक्नोलॉजी, नए ट्रीटमेंट मेथड्स और नई रिसर्च सामने आ रही है। ऐसे में डेंटल प्रोफेशनल्स के लिए नॉलेज और अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी कड़ी में IDA स्टेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन वेस्ट दिल्ली में किया जा रहा है, जहाँ डेंटल फ्रेटर्निटी के प्रोफेशनल्स एक मंच पर जुड़ रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस की खासियत क्या है और किन मुद्दों पर फोकस रहेगा, आम लोगों के लिए इससे क्या संदेश निकलता है, इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मंदिरा। आप कंसल्टेंट हैं ओरल हेल्थ प्रोफेशनल्स। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के FM रेनबो पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। मैम, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जो शुरू हो रही है, इस स्टेट कॉन्फ्रेंस की मुख्य थीम और इसका उद्देश्य क्या है?
2: इसका मुख्य थीम जो है कि आजकल जो भी डेंटिस्ट्री में न्यू इनोवेशंस हुई हैं और नए मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, नए इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो हमारे जो भी इस फील्ड के डिस्टिंग्विश्ड एक्सपीरियंस हमारे कोलीग्स हैं, वो लेक्चर्स ले रहे हैं, हैंड्स ऑन कोर्स कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे और जूनियर कोलीग्स को, उनको एम्पावर करने के लिए कि आजकल लेटेस्ट डेंटिस्ट्री में क्या अवेलेबल है, कैसे हम अपना क्वालिटी ऑफ वर्क और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में नॉलेज दी जा रही है, उसके बारे में लेक्चर्स हो रहे हैं

0: और हैंड्स ऑन कोर्सेज हो रहे हैं।
1: जी मैम, तो मैम जो यंग डेंटिस्ट हैं और डेंटल स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस, क्या नया सीखने और नेटवर्किंग का अवसर मिलता है उन्हें, आप क्या कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इससे मिलता है क्योंकि आपके कई जो डेंटल कॉलेजेस हैं उसमें एक्सपीरियंस जो लेक्चरर हैं या जो जिन्होंने कोई पर्टिकुलर फील्ड में आगे बहुत ही दिलचस्पी हासिल करी है वो आके यहाँ पे अपने लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल डेंटिस्ट्री के बारे में हो, डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में हो, या रूट कनाल ट्रीटमेंट में आजकल लेटेस्ट मटेरियल्स हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और नए नए तकनीक हमारे काम करने के, जो जो AI का भी इसमें रोल है, तो क्या क्या हम अपने इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं प्रैक्टिस में ताकि हम अपने को इम्प्रूव कर सकें।
1: जी,
0: तो उस बारे में नॉलेज दी जा रही है और डिस्कशंस हो रहे हैं।
1: जी मैम, हमने बताया कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये वेस्ट दिल्ली में हो रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि एग्जैक्ट कौन सी जगह पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और कौन कौन इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकता है।
0: ये IDA दिल्ली स्टेट की कॉन्फ्रेंस है विद द वेस्ट दिल्ली और ये रेडिसन ब्लू होटल पश्चिम विहार में हो रही है। दो दिन की कॉन्फ्रेंस है, 19th और 20th, और इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं जो डेंटिस्ट भी हैं और जो नॉन डेंटिस्ट भी हैं, तो जो दूसरे भी जो नॉन डेंटिस्ट हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो मिनिमल उनके रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं।
1: जी, तो मैम अगर आप कुछ चुनिंदा कार्यक्रम जो आज और कल वहाँ पर या लेक्चर जो होने वाले हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहें तो।
0: जैसे आज एक डॉक्टर भसीन का लेक्चर था बायोसेरामिक इन एंडोडोंटिक्स।
1: जी,
0: तो वो बहुत ही अच्छा लेक्चर था क्योंकि जो पहले की प्रथा चल रही थी और अब जो लेटेस्ट इस फील्ड में आ गया है तो उसके बारे में उन्होंने हमें काफी ज्ञान दिया और अपने केसेस भी डिस्कस किए, तो जैसे हमारा सबका एक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स बेटरमेंट जो है वो उसमें बदलाव आ सकता है। और फिर एक डॉक्टर संजीव का भी था प्रिसीजन एंड प्रैक्टिस का, जो जो हमारी माइनर ओरल सर्जरीज होती हैं जैसे एक्सट्रैक्शंस वगैरह, तो उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए और किस तरह से प्लानिंग करके उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन हुई।
1: जी, और मैम कल कौन कौन से लेक्चर कुछ खास जो आप बताना चाहेंगे?
0: कल की डेट में डॉक्टर सुहास लेले का लेक्चर होगा जो कि काफी अच्छा होगा, और कल बच्चों के पेपर प्रेजेंटेशंस भी हैं, तो कल का भी डे काफी इंटरेस्टिंग होगा।
1: जी मैम, मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप बहुत ज्यादा बिजी हैं और वहाँ पर बहुत ज्यादा
0: अभी इस टाइम पे एक्चुअली इनॉग्रेशन भी चल रहा है और हमारे फील्ड के स्टॉलवर्ट्स आए हुए हैं यहाँ पे, बॉम्बे से डॉक्टर अशोक ढोबले आए हुए हैं जो हमारे ऑनरी सेक्रेटरी हैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के। इस टाइम पे डॉक्टर महेश वर्मा जो हमारे चीफ गेस्ट हैं और वाइस चांसलर भी हैं गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के, वो वी हैव ऑल बिग बिग नेम्स एंड बिग डिग्निटरीज जो यहाँ पे अभी आए हुए हैं फॉर द इनॉग्रेशन, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जो इस फील्ड के नहीं भी हैं वो भी आए तो उनके लिए भी बहुत मतलब नॉलेज मिलेगी उनको कि और AI का क्या रोल हो रहा है आजकल डेंटिस्ट्री में, AI हमें कैसे हमारे डायग्नोसिस और हमारे ट्रीटमेंट को और प्रिसीजन की तरफ लेके जा रहा है, तो उसके बारे में भी बहुत डिस्कशन हो रही है और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के बारे में भी हो रहा है ताकि अच्छी तरह से हम पेशेंट का जो भी हमारे पास आए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना स्किल अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस पे उनका बढ़िया तरीके से इलाज कर सकें और उनकी स्माइल को रिस्टोर कर सकें।
1: जी डॉक्टर साहब, आप इतनी बिजी हैं और फिर भी हमें जो है इतनी सारी जानकारी दी, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: हाँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आकाशवाणी पे इनवाइट करने के लिए.
1: थैंक यू सो मच मैम.
0: हाँ जी, थैंक यू.
1: तो दोस्तों ये तो थी आईडीए दिल्ली स्टेट कॉन्फ्रेंस एंड आईडीए वेस्ट दिल्ली सिंपोजियम के बारे में कुछ जानकारियाँ. और अपनी स्माइल के बारे में अगर हम बात करें तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये जो हमारे दांत हैं ना इनको हम लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. ये हमारी ओरल हेल्थ है और इसकी भी हमें जो

ध्यान है, जो इसका जो देखभाल है वो भी हमें प्रायोरिटी के रूप में करना चाहिए, क्योंकि स्माइल छोटी हो या बड़ी, ओरल हेल्थ की केयर बहुत ज़रूरी है। दांतों को इग्नोर मत कीजिए, और ये क्योंकि आपकी हेल्थ टीम का हिस्सा है, क्योंकि जैसे आपके दांत होंगे वैसे ही आपकी सेहत पर वो असर डालेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, मैं हूँ आपके साथ कोमल। उन्हें दे विटामिन।

0: तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जगमग जगमग दिन तो अब ढल रहा है और अब ये शाम का सफर है। सामने हाईवे भी है, टोल प्लाजा भी आने वाला है। और तभी एक सवाल हमारे मन में आता है, क्या फास्ट टैग को बदलने के लिए भी अब फास्ट टैग ही बदलना पड़ेगा? जी नहीं, अब कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि टैग वही रहेगा लेकिन बैंक आपका बदल सकता है। मैं हूँ ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर सैटेलाइट्स, आपका इवनिंग ड्राइव शो। दोस्तों, आपने कभी अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराया है? ज़रूर कराया ही होगा क्योंकि बहुत सालों से हम ये सुविधा जो है उठा रहे हैं इसका लाभ। उसमें नंबर तो हमारा वही रहता है, बस हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना वो बदल जाता है। बस अब कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है फास्ट टैग के साथ भी आ रहा है। नाम है वन टैग फास्ट टैग पोर्टेबिलिटी। NHAI की इस सुविधा के जरिए व्हीकल ओनर अपना ईश्वर बैंक या सर्विस प्रोवाइडर बदल सकते हैं, लेकिन गाड़ी के विंडशील्ड पर लगा हुआ जो आपका एग्जिस्टिंग फास्ट टैग है उसे हटाने या नया स्टिकर लेने की आपको जरूरत नहीं है। यानी टैग वही, फास्ट टैग आईडी वही और ईश्वर नया। अब सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि ये आप करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको राजमार्ग यात्रा ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है और बस वहाँ पर लॉगिन कीजिए, प्रोसेस कीजिए और पोर्टल पर जाइए और अपना जो फास्टैग है वो आप पोर्ट करते ही, जैसे ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका एग्जिस्टिंग फास्टैग आईडी उसी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लिंक हो जाएगा। यानी पुराना जो आपका बैंक है आपका एग्जिस्टिंग फास्टैग वॉलेट बंद कर देगा और एप्लीकेबल एडजस्टमेंट के बाद जो आपका अवेलेबल बैलेंस है वो रिफंड हो जाएगा आपका और आपको अपना फास्टैग चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी नया स्टिकर लेने और पुराने टैग को हटाने का जो झंझट है और टैप गाने का वो जो झंझट होता है ना वो पूरी तरह से अब आपका ख़त्म हो जाएगा। हाईवे जर्नी में एक और चीज़ थोड़ी स्मार्ट और सीमलेस हो चुकी है। बस दोस्तों, इतना ध्यान रखना है कि ये जो पोर्टिंग है ना, इसके बाद आप अगर आपने ये पोर्टिंग कर ली है तो उसके बाद आप कम से कम 6 महीने तक इस सेवा का लाभ दोबारा नहीं उठा सकते हैं। मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। और ऐप की बात करी थी मैंने आपसे, राजमार्ग ऐप। इस ऐप के जरिए आप इस जो अपना फास्टैग है उसको पोर्ट कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़ ऑन एयर एक ऐसी ऐप है जिसके जरिए आप हमें देश दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं। तो अगर आप घर से बाहर हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सिटी लाइट्स में, और सिटी लाइट्स यानी आपका अपना इवनिंग ड्राइव शो। और दोस्तों, क्या आपने अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक किया है? नाम आपका है, लेकिन क्या डिटेल्स भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है? एक छोटा सा चेक आज ही कर लीजिए, क्योंकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2026 के तहत इलेक्टोरल रोल को अपडेट किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एलिजिबल सिटीजन छूटे नहीं और कोई इनएलिजिबल पर्सन इलेक्टोरल रोल में शामिल ना हो। तो आपका नाम है या नहीं, सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए। नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरिए। किसी नाम को लेकर ऑब्जेक्शन या डिलीटेशन का मामला है तो फॉर्म 7। अपनी एग्जिस्टिंग डिटेल में करेक्शन या अपडेट करना है तो फॉर्म 8। ये सब आप भर सकते हैं, और ये सारी सुविधा जो है ये आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, जिसे आप ECI की वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आप सभी के लिए मौजूद है, और अगर आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ये काम करना चाहते हैं तो BLO ERO AERO ऑफिस या डेजिग्नेटेड लोकेशन से आप जानकारी ले सकते हैं। एक खास बात और, SIR के दौरान BLO की भूमिका जो है बहुत खास है, और ऑफिशियल स्केड्यूल के अनुसार हाउस टू हाउस एनुमरेशन भी किया गया है, इसलिए अपने वोटर डिटेल्स को लेकर उसे चेक करके करेक्ट करके उसे अपडेट रखना ये BLO का सिर्फ काम नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वोटर ID सिर्फ कार्ड नहीं है बल्कि आपका इलेक्ट्रल रिकॉर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज ही, अभी बल्कि मैं तो कहती हूँ कि रेडियो सुनते सुनते आप अपना नाम चेक कर ही लीजिए। तो देर किस बात की, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो सिटी लाइट्स पर, मैं हूँ आपके साथ कोमल।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बप्पा की विदाई का वक्त जो है अब करीब है दोस्तों, और विदाई ऐसी हो जिसमें आस्था भी बनी रहे और हमारी यमुना भी साफ सुथरी रहे। मैं हूँ ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी। तो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वालों, इस बार गणपति विसर्जन के लिए जो दिल्ली में है करीब 90 कृत्रिम तालाब तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि मुख्य विसर्जन जो है बप्पा का वो 24 सितंबर को होगा, लेकिन घरों में स्थापित गणपति की विदाई इससे पहले भी शुरू हो चुकी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यमुना या किसी प्राकृतिक जलाशय में सीधे मूर्ति विसर्जन करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सभी से अपील है कि प्रतिमा विसर्जन के लिए निर्धारित कृत्रिम कुंडों का ही इस्तेमाल करें। और इस बार संदेश की टाइमिंग भी जो है ना वो बिल्कुल खास है। बप्पा ने भी संदेश दिया है कि आप सभी अपने जीवन में इसे उतार लीजिए, क्योंकि देश में अभी स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान चल रहा है, यानी क्लीनलीनेस सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस साल की थीम भी है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। तो बप्पा को विदा करते समय छोटी सी जिम्मेदारी हम भी निभा सकते हैं, पूजा की आस्था भी बने रहे और नदियों की निर्मलता भी। फूल, पूजा सामग्री या दूसरी चीज़ें यमुना में या किसी भी प्राकृतिक तालाब में ना डालें, क्योंकि असली श्रद्धा सिर्फ पूजा करने में नहीं होती है, प्रकृति का सम्मान करने में भी है। और यही तो है स्वच्छ भारत की भावना। उत्सव हमारा तो जिम्मेदारी भी हम सभी की बनती है, क्यों आस्था भी रखिए, एनवायरनमेंट का ख्याल भी रखिए। तो इस गणपति उत्सव में एक संकल्प जो है वो जोड़ लीजिए कि बप्पा की विदाई सम्मान से होगी और हमारी नदियों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी से, क्योंकि स्वच्छता कोई वन डे इवेंट नहीं है दोस्तों, ये रोजमर्रा की आदत है। स्वच्छता में सहभाग हम सभी की जिम्मेदारी। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं कोमल।

0: कितना एनर्जेटिक सॉन्ग है ना। कुछ ऐसे गीत होते हैं जिन्हें सुनते ही ना गूज बम्स आ जाते हैं, सच में बहुत, मतलब एकदम से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। तो चलिए, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स और आपको जानकारी देनी है, तो वापस लौट करके आते हैं प्रोग्राम पर ही। दोस्तों सोचिए, रात का वक्त है और हाईवे पर आपकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा है और आपको ये तक नहीं पता कि आप हाईवे के किस हिस्से में हैं। ऐसे वक्त में बस आपको एक ही नंबर याद रखना है, 1033। जी हाँ, मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, और साथ साथ कुछ लोग जो हैं वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़े हुए हैं। दरअसल NHAI अपनी नेशनल हाईवे हेल्पलाइन 1033 को AI की मदद से अपग्रेड कर रहा है। सबसे खास बात पता है इसमें क्या है? इसमें आपको मदद मांगते वक्त अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कई बार हाईवे पर क्या होता है ना कि हमें खुद अपनी लोकेशन नहीं पता होती कि हम कहां पर हैं जहां पर हमें मदद चाहिए होती है। आप 1033 पर कॉल करेंगे और नया सिस्टम आपकी लोकेशन पता करने में मदद करेगा। जरूरत के हिसाब से एम्बुलेंस, मिस्त्री या टोइंग टीम को मौके तक भी भेज देगा। ये सिस्टम करीब 5 मीटर तक की लोकेशन जो है वो उसकी एक्यूरेसी दे सकता है, ताकि रेस्क्यू टीम को पहले से अंदाजा हो जाए कि वहां पर किस तरह की मदद चाहिए। इसके लिए लोकेशन ही नहीं बल्कि कॉलर जो है मौके की फोटो और वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। यानी हाईवे पर अगर आप ट्रबल में हैं, मैं कहां हूं वाला सवाल जो है अब आपको परेशान नहीं करेगा। इस सिस्टम में आगे चलकर हाईवे के उन हिस्सों के बारे में पहले से अलर्ट देने की भी योजना है जहां हादसों का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और एक और यूज़फुल इसका फीचर आपको बता दें कि ये जो सुविधा है कई भाषाओं में उपलब्ध है और भी अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराने की जो है वो तैयारी की जा रही है, ताकि अलग अलग राज्यों से सफ़र करने वाले लोग जो हैं 1033 का इस्तेमाल आसानी से कर सके। तो हाईवे पर सफर करते हुए ये नंबर याद रखिए, 1033, हाईवे पर हेल्प के लिए। क्योंकि सफर कितना भी लंबा क्यों ना हो, मुश्किल वक्त में मदद की दूरी कम होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो और मैं हूं आपके साथ कोमल, जुड़े रहिए हमारे साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तो दोस्तों शाम की इस ड्राइव में इतना ही। उम्मीद है कि आज की काम की खबरें आपके बहुत काम आएंगी। याद रखिए, सड़क पर सेफ्टी हो या ऑनलाइन की दुनिया में सिक्योरिटी, अलर्ट रहना सबसे स्मार्ट चॉइस है। तो फिलहाल कोमल को दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात आप सभी से रेनबो की तरंगों पर, यूं ही चलते फिरते। तब तक के लिए नमस्कार।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव सहित 3 पदों पर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने लुधियाना में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। थल सेना प्रमुख जनरल

धीरज सेठ ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित मिखाइलोव्स काया मिलिट्री आर्टिलरी अकादमी का दौरा किया और जापान में 20वीं एशियाई खेल आज भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुए। निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए।

एवे दुनिया देवे तुहाई झूठा पांदी शोर, हो अपने दिल को पुछके वेखो कौन नहीं है चोर। ते की मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते की मैं कुफर तोलिया कोई ना, ते की मैं सर खोलिया कोई ना, भाई कोई ना, ना ना ना ना ना ना, एह कहीं मत जाइए, इससे ज्यादा नहीं गाऊंगी मैं, रुक जाइए, गाना नहीं है। मैं तो आपको बता रही थी कि जो इस तरह के छोटे मोटे झूठ है ना, वो आटे में नमक के समान होते हैं, बिल्कुल है ना, जो बचपन से लेके आज तक आप सुनते आए और उन्हें सच मानते आए। और ऐसे ही बहुत सारे झूठ जो है वो आप दूसरों से बोलते हुए भी आए होंगे, है ना, और जो बेचारे बहुत ही भोले किस्म के लोग होंगे बिल्कुल मेरी तरह, उन्होंने सच मान लिया होगा। तो फिर मैं आपसे आज ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप वो शिकारी हैं जिन्होंने अपने झूठ को सच बनाकर लोगों तक पहुँचाया है, या फिर आप शिकार हुए हैं दूसरे लोगों के झूठ का जो आपको सच लगा है। तो ऐसा ही कोई झूठ जो आपको सच बनाकर भेजा गया है या कहा गया है, वो आपको हमें बताना है 9868107070 पर। मेरे साथ ऐसा हुआ था, बचपन में मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि मुझे ना च्यवनप्राश खाने का बहुत शौक था, बहुत टेस्टी लगता था मुझे, तो मुझे ज़्यादा ना खाऊं मैं, इसके लिए उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ऐसा है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, शक्कर कम होती है, गुड़ होता है। तो मुझे लगा कि इतने दिनों से मैं च्यवनप्राश के पीछे पड़ी हूँ, बस शकरकंद और गुड़ ही होता है, छोड़ो ऐसे कुछ और खाते हैं। तो इस तरह करके उन्होंने जो है वो च्यवनप्राश का डिब्बा बचा लिया। लेकिन बड़े होने तक, मतलब जब तक मैं समझदार हूँ ना, तब तक मैं यही मानती रही कि च्यवनप्राश में सिर्फ गुड़ और शकरकंद होती है, मतलब ऐसा भी नहीं करना चाहिए ना किसी के साथ। हालांकि उन्होंने मेरी भलाई के लिए कहा था, ज़्यादा च्यवनप्राश खा के ना ज्यादा शक्ति आ जाती मेरे अंदर, तो मैं दुनिया का कुछ बुरा भी कर सकती थी। खैर फिलहाल मेरी बातों को यहाँ पर विराम लगाती हूँ, गाना चलाती हूँ, और आप बताइए कि आपने ऐसा कौन सा झूठ जो है वो लोगों को, है ना, पहुंचा दिया उन तक। कम झूठ बोला करिए आप।

नहीं, गलती कर बैठा तो स्वीकार कर लीजिए, वरना आपका क्या होगा तो मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि गलती आपने की तो भुगतनी तो आपको ही पड़ेगी। है मैं तो बस यहाँ पर मजे ले सकती हूँ इस बात के कि आपने वो गलती क्या की है वो बताइए आप मुझे। अगर कोई फनी किस्सा आपके साथ हुआ है जब आपसे किसी ने झूठ बोला है, बहुत ही मज़ेदार झूठ बोला है जिससे जानने के बाद आपको भी हंसी आ गई और उनके चेहरे पर भी, तो ऐसा झूठ ना अच्छा होता है जो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए। मतलब वो झूठ मत बोलिएगा जिससे लोगों के लेने के देने पड़ जाए, नहीं तो फिर आपको अपना कर्म भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर ज्ञान की बातें नहीं करूँगी मैं, लेकिन ये बात बता देती हूँ कि ये बड़ा मज़ेदार सा मैसेज इन्होंने मुझे भेजा है। ये है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से। बड़ा ज़बरदस्त मीठा मोहल्ला है आपका, है हलवाईयान मोहल्ला नाम है। मतलब ये आप मुझे इसका मतलब बताइएगा दूसरे मैसेज में। तो कहते हैं कि मेरी अम्मी जो है वो कहती थी कि लड़के चाय नहीं पीते नुकसान देती है, दूध पीना चाहिए ताकत आती है। फिर इन्होंने कहा कि जब मैंने चाय पीकर देखी ना तो मज़ा ही आ गया और फिर दूध पीना छोड़ दिया। देखिए आपकी अम्मी जो कहती है उसके आगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अम्मियों से हमेशा डरना चाहिए थोड़ा सा। वो आदरणीय है, वो जो कहती हैं अच्छा कहती हैं, क्योंकि झाड़ू तो आपके घर में भी होगी है कि नहीं, तो उससे भी डरना ही चाहिए ना आपको। और अम्मी के हाथ में वो आ जाए तो फिर तो आप जानती हैं। तो इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं हम शालिनी के साथ, और मैसेज मसाला मिक्स चल रहा है शो, जिसमें आपको बताना है कि बचपन से लेकर आज तक आपको ऐसा कौन सा झूठ परोसा गया है जिस पर आप ना एकदम तहे दिल से यकीन करते आए हैं और आपको अचानक से अंदाज हुआ कि ये मैं क्या कर बैठा, ये गलती मुझसे कैसे हो गई, मैं कैसे इसको सच मान बैठा। खैर वो इतना बड़ा भी झूठ नहीं था जिसने आपको नुकसान पहुंचाया, लेकिन कई बार आपका मजाक बना इस बात को लेकर पब्लिक में।

इस तरह का झूठ अगर आपसे किसी ने बोला या आपने किसी से बोला है तो आप हमें बता सकते हैं 9868107070 पर। और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, ये कहते हैं कि नमस्कार, हमने हमारे मित्रों को झूठ बोलकर एहसास दिया कि झूठ बोलकर उसका फायदा होने वाला था। ये क्या बात हुई है तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये हैं आडमुटे धारा शिव महाराष्ट्र, यशवंत नाम है इनका, और ये क्या कहना चाहते हैं मुझे लगता है जल्दबाजी में खुद ही भूल गए हैं पूरा मैसेज लिखना। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है मोहम्मद वक्कार फरीदी का, ये जो हमने पहला मैसेज पढ़ा था अभी जो हलवाईयान शेरकोट से, ये मोहम्मद वक्कार फरीदी का मैसेज था। और इसके बाद दूसरा मैसेज आया हमारे पास सरफराज आलम जोकी हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से, बेवकूफ़ तो कहते हैं खूब बनाया गया, बचपन में कहा गया कि सो जाओ सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठकर देखा तो सब सो रहे थे। देखिए आप ना सच्चे दिल के इंसान हैं, आप यकीन कर लेते हैं, अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है। तो आपने कितनी अच्छी बात करी ना, ये खैर बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ आपना, आपको सच का पता तो चल ही गया ना कि असलियत क्या है। खैर अगला मैसेज हमारे पास आया है अमरावती महाराष्ट्र से पंकज जी का, ये कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आई मीन गुड इवनिंग टू यू टू। गुड मॉर्निंग बोलने की इतनी आदत पड़ गई ना मेरे को जल्दी उठने की कि हमेशा मुझे गुड मॉर्निंग ही निकलता है। तो मैसेज मसाला मिक्स के लिए कहते हैं कि अच्छा कार्यक्रम है ये, धन्यवाद। झूठ बोलने की आदत नहीं है और कोई मुझे बार बार उनके यहाँ आने को कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आ पाऊँगा, अगली बार नहीं जाऊँगा, सामने वाला सच मान लेता है। अच्छा तो अगर आप व्यस्त हैं ऐसा मतलब ये क्या कहना चाहते हैं आप, आपने सारा मिक्स कर दिया है मैसेज कि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, कोई मुझे बार बार उनके आने को कहता है तो मैं कहता हूँ कि व्यस्त हूँ। अच्छा आप उन्हें झूठ बोलते हैं, ये तो आप अच्छा नहीं करते, ये गलत बात है, उन्हें कह दीजिए ना कि आप कहीं पर बिजी नहीं आ पाएंगे। तो आपने कहा उनको तो उन्होंने माना ही नहीं, फिर भी फिर आपको झूठ बोलना पड़ा। खैर क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ ना तो बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, मैं पढ़ूंगी वो, लेकिन फिलहाल एक गाना यहाँ पर चलाऊंगी और आप हमें मैसेज भेजेंगे 9868107070 पर। और आप बताइए कि आपने ऐसा कौन सा झूठ बोला या आपको ऐसा कौन सा झूठ बोला गया है जो आपने सच मान लिया था।

कोई पूछे ना पूछे, पर मैं तो आपका हाल जरूर पूछूंगी, क्योंकि मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी और आप जुड़ चुके हैं मैसेज मसाला मिक्स में। भले ही देर से जुड़े लेकिन जुड़ गए तो बहुत अच्छे गए, वरना मैं आपको डांट दी थी, प्यार से ही डांटती ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया, आपकी इतनी सारी डांटे मैं सुनती रहती हूँ यहाँ पर, मैसेजेस के जरिए आप भेजते रहते हैं, तो कभी कभी आप मेरी भी डांट सुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी जो है ना, उसको झूठ बोलने की कला के लिए बहुत जाना जाता था, वो मशहूर था। तो एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जो है उसके पास आई, बोली कि बेटा क्या तुम ही दुनिया के सबसे झूठे इंसान हो? तो वो बोला कि अरे माता जी, लोगों की बातों पर मत जाइए, लेकिन मैं तो आपको देखकर हैरान हूँ है? कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये रंग और ये गजब की दिलकशी, क्या बात है, क्या बात है। तो बुजुर्ग महिला जो है शर्माती बोली कि लोग भी कितने जालिम है ना, बेचारे इतने सच्चे इंसान को झूठा कहते हैं। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं, ऐसी झूठी झूठी एकदम मक्खन जैसी बातों में आ जाते? मैं कहती सोने मंगड़ो, मेरा वाला मक्खन ना झूठा नहीं होता है, वो सच्चा होता है, पर जो बाकी लोग लगाते हैं वो झूठा हो सकता है, तो उसको जरा पहचान के रखिएगा। आजकल मिलावट का बहुत दौर है, तो इस मिलावट के दौर में जो हमारे पास एकदम साफ सुथरा सा मैसेज आया ना, बड़ा ही ज़बरदस्त, जो आपके दिलों को एकदम खुश कर देगा, वो ये है कि सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी हमें शांतिनगर सोनीपत से मैसेज भेज रही हैं, कह रही हैं कि आदरणीय, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आदरणीय, मैंने बहुत दिनों की बात सुना है, सादर प्रणाम। ओ माई गॉड, अब तो हद ही हो गई है, कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। कहते हैं कि झूठ बोले कौवा काटे, बचपन से ये लाइन सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ना किसी को देखा नहीं कि किसी के झूठ बोलने पर कौवा ने काट लिया। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप क्यों चाहते हैं कि कौवा आपको काटे, सच बता रही हूँ मैं आपको। हालांकि ये सच बात है कि कौवे ने कभी किसी को काटा नहीं है, और बहुत बढ़िया बात है कि नहीं काटा है, क्योंकि अगर काट लेना तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके तोते शुतुरमुर्ग सब उड़ जाएंगे। वैसे सही बताऊँ तो कौवा ना बहुत ही क्यूट होता है, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट होता है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, तभी तो सड़क पे एकदम अखरोट रख के तोड़ लेता है, उसको पता होता है अगली गाड़ी आने वाली है। अगला मैसेज आ गया है जो, वो पढ़ लेते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। और क्या कहते हैं हमारे अगले लिसनर, ये कहते हैं कि हाँ, इन्होंने कहा है कि एक मैसेज जो है वो मैसेजेस की भीड़ में कहीं पर खो गया है, मैं उनका नाम ढूंढने की कोशिश करूंगी, लेकिन उनका कहना है कि देखिए, मैं जो है, मैंने एक झूठ बोला था, अपने दोस्त की बहन की शादी में गया था और उसको ये कहा था कि ये जो पैसे हैं ये तुम्हारे मौसा जी ने दिए बहन के लिए, कुछ बनवा लेना। और कहते हैं कि मैंने उसकी बहन के लिए जो है वो सोने की अंगूठी और कुछ और ज्वेलरी उनको बनवा के दी थी। तो ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह का झूठ बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी डीपी देखकर ना खामखाई आप कैसे भी लग रहे हो, नाइस पिक, ग्रेट है जी, वंडरफुल, तू सीधा छा गए। तो इस तरह का झूठ नहीं बोलना होता कि सामने वाला जो है गलत फहमी में, खुश फहमी में रहे। लेकिन ठीक है, अगर किसी के दिल में थोड़ी देर के लिए हंसी खुशी आ जाती तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सच बोलिए, इतना झूठ अच्छा नहीं लगता। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक आप ऐसा कौन सा झूठ है जिस पर विश्वास करते आए हैं, और आपको अचानक से एक दिन पता चला कि ये तो झूठ था, कैसा लगा आपको वो बताइए हमें 9868107070 पर। अगला ट्रैक आपके लिए, आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप मैसेज मसाला मिक्स विद मी शालिनी।

0: 102.6 पर आकाशवाणी रेनबो 102.6 है, ये मैसेज मसाला मिक्स चल रहा है मेरे यानी शालिनी के साथ। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक ऐसा कौन सा झूठ है जिसे आप सच मानते आए हैं। इतने भोले दिल के आप कि इतने शातिर दिमाग के आप कि आपने अपना झूठ जो है वो सच बनाकर दूसरों को पेश कर दिया हो, तो आप बेच सकते हैं, कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। लेकिन वो झूठ ऐसा होना चाहिए कि किसी का नुकसान ना हुआ, अदरवाइज तो मैं आपकी क्लास लगा ही दूंगी, है उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये है आलोक पवार और मिनी देहरादून से। कहती हैं कि जब ये कक्षा 8 में थी तब किसी पड़ोसी ने उनको बोला कि आज का नाश्ता जो है वो हमारे घर पर है, और जब ये करीब 1 घंटे के बाद जो है वो घर से मना करके कि मैं यहाँ पर खाना नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, तो वहाँ पर पहुँची तो वहाँ गेट को ताला लगा हुआ मिला और पता चला कि अप्रैल फुल बना दिया गया इनका। तो उसको याद करके इनको हंसी आती है। आपको हंसी आ रही है? मेरा तो रोना निकल रहा है। अगर मुझे कोई भूखे पेट इंतजार करा के और खाने पे बुलाए और घंटों के बाद फिर खाना ना मिले, मैं क्या जी, मेरा तो दिल बहुत दुख जाता है। मैं माफ नहीं करती ऐसे लोगों को बिल्कुल भी। लेकिन मैं इतना सेंटी क्यों हो रही हूँ? मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा अप्रैल फूल में मुझे हंसी बिल्कुल भी नहीं आती है। ऐसे लोगों के साथ मैं ऐसा करूंगी कि उनको अपने यहाँ पर खाना भी बुला के ना उनके साथ मैं ताला लगा के बाहर चली जाऊंगी, ये कैसा रहेगा, है ना? लेकिन मैं ऐसा करती नहीं हूँ क्योंकि मैं अच्छी हूँ ना, भूली हूँ मैं बिल्कुल आपकी तरह। चलिए अगला मैसेज ले लेते हैं। अगला मैसेज आया हमारे पास मनोज बंसल जी का, हासी हरियाणा से। कहते हैं नमस्कार मेघा जी, की हाल चाल है? विद्यालय में पढ़ते थे तब इनके आदरणीय प्राचार्य महोदय जो है, क्या बात है, मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे लोग जिन्हें शुद्ध हिंदी आती है। डरा के कहते थे कि तुम्हारे पिताजी से ना तुम्हारी शिकायत कर दूंगा ताकि हम पढ़ाई में लापरवाही ना करें, लेकिन वो करते नहीं थे शिकायत। आप इतने अच्छे स्टूडेंट थे ना, फिर आपको क्यों डराते थे वो। अब नेक्स्ट आया है हमारे पास मैसेज मोहम्मद सईद अब्बासी का, ऊपर कोट बुलंदशहर से। क्या अलग अलग गजब के नाम है ना, मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे नाम पढ़ने में। ऊपर कोट का क्या मतलब है बताइएगा मुझे। शुभ संध्या संध्या जी, अच्छा ओके, गुड इवनिंग टू यू टू, ये गुड इवनिंग कहना चाहते हैं। तो हम कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए लोगों ने झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। एक बार झूठ बोला कि हम घर पर नहीं है, और जिनको हमसे मिलना था तो वही घर पर आ गए और हमारा झूठ पकड़ा गया। मैं बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, है ना? मतलब आप अगर कहीं जाना चाहें और आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको? ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन अच्छा हुआ ना आपको झूठ पकड़ा गया, आप झूठ बोलने से बच गए आगे के लिए, आपको एकदम जो है वहां पर क्लास लग गई आपकी, आपको लेसन मिल गया। खैर, और अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये है अशोक विहार दिल्ली से भुवनेश। ये कहते हैं कि मेरे चाइल्डहुड में जो टीचर्स रहे वो कहते थे कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपको लॉक कर देंगे एक रूम में, और थोड़ा सा मैंने डरा दिया करते थे। लेकिन बाद मैंने रिलाइज हुआ कि ना वो डराने के लिए कहते थे, ऐसा करते वरते नहीं थे। तो आप क्या चाहते हैं, है? आपको रूम में लॉक कर दिया जाए? तो आप बताइए मुझे, मैं आपके टीचर को कॉल करती हूँ, कहूँगी कि इनको बहुत ही शौक है रूम में लॉक होने का, तो आपको कर देंगे, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये है, इन्होंने नाम क्या लिखा, कृष्णा नाम है इनका, कृष्ण कुमार मिश्र, ये है दयालपुर दिल्ली से। इनका मैसेज हमने आपको पढ़ के बताया था कि इन्होंने अपने दोस्त की बहन को जो है वो गिफ्ट में कुछ रुपए दिए थे ताकि वो उनके लिए ज्वेलरी का कुछ आइटम बनवा सकें, और मौसा जी ने दिया ऐसा कहा था, और इसके अलावा इन्होंने खुद भी ज्वेलरी बनवा कर दी थी। कितने अच्छे इंसान है ना, कोई अपनी बहन के लिए आजकल इतना नहीं करता, ये तो दूसरों की बहन को करने के लिए तैयार है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलकर किसी को घर पर बुलाते और खाना नहीं खिलाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान करते लोग ये बोल के कि मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 5 मिनट पहुँच रहा हूँ, कल से पक्का डाइटिंग शुरू। अरे मैं तो तुम्हें फोन करने ही वाला था यार, बस तुम्हारे ही फोन आ गया, क्या बताऊँ मैं, मुझे तो पैसों की कोई मोह माया ही नहीं है, बस शौक बड़ी चीज़ है। ऐसे जो है वो ज्ञान भरी बातें आपने बहुत सुनी होंगी, है ना, ऐसे ही करते हैं लोग। अब अगला जो मैसेज है हमारे पास क्या है वो हम आपको बताएं, इससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं। मैसेज मसाला मिक्स सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, स्टे ट्यून्ड।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद, सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
5: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
6: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
7: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
8: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
9: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से

0: इग्नोर कर देती हूँ। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
1: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर शालिनी आपके साथ और आप शालिनी के साथ और इसके साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं आप किसी भी समय हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर। इसके अलावा आप हमें सुन रहे हैं 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर और आप सुन रहे हैं आज क्या मैसेज मसाला मिक्स शालिनी आपके साथ। और यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ये कि बचपन से लेकर अब तक ऐसे कौन सा झूठ है जिन पर आप जो है बड़े भोले दिल से जो है वो यकीन करते आए लेकिन आपके यकीन ना उसके फाख्ते उड़ गए जब आपको पता चला कि वो तो झूठ था। कौन सा ऐसा झूठ है जो आपको परोसा गया है आपकी भलाई के लिए जिससे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई बाद में आपके अपने खुद के भोलेपन पर। जैसे मेरे आई थी मैंने आपको बताया था ना मेरे साथ ऐसे बहुत से झूठ बोले गए लेकिन आज यहाँ बात मैं अपनी नहीं आपकी कर रही हूँ। तो आप बताइए मुझे कि ऐसा कौन सा झूठ बोला गया। अगला मैसेज आया हमारे पास उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। ये हैं भेरूलाल वाखतरिया धाकड़। क्या बात है क्या जबरदस्त नाम है मुझे नाम लेने में आधा सेकेंड लग गया। खैर इस तरह की कुछ बातें होती हैं जो वास्तव में सच बन जाती हैं। किताबों में हम मोर पंख रखते थे जिससे विद्या अच्छी आए। मतलब आपकी विद्या के चक्कर में मोर के पंख गायब हो जाएं। मोर के सारे कपड़े आपने खराब कर दिए ना। बताइए वो क्या पहनेगा अब उसके पास एक ही जोड़ी कपड़े। अब इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो मैसेज आया ये बहुत सारे मैसेजेस भेजे उन्होंने ये पढ़ने में बहुत समय लगेगा मैं आराम से पढ़ के आपको बताऊंगी। ये अगला मैसेज हमारे पास आया है प्रमोद चिंचोलकर अकोला महाराष्ट्र से। ये कहते हैं कि हम कभी कभी झूठ बोलते हैं लेकिन सच भी बोलते हैं और जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता ना वो व्यक्ति कभी खाना भी नहीं खा सकता है। अब कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है बस इतना ही दीदी। आह ऐसा क्यों मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आई कि झूठ बोलने से खाना खाने का क्या मतलब है। क्या मतलब अगर आप सच बोलते हैं तो आपका खाना चुरा के ले जाते हैं लोग। ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी है। तो इसी तरह के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। गुड इवनिंग कह रहे हैं ये कहां से बोल रही हैं गीता हैं संगीत लाजवाब है। ओह म्यूजिक की हमारी तारीफ करें बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपको गाकर सुनाया वो नहीं बताया आपने कैसा लगा कि मैं झूठ बोल लिया कोई ना वो आपने सुना कि नहीं सुना बताइएगा मुझे। अटेंडेंस लगा दीजिए ठीक है लगा दी प्रेजेंट। आप कहते हैं कि यह है किशन वंजानी नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो जवाब कहाँ है जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पर 9868107070 नंबर बताया। वो बताइए आप झूठ बताइए वो जो आप अब तक सच मानते आए कैसे आपके भोले दिल को बेवकूफ़ बनाया क्या वो बताइए। या आपने किसी को बनाया ऐसा कौन सा झूठ है जिसे आप आज तक सच मानते आए हैं बता दीजिए। 9868107070 इज द नंबर डियर रेस। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल सही बात है, इसीलिए लड़कियों से पंगा भी ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज हमारे पास आया है उसमें लड़कियों से पंगा लेने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, इनका नाम है देवेंद्र ताक, वीपीओ डेयर, व्हाट इज दैट, प्लीज एक्सप्लेन। आप बता रहे हैं कि बचपन से इनकी दादी ने कहती थी कि बहन को कूटने से ना, मतलब मारने से सीने में हाथ उगते हैं, तो इस झूठ का इन्हें अभी पता चला है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि अच्छा है ना, बल्कि उल्टा है। अभी आप दो हाथों से मार रहे थे, आपके सीने पे हाथ उगाते तो आप 10-15 हाथों से मार पाते हैं कि नहीं, बहुत मजा आता। लेकिन ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। हंसी मजाक की बात अलग है, पर स्त्री शक्ति से पंगा लेना ना हमेशा जो है वो भारी पड़ता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करेगा, मैं आपको बता रही हूँ। अगला मैसेज हमारे पास आया है, शाम की नमस्कार इन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं। ये है हमारे लिसनर पंचकुला से, आशु चुग, अश्विनी चुग गोविंद, ठीक अच्छे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, डियर शालिनी जी कैसी हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ही चंगे तो सीखे हुए हूँ, बता दो। आज के टॉपिक पर कहना चाहती हैं कि झूठ बोलने को आती है तो कहते हैं ज़्यादा झूठ तो नहीं बोला है उन्होंने, सभी यही कह रहे हैं ज़्यादा झूठ तो नहीं बोलती, बस थोड़ा कुछ बोलती रहती हूँ, आटे में नमक के जैसा है, बस इतना ही है। कहते हैं कि बचपन में पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल देते थे, मारना पड़े इसीलिए ये स्कूल में मार पड़ने से लेट जब पहुंचती थी तो भैया झूठ बोल देती थी थोड़ा सा। अंशी शर्मा है हस्तिनापुर मेरठ से। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये है अफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से। ये कहते हैं कि जब बदमाशी करते थे ना स्कूल में तो इनके सर कहते थे तेरा नाम काट दूंगा, चुपचाप बैठते आराम से, बहुत बदमाशी करता है। तो अगर बदमाशियाँ करेंगे तो ये तो होगा ही ना, आप खैर मनाइए कि आपका नाम कटा नहीं, वरना आप जो है वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते कि आप रेडियो में मैसेज कर पाए, है ना, आप धन्यवाद करिए अपने सर को। बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं किन्होंने कि इतने सारे मैसेजेस भेजे हैं कि नाम पढ़ना मुश्किल हो रहा है, नाम तो इनका नहीं ढूंढ पा। हाँ, बबलू कश्यप जी ने भेजे हैं और 6-7 मैसेज भेज डाले, प्रोग्राम बेहद पसंद आ रहा है इसके, लेकिन मुद्दे की बात इन्होंने नहीं करी है, इन्होंने नहीं बताया हमें कि क्या झूठ ऐसा इनका जो है वो जो हम अपने टॉपिक पर बात करें उसके बारे में कोई बात नहीं करें। बोला देखो सुनो, जो मुझे कहना है वो भी कहूँगा, जो आपको सुनना है सुन लो, नहीं रखना इन मंत्र को, पर मैं तो बस यही बात करूँगा। तो अगला मैसेज हम शामिल कर लेते हैं, ये हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता।

दीपा और रिमझिम जो है वो दो नाम है, एक ये आप देख लीजिएगा, आपने एक साथ ही लेकर भेजा है और कुछ भी नहीं लिखा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा झूठ है आपकी लाइफ में जो आप आज तक सच मानते हैं, बताओ क्यों नहीं देते। तो अगला मैसेज आ गया हमारे पास, ये जो है कौन है, डॉली है, ये कहती है कि बचपन में कहा जाता था कि अंधेरे में भूत होता है पर अभी तक मुझे मिला नहीं, अभी भी नजारा जब अंधेरा का अंधेरा होता है तो हम ये छत पर जाकर बैठ जाती हैं। नहीं मतलब आपको क्या है, क्या चाहिए आपको, आपको क्यों मिलना है भूत से, अच्छे खासे इंसान आपको पसंद नहीं आते, इंसानों से बात करना पसंद नहीं है आपको, मुझे बताइए, मुझे बता दीजिए आज आप क्यों मिलना चाहती हैं आप भूत से, क्या बातें करेंगे आप उनसे। मैं सच बता रही, जिस दिन मिल गया ना आपको या मिल गई आपकी कोई दोस्त, तो फिर टाइम पीछे जानी है। नेक्स्ट, अब अगला हमारे पास मैसेज आ रहा है, ये जो देखिए नाम अपना जरूर लिखे, नाम नहीं लिखते ना पर मैं कैसे बताऊं, फिर बाद में आप शिकायत करते हैं, फिर अगला मैसेज भेजते हैं, अब मैं एक मैसेज पर ही अटके रहूंगी तो अगला मैसेज कैसे पढ़ूंगी है। तो दूसरा गाना ये जो है कहते हैं कि 58 दिन बाद मेरा मैसेज पढ़ा आपने, ये है कृष्ण कुमार मिश्र। देखिए ऐसी शिकायतें भी आती है हमारे पास, पूरा नोट करके रखते हैं लोग, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं कि सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत मंगल कामनाएं, धन्यवाद। और इसके बाद इनका नाम है यहाँ पर लता नूरजहां मोहम्मद, ना ना ना ना ना ना, ये नाम नहीं है इनका, इनका नाम तो इन्होंने लिखा ही नहीं है, खैर छोड़िए, आपको नाम पहले लिखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास मैसेज आया है किन का, ये कहते हैं नमस्ते जी, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी, सी आर कुलकर्णी, मुझे लगा सी आर, ये कैसा नाम है। तो ये इन्होंने गाने का नाम लिखा है लेकिन गाना हम वो प्ले नहीं कर सकते क्योंकि हम पुराने गाने नहीं चला रहे हैं, पर ये तो आपको पता ही होगा। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं पढ़ने बैठूंगी तो ये पूरा शो ही खत्म हो जाएगा। आपसे मैं बता दूं कि अगर आप अभी तक बचपन से लेकर आज तक कोई झूठ ऐसा फेस किया आपने जिसे आप एकदम सच मानते आए और अचानक से आपकी आंखों की जो बत्ती है वो खुल गई है और आपको समझ में आ गया कि तो झूठ था, तब आपको कैसा लगा यह आप बताइए 9868107070 पर। मैसेज मसाला मिक्स चल रहा है शो आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, स्टे ट्यून्ड।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर शालिनी की आवाज सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और हम बात कर रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक आपके साथ ऐसा कौन सा झूठ बोला गया जिसे आप सच मानते आए। तो हमारे पास मैसेज आया है, ये है अनिल शर्मा सरिता विहार दिल्ली से। ये कहते हैं कि बचपन में ना मुझे बच्चे समझ गए, छोटे बच्चे समझ के दूध बताकर झूठे से दादी ने पोते को सत्तू में पानी घोल के पिला दिया था। गर्मी में सत्तू की तासीर जो है वो ठंडी होती है, इसलिए बच्चे को झूठे से सत्तू पिलाया। ऐसा कोई करता है क्या, बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं आपने बड़े होकर दादी से बदला तो नहीं लिया कि उन्हें जो है वो सत्तू बोलकर दूध पिला दिया? ऐसा नहीं करना होता, पर छोटे बच्चा जान के आपके साथ धोखा हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, बड़े लोग ऐसा कर देते। तो अगला हमारे पास मैसेज आया है, ये कहते हैं कि आप कार्यक्रम इन्हें पसंद आ रहा है, ये तो उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन आपने जो है वो मुद्दे की बात नहीं करी, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अगला मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला हलवाइयाँ से, ये तो मैसेज हम पढ़ चुके हैं, आप हमें बार बार सेम मैसेज नहीं करेंगे। देखिए कुछ मुद्दे से जुड़ा हुआ मैसेज करिए तो वो तो मैं पढ़ूंगी। पंचकुला से आशु चुग ये हैं, अब गाने की फरमाइश भेजिए इन्होंने। देखिए मैंने आपको कहा है कि आप हमें बताइए कि आपके साथ ऐसा कौन सा झूठ बोला गया। उमेश गर्ग फ्रॉम सऊदी अरेबिया ये हैं कि बचपन में हमें रोते हुए चुप करने के लिए बोला जाता था कि देखो चींटी मर गई है। तो आप जो है अपने बच्चे को चुप कराने के लिए चींटियों को मारते थे, ऐसा गलत बात है। ऐसे बच्चे जो चींटियों को मार मार के जो है वो खुद चुप होंगे, ये हिंसा सिखाते थे आप, ऐसी गलत बात मत सिखाइए बच्चों को। और एक मैसेज हमारे पास आया है, कहते हैं कि हमें जो है बचपन में कहा जाता था कि डॉक्टर जो है वो जब सबसे बड़ा झूठ जो है वो डॉक्टर ही बोलते हैं, कहते हैं बिल्कुल दर्द नहीं होगा बेटा है, बस चींटी काटेगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो इंजेक्शन में जो है वो दवाई भरते थे चींटियां है, नहीं बताओ तो मुझे आज है, झूठ बोलना इतना अच्छी बात है। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, वो कहते हैं कि गुजराती बाजार सागर से राजेश मनवानी, शंकर सचदेव, अनिल गंगवानी, सपना मनवानी, बहुत सारे नाम लिखे हैं, समय हमारे पास कम है, बहुत सारे नाम है। और इसके अलावा उन्होंने मुद्दे की बात नहीं लिखी, सबसे बड़ी बात। तो आजकल की बात है, बचपन में झूठ बोला गया था कि मैम आपकी शादी करवाएंगे, अगर रोज स्कूल जाऊँगा तो निशा मैम से शादी करवाएंगे, निशा मैम इन्हें बहुत पसंद थी, सच मान लिया और बड़ा हुआ तो शादी उनकी हुई पर मुझसे नहीं, विदेश चली गई मैडम, बताइए अब वो NRI हो गई है, अब क्या कर सकते हैं। ये बचपन का जो प्यार होता है ना, बड़ा ही भोला होता है। आप छोटे बच्चे थे, आपको पता ही नहीं, जिससे भी कहता मैं शादी करूँगा हाँ? हाँ? तो खैर, आपके इतने सारे मैसेजेस आए ना, बहुत शुक्रिया आपका इतने सारे मैसेजेस भेजने के लिए, लेकिन अब जो है वो जाने का समय हो गया है। तो आज हम बात कर रहे थे मैसेज मसाला मिक्स में कि बचपन से लेकर आज तक जितने भी झूठ आपसे बोले गए हैं और उन्हें आप सच मानते आए, तो वही आप हमें बता रहे थे। लेकिन अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, बस कई बार जो है ना मुझे लगता है कि सब्जी वाले भी जो है ना वो एवरग्रीन झूठ बोलते हैं, कहते हैं भाई साहब एकदम ताजी सब्जी है, सुबह खेत से तोड़कर लाया हूं। मानना पड़ता है, क्या करें, खुद जाकर खेत में उगा नहीं सकते ना, इसीलिए मानना ही पड़ता है। चलिए शालिनी सर, टेक केयर, ख्याल रखें, ते गाना सुनी जाएंगे।

0: Well, if you tuned in, you tuned in live to us, with us on Akashvani FM Rainbow 102.6 Musical Yours. Time for the little teeny weeny break that we gotta take. Stay close, stay tuned. We'll be back in just a couple of seconds.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 滴滴答答答答答答。
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: That's right, everything's gonna be all right, and that's the kind of attitude we need to just hold our head high and say it's time for us to just let go of all the hassles and the tensions and just enjoy the weekend just as it is. So put away that work, put away the stress, and just enjoy the music that we're playing for you. You got something to share with us? Our number is 9868107070. That's right, that's our WhatsApp number, 9868107070. My name's Pooja Anand, and this is, of course, Saturday Sizzlers. And we are sizzling hot with some great music lined up. But before that, let's take that teeny break. We'll be back in just a couple of seconds. Don't go anywhere.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव सहित 3 पदों पर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद निर्दलीय प्रत्याशी ने जीता। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में लगभग 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से अधिसूचित रिज क्षेत्र बढ़कर लगभग 13,000 एकड़ हो जाएगा। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 से अधिक रूट किलोमीटर पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने लुधियाना में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित मिखाइलोवस्काया मिलिट्री आर्टिलरी अकादमी का दौरा किया। और जापान में 20वें एशियाई खेल आज भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुए। निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए।

मैं गया जी सोने मकड़ो, की हाल चाल है। लो जी मैं तो एंट्री मार चुकी हूँ। शालिनी कहते हैं मुझे और आपको क्या कहते हैं तो आपको पता ही होगा, और चैनल को कहते हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6। और शो शुरू हो चुका है म्यूजिक मस्ती। और मेरी एंट्री मारने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नागिन डांस की जो एंट्री है ना, वो इंडिया में तभी हो चुकी थी जब मम्मी पापा के खिलौने खरीदने से मना करने पर बच्चे जो है वो हाथ फैलाकर पैर फैलाकर जमीन पर ना लौटते थे और कहते थे

बस मैं अपने इस म्यूजिक को बंद करती हूँ, क्योंकि आप जो हंस रहे हैं ना, किसी की रुलाई देखकर आपको जो हंसी आ रही ना, उससे मुझे तकलीफ हुई। मैं रो रही हूँ और आप हंस रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। तो चलिए, आप मुझे देखकर भले हंस रहे हो, तो आपकी हंसी को बरकरार रखने के लिए आपको चाहे कोई भी डांस आता हो, नागिन डांस, तोता डांस, मोर डांस या कछुआ डांस, वो आप कर लीजिए अगले गाने पर।

0: 3 4 अगर मेरी मम्मी ने भी मेरे को ऐसे इतने इंटरेस्टिंग स्टाइल में 1 2 3 4 सिखाया होता ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, गोल्ड मेडल जीत लेना था मैंने स्कूल में।
1: कोई नहीं, मैं ही हूँ। जब गले के एक कोने से बोलते बोलते थक जाते हो तो दूसरा यूज कर लेते हो। आप भी करिए, बहुत मजा आएगा। मैं कहती हूँ जी, मैं कहती हूँ सोने मगड़े, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर विथ मी शालिनी। और क्या चल रहा है शो? शो का नाम है म्यूजिक मस्ती। तो करिए ढेर सारा धमाल और करिए ढेर सारी मस्ती इन धड़ाके के सॉन्ग्स के साथ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अगला सॉन्ग आपके लिए आने वाला है ना, वो भी बहुत ही कमाल होने वाला है। लेकिन उससे पहले कमर्शियल चलाएंगे और फिर गाना बजाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड, भागिएगा नहीं कहीं पे। अभी 1 2 3 पूर करना बाकी है।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

बस करिए क्रेजी बोलना, ये बाल फैलाकर जो आप जो है बहुत देर से डांस किए जा रहे हैं, क्रेजी किए रे, क्रेजी किए रे, आपको ना अस्पताल छोड़ के आने की जो है वो नौबत आ सकती है। आप क्या कर सकते हैं, बार बार अपने आप को इतनी देर से आप जो क्रेजी बोल रहे हैं तो लोग ऐसे ही करेंगे ना आपके साथ में। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं आपको आगाह कर देती हूं ताकि आप बचे रहें। शालिनी कहते हैं मुझे और चैनल का नाम है आकाशवाणी रेनबो 102.6, यहां पर शो चल रहा है म्यूजिक मस्ती। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना एक शादी के फंक्शन में गई थी, वहां पर वेडिंग अटेंड करने के लिए गई हुई थी। तो वहां पर एक साहबजादे थे जो कि बहुत देर से ना नागिन डांस करने पे तुले हुए थे, लगे हुए थे। तो इतनी देर में क्या हुआ कि लड़की के पिता ने आकर कहा कि भाई मान जा, मान जा, अब क्या नागमणि लेके मानेगा ही? तो आप ना, मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि शो शुरू हो चुका है, यहाँ पर मैं डांस नंबर चला रही हूँ, तो कहीं और क्यों जाना है किसी की शादी में? यहाँ पर एंजॉय करिए, स्टे ट्यून्ड।

वेल, ढोल नगाड़े चम्मच हारमोनियम मंजीरे डीजे जो आपको बजाना हो बजा लीजिए, लेकिन मैं ये जी तुम्हें नाचना तो पैना ही है। अच्छा, म्यूजिक मस्ती चल रहा है, शो शालिनी कहते हैं मुझे, और शो का नाम तो मैं आपको बता चुकी, चैनल का नाम बता देती हूँ, मैं आपको भूल जाती हूँ कभी कभी, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। चैनल का नाम है आकाशवाणी रेनबो 102.6 यानी कि 102.6, और इसके अलावा आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी वर्ल्ड वाइड सुन पाते हैं, और हमारे OTT प्लेटफॉर्म से भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वो टोटली फ्री है। सो डियरीज, स्टे ट्यून टू 102.6। और अभी फिलहाल ना जो मौसम में टक्कर चल रही है तीनों

मौसम में टक्कर चल रही है, सर्दी आ नहीं रही है, गर्मी जा नहीं रही है, और बारिश जो है वो बीच बीच में अपनी टांग उड़ा रही है, क्या कर सकते हैं बताइए। तो एसी में जो है मुझे लगता है कि बारिश अभी भले ही ना हो रही हो, लेकिन फिल्मों में जब बारिश होती है ना तो हीरो हीरोइन जो है वो अचानक से नाचने लग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जब बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, ऊपर से चींटियाँ जो है वो लाइन लगा के आ जाती है और केंचुए फर्श पर कब्जा कर लेते हैं। बताइए ऐसे में कोई रोमांटिक बातों के बारे में कैसे सोच सकता है, कैसे कैसे कैसे। इसीलिए तो कहते हैं कि रियल लाइफ से मतलब आपको अगर रियल लाइफ में रोमांटिक बातें करने को नहीं मिल रहा है तो आप रियल लाइफ में जाइए, यहाँ पर रोमांटिक बातें करिए, ये बहुत सारी बातें मिल जाएंगी आपको। और फिलहाल म्यूजिक तो आपको मिलेगा ही, तो एंजॉय करिए।

0: बताइए।
1: क्या चाची, आप भी ना कितने तो अच्छे हैं चाचा।
0: अरे बेटा मैं तो मजाक कर रही थी। तू भी ना तो बस तो ही मजाक कर सकती क्या? मैं नहीं कर सकती है? कितने बढ़िया गाने चला रही तो बताए, मेरे तो नाचने को जी कर रहा है, रुकने का जी नहीं कर रहा। एक काम कर, फिर से गाना चला, ये वाला चला, देसी गाल चला दे।
1: ठीक है चाची, चला रही हूँ। ये चाची है मेरी, मेरी मन वाली चाची, अब इनका कहा तो मैं डाल नहीं सकती, तो चला देती हूँ। देसी गर्ल इज नेक्स्ट फॉर यू। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप, मेरे यानी शालिनी के साथ, और शो चल रहा है म्यूजिक मस्ती।

0: का हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल,

0: ऐसा थोड़ी होता है। हैं जी बताइए, हमारी शादी तो कितनी अच्छी चल रही है। जल्दी चलिए पार्टी में जाना है, लेट हो जाएंगे हैं। और आज ना गाड़ी मैं चलाऊंगी, ठीक है?
1: अच्छा गाड़ी तुम चलाओगी, यानी कि जाएंगे कार में और आएंगे अखबार में?
0: ये आपने गलत कर दिया। अब ये जो आपने किया है ना, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। मैं तो कह रही हूँ 5 मिनट रुक जाइए, पार्टी में भले ही लेट जाइए लेकिन ये वाले गाने पर ना डांस करके जाइए, ताकि उनका गुस्सा जो है वो रफू चक्कर हो जाए। वरना गाड़ी कोई भी चलाए लेकिन खबर को अखबार में ये लाई देंगी। और हाँ ये बात मैं बता दूँ कि बहुत ही गलत फहमी है कि लड़कियाँ गाड़ी अच्छी नहीं चलाती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने सारे एक्सीडेंट जो हो रहे हैं रोज़ाना सड़कों पर वो यूँ ही नहीं होते। तो लड़के भी कभी कभी गलत चलाते हैं और लड़कियाँ भी, तो दोनों बराबर ही हैं। ठीक है जी, इन्जॉय करिए सॉन्ग को।

Hey dearies, you're on Akashvani Rainbow 102.6 with me, Shalini. Your show चल रहा है Music Masti. Music Masti में हमने करी बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे गाने आपके लिए प्ले किए, लेकिन अब जब जाने का टाइम हो गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? मुझे जाना ही पड़ेगा. नहीं नहीं, मैं जाऊँगी. मैंने कुछ भी कर लीजिए, मैं तो जाऊँगी. लेकिन उससे पहले आपके लिए गाना चलाऊंगी और आपको बताना पड़ेगा उससे पहले कि रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं. मैं बता रही हूँ, अगर आपने गलत कहा ना तो पार्टी आपको देनी पड़ेगी. और उस पार्टी में इस गाने पे नाचेंगे हम, जो अगला मैं प्ले करने वाली हूँ, ठीक है? तो तुसी नच दे टप दे रहो तो मैं जा रही हूँ इत्थों, ठीक है? दूसरे आरजे आ गए. शालिनी सेस ठठा, एंजॉय.

नमस्कार, आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव सहित तीन पदों पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में एबीवीपी की जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने और पश्चिमी रेलवे के उदना उकाई सोगांध खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दी है। उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ में आज से 2 दिन का देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव शुरू हुआ। भारतीय सेना और जिला प्रशासन ने मिलकर ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत इस महोत्सव का आयोजन किया है और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम रेनबो सेलिब्स। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं पंडित रोनू मजुमदार, रमिनेंद्र भानु मजुमदार, फ्लूट प्लेयर, पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी अवार्डी। भेंट करता है निशा भारद्वाज।

0: नमस्कार श्रोताओं, रेनबो सेलेब्स कार्यक्रम में मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी महान शख्सियत मौजूद हैं, जिनकी उंगलियां जब बांसुरी पर थिरकती हैं, तो हवाएं भी ठहर कर संगीत सुनने लगती हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं मैयर घराने के गौरव, भारत के बेहद लोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पद्मश्री सम्मानित बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार जी। पंडित जी का संगीत सफर सिर्फ पारंपरिक शास्त्रीय संगीत तक सीमित नहीं रहा है। आपने महान सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के मार्गदर्शन में अपने हुनर को निखारा। इसके साथ ही आपने बॉलीवुड में आर डी बर्मन के साथ 1942 और लव स्टोरी जैसी फिल्मों में जादुई संगीत दिया है। देश विदेश के कई बड़े कलाकारों के साथ फ्यूजन म्यूजिक बनाकर आपने भारतीय बांसुरी को एक नई वैश्विक पहचान दिलाई है। अपनी अनूठी शंख बांसुरी के आविष्कार से संगीत जगत को अचंभित करने वाले पंडित जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं पंडित रोनू मजूमदार जी का। पंडित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: पंडित जी, आपकी शुरुआती शिक्षा आपके पिताजी डॉक्टर भानु मजूमदार जी से हुई और बाद में आपको पंडित रविशंकर जी का सानिध्य भी मिला।
1: जी,
0: आप 6 वर्ष के थे जब आपने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया था।
1: जी,
0: और फिर 13 वर्ष की आयु में आपने पहली परफॉर्मेंस भी अपनी जो मंच पर थी वो दी।
1: जी,
0: तो मैयर घराने से प्राप्त शिक्षा का कोई ऐसा किस्सा बताएं या बचपन का ऐसा कोई किस्सा बताएं जिसने आपको प्रेरित किया एक कलाकार के रूप में परिवर्तित होने के लिए।
1: मैं जब 6 साल का था, वाराणसी में तो मेरा जन्म हुआ, तो मैंने बांसुरियों से खिलौने की तरह खेलते खेलते 6 बांसुरियां मैंने तोड़ दी थी।
0: जी,
1: तो पिताजी कोई उन्होंने मारा नहीं, मुझे डांटा नहीं, उन्होंने बोला अभी तुमने ये 6 बांसुरियां तोड़ दी है तो अभी 6 घंटा रोज रियाज करो।
0: जी,
1: और उन्होंने मुझे सारे गामा पादा निशा सिखा दिया। तो मैं 6 घंटा बजाता था, तो उससे ऐसी तैयारी आने लगी मेरे हाथ में कि फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। फिर जब 10 साल का था तब तक भी मैं पिताजी से सीखता रहा। हाँ, ये जरूर है कि ठुमरी सम्राट महादेव प्रसाद मिश्रा जी के पास आना जाना था मेरा। उस आना जाना की वजह से उनसे काफी ठुमरी दादरा मुझे सीखने को मिला 7-8 साल की उम्र में ही। और बॉम्बे जाके फिर गाना सीखना शुरू किया मैंने लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी से, और फिर मुझे बांसुरी के गुरु 76 में मिल गए पंडित विजय राघव राव
0: जी। तो ये तो हुआ कि आपने प्रोफेशनली सीखा और शुरुआत की पिताजी से।
1: जी,
0: लेकिन माता जी का इसमें क्या भूमिका रही? माता जी की भूमिका पर भी प्रकाश डालें।
1: माता जी ही वो मेरे जीवन में, इस साल तो वो मुझे छोड़ के चली गई, वो शख्सियत रही जिनकी वजह से मैं बांसुरी वादक बना। क्योंकि वो पन्नालाल घोष की बहुत बड़ी भक्त थी, जो बांसुरी के जन्मदाता हैं पंडित पन्नालाल घोष, तो पन्ना बाबू के नाम से प्रख्यात थे वो। उनको सुनते सुनते वो सपना उन्होंने देख लिया कि मेरे बेटे को मैं बांसुरी वादक बनाऊंगी, तो उन्होंने पिताजी पे जोर डाला कि इनको गुरु की प्राप्ति कराओ। और ट्रेन में मैं गिर गया था एक बार, लोकल ट्रेन में, तो उल्लासनगर से मैं सायन सर्कल सीखने जाता था, तो पिताजी को बोलती थी आप अपने बेटे का ध्यान नहीं रखते। गिर गया, घुटने में चोट आई, मगर यही है कि माताजी ने रियाज के लिए जो जितना रियाज मेरा हुआ वो माताजी के वजह से। वो डंडा लेके बैठी रहती थी कि ये पूरा रियाज करेगा तभी इसको खाना मिलेगा।
0: तो पढ़ाई पर इतना ज्यादा बल नहीं दिया, लेकिन बांसुरी के रियाज पर पूरा बल था।
1: नहीं, दोनों चीज पे उन्होंने बल दिया। वो तो बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी माँ। ऐसी माँ, बाप रे, क्या बताऊं आपको। एक चीज मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि संगीत की साधना से पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपका आपके अंदर जो एक
0: फोकस और जो कॉन्सेंट्रेशन
1: मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है पढ़ना, वो एंटरटेनमेंट में बदल जाता है।
0: जी,
1: तो मैं जो चीज 5 घंटे में बच्चे याद करते थे वो मैं आधे घंटे में कर लेता था।
0: तो सारे गामा वहां पर भी नोट्स लगते हैं क्या पढ़ाई में भी?
1: पढ़ाई में स्वर तो होते हैं
0: जी, उन्हें पहचानने वाला होना
1: जी,
0: चाहिए।
1: जी, जी,
0: जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पंडित जी, बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो सीधा आपकी सांसों से जुड़ा होता है। पहली बार जब आपने इस बांस के वाद्य यंत्र को छुआ था, क्या आपको उसी पल से महसूस हो गया था कि यही आपकी जिंदगी का जरिया बनने वाला है?
1: नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। मैं तो बजाता था सिर्फ शौक के लिए, और मैं सबसे कहता हूँ कि आपका शौक होना चाहिए, ये प्रोफेशन नहीं। अगर आपका शौक इतना बढ़ जाए कि फिर

0: कोई चारा ही नहीं कि आप कुछ और करें, तो प्रोफेशन तो अपने आप बन ही जाएगा और वो जीवन का सहारा बन जाएगा, मगर वो जीवन का सहारा बनाने के लिए मत बजाइए, उसका पैशन शौक होना चाहिए।
1: तो शौक होगा तभी जो आपका हुनर है वो आपसे आगे जाकर आपके बारे में आपकी तारीफ करेगा। और अब समय है एक म्यूजिकल ब्रेक का। आप ही की शुरुआती फिल्मों में से एक जमीन आसमान का ये गीत है, ऐसा समाना होता। इस गीत में बांसुरी का नोस्टैल्जिक एहसास है, मानो जैसे कोई शास्त्रीय आलाप फिल्मी पर्दे पर उतर आया हो। तो सुनते हैं ये गीत।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स और आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार जी। तो पंडित जी, फिल्म 1942 और लव स्टोरी का गाना कुछ ना कहो आज भी हर पीढ़ी की पसंद है। आर डी बर्मन के साथ उस आइकॉनिक बांसुरी के पीस को रिकॉर्ड करने का अनुभव कैसा था, उस समय का स्टूडियो का माहौल कैसा था, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: स्टूडियो का माहौल एक परिवार की तरह होता था क्योंकि डबिंग नहीं होते थे, सब एक साथ बजाते थे। हाँ, सेक्शंस होते थे, फ्लूट सेक्शन है, सितार सेक्शन है, मैंडोलिन सेक्शन है, ट्रम्पेट सेक्शन है, ग्रुप वायलिन मतलब सिम्फनी जो उसका एक सेक्शन है। तो एक कोई अगर अच्छा बजाए तो दूसरा तारीफ करता था, अगर एक कोई खराब बजाए तो दूसरा क्रिटिसाइज करता था दूसरे सेक्शन से। तो इससे जो माहौल बनता था वो माहौल आज देखने को नहीं मिलता। ये माहौल मैंने देखा, पहली फिल्म तो मैंने लव स्टोरी बजाई, याद आ रही है। तो जर्नी पूरी आर डी बर्मन के साथ जो मैंने बजाई वो लव स्टोरी से लेके 1942 लव स्टोरी, कुछ ना कहो आखिरी गाना।
0: तो जब आप ये गाना बजा रहे थे, आपको पता था कि एक दिन आइकॉनिक पीस बन जाएगा ये सॉन्ग?
1: कुछ ना कहो का मुझे मालूम था,
0: वो इंट्यूशन पहले से आ गई थी जब कॉम्पोजिशन हो रही थी।
1: कॉम्पोजिशन हुई और आर डी बर्मन की आंख में आंसू जब आया, जब मैंने वो इंट्रो म्यूजिक बजाया
0: जी,
1: तो वो मुझे गले लगा लिए और बोले कि देखना ये गाना जितना हिट होगा उतना ही तेरा बांसुरी भी हिट हो जाएगा, पहचानेंगे लोग तुझे इस पीस की वजह से। शास्त्रीय संगीत तो जो है तेरा वो है ही, मगर फिल्म के लिए भी तू पहचाना जाएगा। तो वही हुआ।
0: तो ये एक टर्निंग पॉइंट की तरह रहा आपकी लाइफ में?
1: नहीं, टर्निंग पॉइंट तो आर डी बर्मन के पास जाना ही टर्निंग पॉइंट था 1980 में। ये तो क्लोजिंग सेरेमनी हो गया, वो चले जाएंगे ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि उनको कमबैक भी करना था, उनका बुरा समय चल रहा था ना। तो उनको लगता था कि ये 1942 से मैं कमबैक करूंगा और फिर राहुल देव बर्मन टॉप में जाएंगे
0: जी। तो ये हाईएस्ट नोट था, ये कह सकते हैं
1: जी,
0: तो ये हाईएस्ट नोट को आप सुना भी दीजिए अपनी बांसुरी के जरिए हमें, हमारे श्रोताओं को
1: जी। वो जो इंट्रो का पीस है उससे मैं शुरू करता हूँ, देखिए।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। मैं हूं निशा भारद्वाज और आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में पद्मश्री सम्मानित बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार जी। तो पंडित जी, आपने हॉलीवुड के गिटार वादक राई कूडर से लेकर कई पश्चिमी कलाकारों के साथ काम किया है। जब दो अलग अलग संस्कृतियों का संगीत मिलता है, तब सुरों का तालमेल बिठाने में क्या कुछ चुनौतियाँ आती हैं?
1: चुनौतियाँ जरूर आती हैं, क्योंकि उनके म्यूजिक में कॉर्ड हारमोनी होता है और हारमोनी का अगर नॉलेज नहीं है तो आप उलझुल ढंग से बजा सकते हैं, बजाना हो जाएगा आपसे। तो इसीलिए चैलेंज ये है कि उनका जो तरीका है बजाने का, वो भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से कोलैबोरेशन कर सकते हैं, नहीं तो जैम नहीं होगा अच्छी तरह। तो मैंने वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा है स्टैनली गोम्स से
0: जी,
1: तो वो मुझे बहुत काम आया। और राई कूडर के साथ हॉलो बैम्बू, लेडी स्ट्राइक्स द टाइगर एंड फैसिनोमा, और बेला फ्लेक के साथ टाबुला रसा जिसको ग्रैमी नॉमिनेशन मिला, इतना सब।
0: तो आपके मन के नजदीक सबसे ज्यादा कौन सा है? ये क्यों पसंद है आपको?
1: उसमें मैंने एक पीस मैंने बजाया था बे ऑफ बंगाल, उसमें राई कूडर ने बिना बताए बजाना शुरू किया, तो देखिए अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने ऐसे बजाया गिटार उसमें, मेरे आंख में आंसू आ गया। और

0: और ये जो मेरी शंख बांसुरी है वो 10 मिनट का उसमें एक पीस बजाया मैंने। 10 मिनट तक शंख बांसुरी को पकड़ना भी मुश्किल है, इतना इसका फिंगरिंग डिफिकल्ट है। तो हॉलो बैम्बू मेरे बहुत दिल के करीब एल्बम है। अवार्ड भले ही दूसरे एल्बम को मिला मगर हॉलो बैम्बू इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट।
1: जी, अभी आपने शंख बांसुरी का जिक्र किया, तो ये जो आपने शंख बांसुरी का आविष्कार किया ये आकार में काफी बड़ी होती है और इसकी गूंज जो होती है बहुत गहरी होती है।
0: जी जी जी।
1: इस नई बांसुरी को बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया और इसकी बनावट आम बांसुरी से कितनी अलग होती है?
0: बहुत अच्छी बात कही आपने, विचार कैसे आया। मैं मॉस्को गया था फेस्टिवल ऑफ इंडिया के क्लोजिंग सेरेमनी में, तो वहाँ पे पंडित रविशंकर जी के साथ मैं बजा रहा था। तो वो जब सिखाते थे तो मेरे जितने गुरु भाई हैं, पंडित तरुण भट्टाचार्य, पंडित विष्णुमोहन भट्ट जी और पार्थो सारथी जी, तो उसमें मंद्र सप्तक जो होता है हमारा लो ऑक्टिव, उसमें मैं कुछ बजा नहीं पाता था। तो उसका बहुत मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा और मैं जब इंडिया आया 88 की बात है ये, तो मैं मिस्टर पई करके एक थे एमएम पई, उनके साथ बैठ के मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो नॉर्मल फिंगरिंग में तो अंगुली पहुंचना असंभव है, तो मैंने इसको नीचे किया आखिरी होल को और इसको भी थोड़ा नीचे किया तो ये हाथ बैठ गया। देखिए
1: जी,
0: मैं इसमें थोड़ा सारे गामा पा धा नि सा सुनाऊं?
1: जी बिल्कुल सुनाए।

0: और अब एक बार आम बांसुरी से भी हमें सारे गामा पा सुना दीजिए, ताकि हमारे श्रोता जो हैं वो सुन पाए कि इन दोनों में अंतर क्या है।
1: ये देखिए, अब ये एक ऑक्टेव चढ़ा रहेगा और उससे जो छोटी वाली बंसी है वो एक ऑक्टेव और चढ़ा रहेगा, वो तीसरा माला समझ लीजिए।
0: हम उसे भी सुनेंगे
1: जी।

0: ये नॉर्मल जो पन्नालाल घोष जी ने जो बांसुरी बनाई
1: जी,
0: अब ये बंसी जो पुरानी मुरली जो भगवान कृष्ण के हाथ में रहती है, इसकी इतनी शार्प आवाज और इसकी धुन जो कृष्णा की बांसुरी है जो बोलते हैं वो ये है
1: जी।
0: इसमें जो आलाप लेते हैं हम लोग,

0: बहुत सुंदर। तो आपने ये जो इजाद की बांसुरी, इसका नाम शंख बांसुरी ही क्यों रखा?
1: इसका पहला फूक जब मैंने मारा तो पहला फूक देते ही ये शंख की तरह लगा, नर शंख जो बड़ा वाला होता है
0: जी।
1: तो ये देखिए, तो मैंने शंख की तरह उसको फूकना भी शुरू किया। तो मुझे लगा कि शंख की ये ध्वनि देगा। शंख ध्वनि भी मैंने सोचा था, मगर शंख ध्वनि एक राग है, हंस ध्वनि शंख ध्वनि, तो मैंने सोचा नहीं, शंख बांसुरी ये ठीक है।
0: बहुत सुंदर। तीनों में ही हमें जो आप ऑक्टेव बताया आपने कि हर एक बांसुरी के साथ वो राइज होता जा रहा है,
1: राइज होता है exactly।
0: तो हमारे श्रोता जो है इस भेद को समझ पाए होंगे अभी कि तीनों बांसुरी पर आपने अलग अलग सुनाया, तो हर एक में एक एक ऑक्टेव जो है वो ऊपर जा रहा है,
1: ऊपर जा रहा है exactly।
0: हमें इसको सिखाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि संगीत की इतनी गूढ़ समझ तो केवल आप ही को हो सकती है, जिनसे हम सीख सकते हैं बांसुरी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो। पंडित जी, शास्त्रीय संगीत के नियमों को बनाए रखते हुए उसमें प्रयोग करना कितना जरूरी है? क्या आज के पारंपरिक श्रोता इन बदलावों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं?
1: जरूर करते हैं, श्रोता चाहते हैं बदलाव। जैसे कि कल मैंने बजाया कॉन्सर्ट इतना सुंदर, तो लोगों ने फरमाइश किया कि कुछ ना कहो सुना दीजिए
0: जी,
1: क्योंकि वो मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। तो अगर पहले का जमाना होता तो मैं बोलता कि क्लासिकल म्यूजिक का स्टेज है, यहाँ फिल्म नहीं बजेगा
0: जी।
1: अब ऐसा नहीं है। राशिद खान भी गाते थे तो आओगे जब तुम साजना, उनको गाना पड़ता था और प्रेम से गाते भी थे वो। ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा कि ये क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम है, यहाँ नहीं गाऊंगा मैं। तो कल मैंने कुछ ना कहो बजाया। तो ये जो प्रयोग है बॉलीवुड और शास्त्रीय संगीत का मिलन होना बहुत जरूरी है।
0: तो
1: बॉलीवुड को

0: पूरा समझ के, छोटा समझ के कि इसकी संगीत में तो दम नहीं है।
1: mm-hmm.
0: हालांकि आज के गानों में दम थोड़ा कम है, ये बात तो सत्य है, मगर पुराने गानों को देखिए।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, पुराने गानों का जो भी गीत है, संगीत है, वो सबके दिलों में बराबर रूप से समाया हुआ
0: Absolutely.
1: है और भुलाया नहीं जा सकता, अमिट है वो
0: जी,
1: उसकी छाप। तो
0: आइए
1: इसी बात पर सुन लेते हैं ये गीत, जो कि शाम के सूनेपन को इंगित करता है, खाली हाथ शाम आई है फिल्म इजाजत से।
0: जी, इसमें मेरा सोलो भी है, ओरिजिनल सोलो मेरा बजाया हुआ,
1: तो सुनते हैं ये गीत।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। रेनबो सेलेब्स में मैं हूं निशा भारद्वाज आपके साथ, और आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं पद्मश्री सम्मानित बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार जी। तो पंडित जी, आज का युवा रील्स और सोशल मीडिया के दौर में बहुत जल्दी सफलता चाहता है, संगीत की इस साधना और धैर्य वाले सफर के लिए आप आज की पीढ़ी को क्या सलाह देना चाहेंगे, जो बांसुरी सीख रहे हो या जो संगीत में आना चाहते हो, गीत गाना चाहते हो, प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हो?
1: मैं सबसे ये कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत का कलाकार आपको नहीं भी बनना है तो भी सीखिए, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर ही आपका दूसरा संगीत खड़ा होगा। चाहे आप गीत गाए, गजल गाए, फिल्मी संगीत गाए, आप शास्त्रीय संगीत गाए, राग रागिनियों का नॉलेज पहले लीजिए तो स्वर लय आपके अंदर पूरी तरह समा जाएगी। और दूसरी बात है कि आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, सब्जेक्ट के पीछे भागिए,
0: सक्सेस अपने आप आपके पीछे आएगी,
1: सक्सेस आपको फॉलो करेगा, आपके पीछे दौड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सॉलिड है तो आप टिकेंगे भी, जब एक बार नाम हो जाए मगर वहां जाके आपको रहना टिकना वो बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए आपका जो मटेरियल है वो सॉलिड होना चाहिए।
0: जी, तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर श्रोताओं कि आपको सफलता के लिए नहीं बजाना है, बल्कि जब तक आप सफल ना हो जाएं तब तक बजाते रहें, और जब आप सफल हो भी जाएं तो उस सफलता को बनाए और बरकरार रखने के लिए जो चीजें हैं, जो आपकी प्लेबैक सिंगिंग हो, चाहे वो बजाना हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, उसमें कुछ न कुछ इनोवेशन करते रहें, जैसे कि पंडित जी ने शंख बांसुरी का आविष्कार किया।
1: जी जी जी, धन्यवाद निशा जी, थैंक यू।
0: पंडित जी, जब आप मंच पर अपनी आंखें बंद करके बजाते हैं तो आप एक्चुअली क्या सोच रहे होते हैं, आप किस दुनिया में होते हैं? आपके लिए संगीत अध्यात्म है या अभिव्यक्ति?
1: दोनों है, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, आध्यात्म का अभिव्यक्ति लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। अभिव्यक्ति मतलब होता है आप अपने आप को कैसे
0: एक्सप्रेस करें,
1: ये है अभिव्यक्ति। तो मैं समझता हूँ कि अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको सीखना है। संगीत के सुर इतने ब्रह्म है, स्वर ब्रह्म है, क्योंकि निराकार है वो, तो उन स्वरों से जुड़ जाने के बाद आप खुद ही आध्यात्मिक हो जाते हैं, फिर आपकी हर अभिव्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है।
0: तो आइए, इसी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में जब बात हो रही है तो हम कृष्णास जर्नी के बारे में भी बात कर लेते हैं।
1: जी
0: पंडित जी, आपने कृष्णास जर्नी के नाम से भी एक अपनी रचना की है।
1: जी, एल्बम।
0: जिसमें कि हम जब भी बांसुरी के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं कृष्णा जी का ध्यान हमारे मन में आ ही जाता है।
1: जी,
0: और आप भी उससे अछूते नहीं रहे, आपने भी कृष्णास जर्नी की एल्बम निकाली है, तो उसकी जर्नी के बारे में पहले बताएं कि कहां से विचार आपके मन में आया कि कृष्णास जर्नी, जो आप बता रहे थे कि उनके जन्म से लेकर आगे की जो उनकी यात्रा रही, आपने सभी को कवर किया है उसमें, तो कहां से आया मन में विचार, और ये धुनें आपको कैसे लगी कि इस समय जन्म है तो ये धुन बजानी चाहिए और आगे के वृतांत के लिए ये सब बजेगा?
1: किशोर दा का एक गाना है, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, ये गाना मुझे बहुत ज्यादा टच किया, और किशोर दा इतना अच्छा भजन गा सकते हैं ये मैं सोच भी नहीं सकता। हालांकि जिस गाने को भी वो हाथ लगाते थे वो गोल्ड हो जाता था, गोल्ड स्टैंडर्ड किशोर कुमार। तो रामायण महाभारत तो मैं पढ़ता ही था बचपन से, तो महाभारत के पहले के जो कृष्ण है वो गोकुल के कृष्ण है, और वहां जाके जो कृष्ण है वो बहुत, जिसको आप कह सकते हैं कि नीति राजनीति इन सब चीजों से कृष्ण भगवान जुड़ते हैं, और पांडवों के साथ उनका जिंदगी आगे बढ़ता है। तो संगीत के रूप में अगर देखा जाए तो बहुत डाइवर्सिटी मुझे मिल रहा था, तो एक एक जैसे सूर्य मेला का एक किस्सा आता है, उसमें मैंने राधा कृष्ण का अनकंडीशनल लव जो है उसमें मैंने राधा कृष्ण लीला बजाया, और जन्म में जब वो उनका जन्म होता है तो वो यमुना से जाते हैं और शेषनाग छाया करता है बारिश के लिए
0: जी।
1: और उनके चरणों को छूता है, तो उसमें मैंने भैरवी बजाई, और वहां से जो एक एक धुन मेरे दिमाग में आती गई, और प्रीचिंग ऑफ ए मैनकाइंड एक पीस मैंने बनाया था, कृष्णा उपदेश टू अर्जुन, अर्जुन को जो उन्होंने उपदेश दिया उस पे दोनों के कॉन्वर्सेशन में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं बात कर रहा हूँ। तो सिंथेसाइजर पे मैंने अर्जुन का ये रखा और कृष्ण उपदेश का जो था वो मैंने बजाया, बहुत कमाल। वो एल्बम को मैं कह सकता हूँ कि ऐसा एल्बम मैं दोबारा बना नहीं सकता। अगर आप आज्ञा दी तो कृष्ण जन्म का पीस थोड़ा सा मैं
0: सुनना चाहेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने ही वाली थी कि कुछ पीस सुना दीजिए हमें।
1: ये जन्म है, कृष्ण जन्म।

0: क्या बात है,
1: थैंक यू।
0: तो आपका कोई और भी पीस है इसमें जो आपके दिल के नजदीक हो, जो आप सुनाना चाहें हमें?
1: कृष्णा परधाम गमनम। जब वो भगवान तो कभी मरते नहीं, अदृश्य हो जाते, उनकी शव नहीं होती, और वही कृष्ण भगवान के साथ हुआ। उनको व्याध ने तीर मारा, वो फिर उसके बाद अदृश्य हो गए। तो वो पीस मैं बना नहीं पा रहा था। जब भी हारमोनियम में हाथ लगाऊं तो मुझे लगे कि इतना स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण योगेश्वर कृष्ण का जो बड़ा रूप है उसको मैं कैसे व्यक्त करूं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक गाना मेरे कानों में गूंजने लगा,

0: नहीं, मतलब वो सिंधु के उस पार रहने वाले मैं तुम्हें जानता हूँ,
1: जी
0: तुम दूर तो हो मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। उस गाने को फिर मैंने
1: वो कैसा निकल कर आया जरा सुनाए।
0: देखिए जरा

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं पद्मश्री सम्मानित बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार जी। तो पंडित जी, आपने उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज और पंडित वीजी जोग जैसे महान दिग्गजों के साथ मंच साझा किया है। मंच पर लाइव जुगलबंदी के दौरान जब सामने वाला कलाकार कोई कठिन तान या तिहाई लेता है, तो उस समय एक बांसुरी वादक के रूप में आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम लोग हर चीज से सीखते हैं, कोई स्पर्धा लेके स्टेज में तो जाते नहीं, तो इसीलिए तिहाइयां लेके तान बजा के आता है साथी कलाकार, तो उससे एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि हमारे दिमाग में भी उसी स्तर का कुछ निकल के हमारे से भी आता है और हम उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए एक मन एक आत्मा जुगलबंदी को कहते हैं एकात्मन, तो ये वननेस ऑफ माइंड, मतलब दो माइंड का एक हो जाना है जुगलबंदी। वो मेंटेन नहीं होगा तो वो जुगलबंदी खराब जुगलबंदी कहलाएगा।
0: तो आपको दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छी जुगलबंदी और खराब जुगलबंदी, दोनों ही आपने एक्सपीरियंस किए हैं।
1: दोनों किया है।
0: तो जब खराब जुगलबंदी होती है तो फिर मन क्या कहता है उसके बाद?
1: मन उदास होता है और गिव अप करने का भी मन होता है कि छोड़ो इसी को बजा लेने दो, अभी अगर ये इतना बजाने के लिए तरस रहा है तो। कभी कभी कम्पीट भी करना पड़ता है, नहीं तो पब्लिक सोचती है कि आपको नहीं आता। यहाँ पे मुसीबत ये हो जाती है कि खराब जुगलबंदी में जब ये रेसलिंग का अखाड़ा बन जाता है तो थोड़ा ताकत तो दिखाना ही पड़ता है, मगर वो जुगलबंदी अच्छी नहीं कहलाएगी। एक आध बार ऐसे एक्सपीरियंस हुआ मुझे, मगर ज्यादातर मेरी जुगलबंदी सब स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, चाहे डॉक्टर बालमुरली हो, चाहे पंडित विश्वमोहन भट्ट जी हो, चाहे पंडित तरुण भट्टाचार्य जी हो, सबके साथ जुगलबंदी मेरा आध्यात्म से जुड़ा हुआ है।
0: तो जब जुगलबंदी की बात हो ही रही है, तो कोई ऐसा लाइव कॉन्सर्ट या मंच का वाकया है आपके दिल के नजदीक जहां आपको लगा हो कि आज तो सच में जो सुर है वो सिद्ध हो गए?
1: जी अवश्य, वाशिंगटन डीसी में मैं बालमुरली कृष्णा जी के साथ बजा रहा था, तो बालमुरली जी एक ऐसे कलाकार थे कि वो कलाकारों के कलाकार थे, 1+ मैं उनको कहता था, मतलब जितने ऑक्टेव हम गा सकते हैं उससे एक ऑक्टेव ज्यादा उनके पास था। तो वो बहुत नीचे सुर में गए, तो मैं शंख बांसुरी बजाया, शंख बांसुरी से भी नीचे चले गए वो, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि दिस इज माय लास्ट नोट, तो हंसने लगे बालमुरली। उस दिन जो सुर मिले थे बाप बेटे का, चले गए 7-8 साल हो गया, मगर उनकी जुगलबंदी पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ या जिसके साथ भी उन्होंने किया, बांसुरी में मुझे ही मानते थे वो, और बोलते थे कि अगर इफ आई डू जुगलबंदी इट हैज टू बी रोनू मजूमदार ओनली, क्लियर कट अपने तमिल लो इंग्लिश में बोलते थे।
0: तो जब आर्टिस्ट ऐसे डिमांड करें कि मुझे बजाना है तो सिर्फ रोनू के साथ बजाना है, तब आपको कैसा लगता है कि आपकी जो जीवन पर्यंत की जो संघर्ष यात्रा है वो परिपूर्ण हो गई?
1: जी अवश्य, ऐसे तो लगता ही है, हम्बलिंग लगता है और नम्र हो जाते हैं हम ऐसा सुनने के बाद, और एक चीज और होती है कि जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फल से लदा जो वृक्ष होता है वो हमेशा झुक जाता है,
1: झुक जाता
0: है। हम जितनी बड़ी ऊंचाई पर जाते हैं हमें और नम्र हो जाना
1: जी,
0: चाहिए।
1: जी, जी, जी।
0: इसी के साथ हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक फिल्म जुदाई से, सुनिए ये गीत मेरी जिंदगी एक प्यास।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और हमारे साथ आज हैं पद्मश्री सम्मानित बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार जी। पंडित जी, बातें करते हुए तो बहुत ही दिलचस्पी आ रही है। आप इतनी सुंदर सुंदर बातें और इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी के साथ हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर रहे हैं कि लग रहा है कि आज आपसे सब कुछ ही जान लें। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि हर कलाकार का कोई ऐसा एक राग होता है जिससे उसका गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव होता है। आपका सबसे पसंदीदा राग कौन सा है और जब आप उसे बजाते हैं तो आपके भीतर किस तरह के भाव पैदा होते हैं?
1: ऐसे तो मेरे प्रिय राग 3-4 हैं। सभी राग अच्छे होते हैं, मगर जैसे कि आपने कहा, कुछ राग जय जयवंती, दरबारी कानड़ा, ये सब मेरे प्रिय राग हैं, असुबे का शुद्ध भैरव। मगर अध्यात्म, मेरे जो एल्बम ध्याना एल्बम मैंने किया उसमें 3 स्टेजेस मैंने रखे हैं जीवन के, ध्यान, समाधि, मोक्ष। तो मोक्ष पीस जब मैं बजाने लगा तो मैंने खमाज बजाया। खमाज के अंदर जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जो मोक्ष सेल्वेशन, जब हम मुक्त हो जाते हैं इस जीवन से, आवागमन से भी हम मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर से एक हो जाते हैं, आत्मा उस परमात्मा को मिल जाता है, तो क्या भाव आते होंगे, वो मुझे खमाज में नजर आते हैं। तो खमाज सबसे प्रिय राग है मेरा। मैं आपको वो मोक्ष पीस बजा के सुनाता हूँ
0: जी। बिल्कुल सुना दीजिए।

0: ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है।
1: बिल्कुल, आपने सच कहा कि जब भी बांसुरी सुनते हैं तो लगता है कि रोम रोम जो है खिल उठा।
0: जी,
1: बांसुरी बजाने के लिए पंडित जी फेफड़ों की जो ताकत और सांसों पर गजब का नियंत्रण चाहिए होता है
0: जी।
1: क्या उसके लिए आप संगीत के अलावा प्राणायाम, योग या किसी विशेष शारीरिक दिनचर्या का पालन भी करते हैं?
0: सबसे पहले तो प्राणायाम हर बांसुरी वादक को करना ही पड़ता है, उसके बिना वो नहीं चल सकता। फूक का वाद्य है और शहनाई से भी ज्यादा इसमें फूक खर्च होता है, क्योंकि शहनाई में क्या होता है कि पत्ती की वजह से फूक बहुत कम देना पड़ता है, इसमें फूक सांस खत्म हो जाती है। तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपाल भांति, उज्जयी, ये तो अनिवार्य है। उज्जयी थोड़ा लुप्त हो गया था, अब उज्जयी फिर से लोगों के अंदर व्याप्त हो रहा है, जिसमें सांस गले से घिसते हुए हमें कहना चाहिए जाना चाहिए फेफड़ों में, और फेफड़ों में रहे वो सांस,
1: तो उसको होल्ड करना,
0: उसको होल्ड करे और फिर रिलीज करे आठ गिनती तक। तो आठ के आठ, आठ दूनी 16, आठ तिरिक 24। 24

0: मात्रा काउंट करिए और इसको करिए। आज भी मैंने किया
1: जी। तो आप इसको दैनिक रूप से करते हैं?
0: हाँ, और कुछ हो ना हो प्राणायाम मेरा जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा।
1: और कितना समय देते हैं आप इसको प्रतिदिन?
0: प्रतिदिन डिपेंड होता है, फ्लाइट वगैरह होता है तो आधा घंटा, वरना मैं पौना घंटा एक घंटा कम से कम
1: प्राणायाम
0: एकदम।
1: ठीक है, और रियाज कितने समय तक करते हैं?
0: अभी भी 4-4 घंटे में करता हूँ। एक वक्त तो था मैं सारी रात रियाज करता था और सारा दिन ये स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, दूसरे स्टूडियो से तीसरे स्टूडियो, रिकॉर्डिंग बजाना पड़ता था घर चलाने के लिए, मगर रियाज से कभी मन नहीं बोला। रात को हम बैठ जाते थे।
1: चलते चलते मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे।
0: जी अवश्य।
1: पहले आपने पिताजी से सीखा
0: जी,
1: और अब अपने पुत्र को सिखा रहे हैं आप
0: जी।
1: अपने बेटे को सिखाते हुए क्या फर्क महसूस होता है कि जो आपके पिताजी ने आपको सिखाया और आप जो अपने बेटे को सिखा पा रहे हैं, उसमें क्या फर्क है? जनरेशन का क्या गैप आया है?
0: जनरेशन क्या, वो लोग बहुत कड़क थे, बहुत अनुशासन वाले थे। मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा लीनियंट हूँ और थोड़ा इजी गोइंग हूँ, मगर कभी कभी लगता है कि वो पुराने लोग ही ठीक थे। मगर मेरा बेटा ऋषिकेश है, वो इतना अदबदार है, इतना वो प्यारा है कि उसको डांटने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। वो जो मैं बोलता हूँ उसको रियाज कर लेता है, और ज्यादा तो ये बच्चे देख कर ही सीखते हैं। मैं बजाता रहता हूँ, मेरे साथ वो बस बजाता रहता है।
1: तो जब सीख रहा होता है वो आपके साथ में, तो पिता और पुत्र वाला कनेक्शन ज्यादा प्रबल रहता है या फिर गुरु और शिष्य का?
0: गुरु और शिष्य का। वो मुझे गुरु की तरह ज्यादा देखता है, पिता से ज्यादा। वो जो गुरु वाला मेरा चेहरा है वो हावी होता है सिखाते वक्त, नहीं तो नहीं होगा। गलती करे, क्या बजा रहा है ये कोई बजाना हुआ तो ये बोलते वक्त आपका पिता तो मुश्किल में पड़ जाएगा, और गुरु होगा तो वो एक थप्पड़ भी मार सकता है।
1: जी बिल्कुल। तो गुरु शिष्य परंपरा जो है वो घर में भी चल रही है
0: जी,
1: और इसी तरह चलती रहे, हमारी तो यही शुभकामना है
0: जी। जी
1: निशा जी, और आपके बेटे आपके साथ जब मंच पर बजा रहे होते हैं तब कैसी अनुभूति होती है आपको?
0: बहुत कमाल की। तब जो है छाती चौड़ी हो जाती है गर्व के साथ, जब कोई कोई चीज वो ऐसी भी बजा जाता है जो मैं भी नहीं बजा पाता, तब वो हार के भी जीत का एहसास होता है
1: जी।
0: ये हार ऐसी हार है जो पुत्र से जो आपको हार मिलती है उसमें आपकी जीत होती है। दरअसल आप जीत रहे होते हैं, तो इसीलिए बहुत घमंड उस वक्त होता है कि हाँ मैंने तैयार किया है
1: जी। तो चलते चलते आज आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस नोट पर हमारे श्रोताओं को आज छोड़कर जाना चाहेंगे आप?
0: मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के जमाने में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व के निखार की बहुत सारी बातें होती है, मगर व्यक्तित्व का निखार तो स्वर में है, तो भाषा में कुछ न कुछ लिमिटेशन है। अभी मैं बंगाली में कुछ बोलता हूँ तो शायद आप ना भी समझ पाए, मगर स्वर तो आप समझ जाएंगे
1: जी। बिल्कुल।
0: एक गूंगा भी स्वर समझता है, तो आप लोग सब स्वर साधना करिए, स्वर ब्रह्म है, इससे अपने आप बच्चों में संवेदनशीलता आएगी। एक चीज भगवान भी वापस नहीं दे सकता, वो बीता हुआ समय।
1: बिल्कुल दुरुस्त।
0: तो उस समय को आप बर्बाद मत करिए। आप फुल टाइम ले ना ले संगीत, आपको सोचिए कि जैसे स्पोर्ट खेलने से शरीर मजबूत रहता है, स्वस्थ रहता है, ऐसे संगीत सीखने से मन स्वस्थ रहता है। तो मन को स्वस्थ रखेंगे तो ही आप डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकेंगे ना?
1: जी बिल्कुल ठीक है। आपने आपसे बातचीत करके पंडित जी आज एक बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। भविष्य में भी आप ऐसे ही सफलता हासिल करते रहें, इसी शुभकामना के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आप कार्यक्रम में आए और इतने अनूठे अनुभव आपने हमारे साथ साझा किए।
0: थैंक यू निशा जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
1: इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेनबो सेलिब्स। आज के अतिथि रहे पंडित रोनू मजुमदार, रानिंद्र भानु मजुमदार, फ्लूट प्लेयर, पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी अवार्डी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में हमेशा पूरी दुनिया को एक साथ लाने की बात कही गई है, और स्पोर्ट्स यानी खेल शायद उसका सबसे बेहतरीन जरिया है।
6: एक गेंद हवा में उठती है, एक दौड़ शुरू होती है और शुरू होती है खिलाड़ियों की जद्दोजहद। दर्शकों की नजरें गेंद पर टिकती हैं, सांसें थम जाती हैं, और फिर एक पल आता है जाने कितनी धड़कनें एक लय पकड़ लेती हैं, और जीत की खुशी में जाने कितने चेहरे एक साथ खिल उठते हैं। शायद खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। दुनिया में कितनी ही दूरियां हैं, कितने मतभेद हैं, कितनी दीवारें हैं, लेकिन खेल एक ऐसा जरिया है जो सबको एक साथ एक मंच पर ला खड़ा करता है। और एशियन गेम्स की तो शुरुआत ही इसी सोच के साथ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के उथल पुथल से जूझ रही इस दुनिया के तमाम देश जब 1948 के लंदन ओलंपिक्स में एक साथ आए, तो खेलों की सबको एकजुट करने की ताकत को गुरुदत्त सोढ़ी ने महसूस किया और सपना देखा एशिया के सभी देशों को ठीक इसी तरह एक मंच पर लाने का। इसी विजन के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अगुवाई में भारत ने पहल करी और 1951 में नई दिल्ली में पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ।
5: आज 75 वर्षों बाद भी ये मंच एशिया को यानी दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है,
6: और इसका एहसास आज जापान के पालोमा मिजुहू स्टेडियम में हुआ जब एक भव्य उद्घाटन समारोह में 45 अलग अलग देशों के एथलीट्स एक साथ आए। सबकी भाषाएं अलग, पहचान अलग, रंग रूप अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग, लेकिन खेल के इस मंच ने सभी को एक साथ ला खड़ा किया।
5: मेजबान देश जापान ने तो अपना कल्चर शानदार तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें संगीत की एक अमिट छाप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एशियन गेम्स के बड़े मंच के जरिए एशिया के सभी देशों को एकजुट लाने का संदेश दिया। ओपनिंग सेरेमनी की थीम थी हार्मोनिक हार्टबीट। यही नहीं, मंच भी दिल के आकार का था, जहां एक एक करके सभी देशों ने अपने अपने देश का ध्वज लेकर मार्च पास्ट किया।
6: उद्घाटन समारोह में भारत की एंट्री भी खास आकर्षण का केंद्र बनी। पेरिस में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली मनु भाकर और स्टार कबड्डी खिलाड़ी भारतीय टीम के उपकप्तान पवन सहरावत को मौका मिला भारत के ध्वजवाहक बनने का। दोनों हाथ में तिरंगा लिए भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए नजर आए और पीछे भारत के खिलाड़ी भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुनाई दिए।
5: भारतीय खिलाड़ियों में देश का जोश, गौरव और भारतीय संस्कृति की खूबसूरत झलक साफ नजर आ रही थी। खास तौर पर भारतीय दल के परिधान ने सभी का ध्यान खींचा। महिला खिलाड़ी नेवी ब्लू कलर की साड़ी में गुजराती स्टाइल के पल्लू के साथ नजर आई, तो पुरुष खिलाड़ियों ने नेवी ब्लू कलर का बंद गला परिधान पहना था, जिसकी शोभा भारत के तिरंगे के तीन कलर बखूबी बढ़ा रहे थे। इस आधुनिक अंदाज ने भारतीय दल की प्रस्तुति को अलग पहचान दे दी। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते भारतीय खिलाड़ी जब स्टेडियम में पहुंचे, तो उनके परिधान में भारतीय परंपरा और आधुनिक खेल भावना का संगम दिखाई दिया। और हमारे दोनों ध्वजवाहकों के नेतृत्व में भारतीय दल की ये तस्वीर एशियन गेम्स के मंच पर भारत की पहचान और आत्मविश्वास को

0: सामने रखती नजर आई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष शेख जोवान बिन हमाद अल थानी ने सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेल के जरिए सभी देशों को एकजुट करने की बात कही।
1: टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू द एंटायर कॉन्टिनेंट इज बिहाइंड यू गिव एवरीथिंग यू हैव होल्ड नथिंग बैक द इंपैक्ट ऑफ व्हाट यू अचीव हियर विल स्ट्रेच फार बियॉन्ड एनी मेडल्स और परफॉर्मेंसेस थ्रूआउट आवर कॉन्टिनेंट Across all nations, big and small, from urban cities to rural villages, millions of young people are watching. They may not yet know what they're capable of, but they're watching you, they're learning from you, they are dreaming because of you. And what you do on this stage speaks to them about what is possible, what can be achieved, when we push the limits of human potential and what it means to do so with fairness and respect. This is the spirit of Asia.
0: समारोह में टॉर्च लाइटिंग सेरेमनी भी हुई। कमाल की बात है कि खेलों का शुभांकर है होनेहोन, जिसका नाम पारंपरिक जापानी शब्द से आता है, अर्थ है फ्लेम यानी ज्योति।
2: समारोह में सभी खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करने की शपथ ली। रेफरी, अंपायर्स और खेल निर्णायकों ने भी निष्पक्ष होने की शपथ ली।
3: 私たちは第20回アジア競技大会の審判員技術役員を代表しスポーツマンシップの精神にのっとり大会の規則を尊重遵守し公正なジャッジを行うことを約束します。
2: एशियन गेम्स 2026 में कुल 43 खेल हैं और 469 मेडल दांव पर हैं। ज्यादातर खेल नागोया शहर और आईची प्रेफेक्चर में होंगे, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो और फुटबॉल का खेल ओसाका में खेला जाएगा। लगभग 17,000 एथलीट इस बार एशियन गेम्स में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर भले ही एशियाड की शुरुआत आज हुई है, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और टेकबॉल के कुछ मुकाबले बीते हफ्ते खेले जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक हुए मुकाबलों की।
0: सबसे पहले बात टेकबॉल की। टेबल टेनिस की तेजी और शरीर के हर मूवमेंट पर शानदार नियंत्रण, इन तीनों का रोमांच अगर एक खेल में देखने को मिले तो वो होता है टेकबॉल। तेजी से लोकप्रिय हो रहा यह अनोखा खेल पहली बार आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 में पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किया गया है। यानी इस बार एशियाई खेलों में टेकबॉल के इतिहास पर पहला अध्याय लिखा जा रहा है। टेकबॉल की शुरुआत हंगरी में हुई। इसे घुमावदार टेबल पर फुटबॉल के साइज 5 की गेंद के साथ खेला जाता है। खिलाड़ी हाथ और बाजुओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैर, जांघ, छाती, सिर और कंधे जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में गेंद को नियंत्रित करते हुए उसे विपक्षी की तरफ भेजना होता है। एक खिलाड़ी या टीम को गेंद को वापस भेजने से पहले अधिकतम 3 टच मिलते हैं और एक ही बॉडी पार्ट से लगातार 2 बार गेंद को छूना फाउल माना जाता है। डबल्स खिलाड़ियों के बीच तालमेल और टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में भारत की भी टेकबॉल में एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। भारत के लिए एशियन गेम्स एक नई शुरुआत लेकर आया। भारत टेकबॉल दल में क्विम्सी डिसूजा, मोहम्मद अनस, इमरान बेग और डेक्लॉन मार्शल गोंसाल्वेस शामिल हैं। भारत ने पुरुष डबल्स, महिला सिंगल्स और मिक्स डबल्स में चुनौती पेश की। पुरुष डबल्स में अनस बेग और डेक्लॉन गोंसाल्वेस की जोड़ी को ग्रुप स्टेज में वियतनाम और दक्षिण कोरिया के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और उनका अभियान यहीं समाप्त हो गया। लेकिन भारत की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। महिला सिंगल्स में क्विम्सी ने शानदार शुरुआत की। उन्होंने जापान की वार्ड नंबर 7 और स्थानीय खिलाड़ी युइना सकामोटो को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। इसके बाद कंबोडिया की कोएमियन डीवाई को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की इमा सुमाया से हुआ। क्विम्सी ने पहला सेट 12-7 से जीत लिया, लेकिन

0: सुमाया ने वापसी करते हुए अगला सेट 12-9 और निर्णायक सेट 12-8 से अपने नाम किया। इस तरह क्विम्सी फाइनल से चूक गई, लेकिन अब उनके पास ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में भारत के लिए पदक जीतने का मौका है।
1: दूसरी तरफ शुक्रवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारत के खिलाफ जापान की मेजबान टीम थी। यूं तो जापान में क्रिकेट उतना लोकप्रिय है नहीं, लेकिन फिर भी अपने देश की टीम को देखने के लिए अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे। भारतीय दर्शक भी मैदान में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की हौसला अफजाई करने पहुंचे। भारतीय टीम अभी अभी वुमेन्स एशिया कप जीत कर आई है और इसलिए जापान पहुंच ट्रेनिंग करने का भी उन्हें समय नहीं मिला था। इसके बावजूद जैसी अपेक्षा थी मुकाबला एक तरफा रहा। जापान को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतने के बाद दिया और फिर श्री चरणी की कमाल की गेंदबाजी के चलते भारत ने जापान की टीम को केवल 57 रन पर समेट दिया। शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 40 की पारी के चलते भारत ने इस मुकाबले को आसानी से जीता, लेकिन कमाल की बात यह रही कि एशिया कप में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला उन खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश भारतीय टीम ने की। जी कामलिनी स्मृति मानधना की जगह ओपन करते हुए नजर आई, तो वहीं भारती फूलमली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आई। भारत इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में प्रवेश पा चुका है। आपको याद दिला दें कि पिछले संस्करण में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और अपना ताज बचाने के लिए भारत महिला क्रिकेट में शिरकत कर रहा है। सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा कल यानी रविवार को भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे भारत के सामने बांग्लादेश की टीम होगी। उससे पहले सुबह 5:30 बजे श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत कल जीतता है तो एक बार फिर क्रिकेट में महिला टीम का पदक सुनिश्चित हो जाएगा। दूसरी तरफ टेकबॉल में भी कल 2 पदक आने की पूरी उम्मीद है। रविवार को सुबह भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे क्विंसी डिसूजा महिलाओं के सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी, जिसमें सामने होंगी जापान की युइना साकामोटो। उसके बाद ठीक 7:00 बजे एक और मुकाबला खेलने के लिए क्विंसी मैदान पर उतरेंगी। इस बार चुनौती होगी मिक्स डबल्स की, जिसमें उनका साथ देंगे मोहम्मद अनस इमरान बेग और सामने होने वाली है वियतनाम से आने वाली मिनटैंग नगुयेन और जिया ट्रिन की जोड़ी। ये मुकाबले नगोया सिटी स्पोर्ट्स सेंटर में खेले जाएंगे। टेकबॉल के अलावा रविवार को भारतीय प्रशंसकों की नजरें हॉकी के मैदान पर भी होंगी। पुरुषों की हॉकी टीम से एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा गहन हैं, क्योंकि एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाने का मतलब सिर्फ अपना ताज बचाना नहीं है, बल्कि एलए 2028 के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करना भी है और इसीलिए गोल्ड मेडल लाना जरूरी है। भारतीय टीम यूं तो एशिया में बादशाह मानी जाती है और इसीलिए गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार भी है, लेकिन कुछ और टीमें भी हैं जो उनको चुनौती देने का दमखम रखती हैं। और बताते हैं पूर्व हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल।
2: तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज अ होस्ट कंट्री, ऑल्सो पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर। तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कॉम्पिटिशन है एशियन गेम्स का। मगर अगर एक ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है, यहाँ का स्तर अलग है। मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी, बट ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी विद द सेम मेंटेलिटी, अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट। मगर हर टीम के हाथ में भाई प्लानिंग भी है, स्टैमिना और स्ट्रेटेजी और सब लेके चल रहे होंगे कि कोई भी अगर जीतेगा, जापान और साउथ कोरिया, इवन पाकिस्तान, इंडिया, तो ये जो 12 टीमों में से 4 टीमें ऐसा चाइना विल गिव अ गुड फाइट आल्सो, तो इसमें यही है कि हमारा अपर हैंड तो है, नो डाउट अबाउट, मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें।
1: कल भारतीय पुरुष टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी जीफू प्रेफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में।

0: भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे सामने पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया की टीम होने वाली है। देखना होगा कि हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग फ्लिक क्या एक बार फिर भारत के कैंपेन का आगाज जीत के साथ करेंगे। जहां पुरुषों से उम्मीदें पुरजोर है, महिलाओं से भी अपेक्षाएं कम नहीं है। भारतीय वुमेन्स टीम ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोग कर रहे थे। इसके बाद ये माना जा रहा है कि एशियन गेम्स में भी पोडियम फिनिश के लिए भारतीय टीम फर्म फेवरेट्स है। पूल बी में भारतीय टीम है और कल पहला मुकाबला खेलने वाली है। सुबह 7:30 बजे उज़्बेकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले की शुरुआत उसी स्टेडियम में होगी। हॉकी के बाद नजरें होंगी बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर वुमेन्स टीम इवेंट का पहला मुकाबला कल खेले जाने वाला है। भारत के सामने कजाकिस्तान की टीम है और भारतीय टीम में अनुभव और युवा जोश का एक अच्छा मिश्रण है। जहां 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु पर तो स्पॉटलाइट होने ही वाली है, तो वहीं उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ईशानी बरुआ, काविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी और तनीषा क्रास्टो भी टीम का हिस्सा है। साथ के साथ BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल दिलाने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। इस फिक्स्चर में 5 बैडमिंटन मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें से 3 में जीत हासिल कर आप पूरे मुकाबले को जीत जाएंगे। बैडमिंटन के बाद नजरें होंगी टेबल टेनिस पर। टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जाने वाले हैं स्काई हॉल में और सुबह 9 बजे सबसे पहले भारत की पुरुष टीम उतरेगी मैदान पर। नाना सेकरन साथियान, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर की ओलंपिक्स के अनुभव वाली तिगड़ी तो है ही, साथ के साथ मानुष शाह और पायस जैन भी इस टीम का हिस्सा है। कल भारत का पहला मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाफ है। उसके बाद 3 बजे ये टीम दोबारा कोर्ट पर उतरेगी ईरान से टक्कर लेने। महिला टीम का भी कल एक मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 12:30 पर सिंगापुर से भारतीय टीम लोहा लेगी। श्रीजा अकुला, यशस्वरी घोरपड़े, दिया चितले, सिंड्रेला दास के साथ पिछले एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सुतीर्ता मुखर्जी टीम का हिस्सा है। फिर चलेंगे शूटिंग रेंज की तरफ, जहां पर 10 मीटर एयर राइफल में महिलाओं की इंडिविजुअल प्रतियोगिता से आगाज होगा और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी विदर्शा विनोद, सोनम मास्कर और इलावनिल वलारीवन। फिर ये तिगड़ी 10 मीटर एयर राइफल की टीम प्रतिस्पर्धा में भी शिरकत करते हुए नजर आएगी।
1: अब बात करते हैं कुछ और खेलों की। जापान की धरती और खासकर नागोया, जहां इतिहास में समुराई की तलवार, अनुशासन और युद्ध कौशल की अपनी अलग पहचान रही है। ऐसे माहौल में जब एशिया के खिलाड़ी खेलों के सबसे बड़े मंच पर आमने सामने हैं, तो मार्शल आर्ट से जुड़े खेलों का रोमांच भी खास हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ वुशू से लेकर MMA तक की। एक तरफ वुशू में भारतीय खिलाड़ी अपनी तकनीक, गति और ताकत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में पदक खेल के रूप में अपनी शुरुआत कर रहा है और इस ऐतिहासिक शुरुआत में भारत की चुनौती संभाल रहे हैं वरुण सान्याल और सुचिका तारियाल। वरुण सान्याल पुरुषों के ट्रेडिशनल 77 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। वो 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन हैं और जनवरी 2026 में चीन में हुई एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके हैं। वहीं सुचिका तारियाल महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सुचिका इससे पहले 2022 हांगझोंग एशियन गेम्स में कुराश में भारत के लिए खेल चुकी हैं। और अब बात सिर्फ एक मुकाबले की नहीं, ये उस खेल के इतिहास का हिस्सा बनने की है जिसने एशियन गेम्स के मंच पर पहली बार दस्तक दी है। अब बात करते हैं वुशू की। वुशू के मुकाबले सुबह से ही शुरू हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पदक की चुनौती पेश करेंगे। इन्हीं में वुशू भी शामिल हैं, जहां भारत की नजरें एक पदक मुकाबले के साथ साथ सांडा के नॉकआउट मुकाबले पर रहेंगी। वुशू के मुकाबले नागोया के आईची प्रीफेक्चुरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले जाएंगे। भारत की ओर से सबसे पहले मैदान में उतरेंगे सूरज सिंह। सूरज सिंह सुबह 5:35 पर पुरुषों के चांग क्वान ताउलो फाइनल में अपना प्रदर्शन करेंगे। ये सीधे तौर पर मेडल इवेंट है, इसलिए भारतीय प्रशंसकों की नजरें इस मुकाबले पर रहेंगी। चांग क्वान वुशू की ताउलो यानी रूटीन आधारित स्पर्धा है, जिसमें खिलाड़ी अपनी तकनीक, संतुलन, गति और कलात्मक प्रस्तुति के जरिए अंक हासिल करते हैं। सूरज सिंह के लिए ये मुकाबला एशियन गेम्स में भारत के वुशू अभियान को पदक के साथ आगे बढ़ाने का मौका है। इसके बाद दोपहर में सांडा में भारत के 2 खिलाड़ी नॉकआउट मुकाबलों में उतरेंगे। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में अपर्णा का सामना ईरान की सोगंद सिकाई

0: चेतन से होगा
1: तो बैडमिंटन कोर्ट से लेकर हॉकी के मैदान तक, क्रिकेट के स्टेडियम से लेकर टेबल टेनिस के टेबल तक, स्विमिंग पूल से लेकर शूटिंग रेंज तक, हर जगह जहां भारतीय एथलीट्स शिरकत करते हुए नजर आएंगे वहां हमारी नजर रहेगी। आकाशवाणी लगातार एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से आपको अवगत कराता रहेगा। आवरली लाइव अपडेट्स के साथ हम कल सुबह 9:30 बजे आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल एडिटर वंदना भारद्वाज और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दर्पण टिकिया और कविता शर्मा को दीजिए इजाजत।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नव नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्ति किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में जीत पर परिषद को बधाई दी है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने और पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोगांद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, किरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ में आज से 2 दिन का देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव शुरू हुआ। भारतीय सेना और जिला प्रशासन ने मिलकर ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत महोत्सव का आयोजन किया है। 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। और अंत में एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची, कल बांग्लादेश से मुकाबला होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है प्रोग्राम रंग महफिल में, और आज के सफर में मैं रहूंगा आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम रंग महफिल। हमारी गलतियों से कहीं टूट ना जाना, हमारी शरारत से कहीं रूठ ना जाना, तुम्हारी चाहत ही हमारी जिंदगी है, इस प्यारे से बंधन को भूल ना जाना। अल्फाज अपने अपने, जज्बात तकरीबन एक से ही। कहते हैं प्यार जब होता है पता नहीं चलता, और जब होते चला जाता है तो धीरे धीरे पता लगता है, और शिद्दत से जब हम चाहने लगते हैं किसी इंसान को, किसी गैर को, जो अपना सा लगने लगता है, तो ऐसा लगता है दुनिया में अगर वो ना हो, हमारी जिंदगी में वो ना हो, तो फिर हमारी दुनिया पूरी सी नहीं होती। और दिल की आवाज हमेशा यही आती है कि मौसम कोई भी हो, समय कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा हमेशा बना रहना चाहिए। दिल की ख्वाहिश है सरकार, होती ही है।

लेकिन ऐसा इंसान जब दूर हो जाए आपसे किसी भी वजह से, तो फिर दिल के अंदर जो टूटता है वो दिल शायद कुछ इस तरह बयां करता है।

हेलो विक्स, कैसे हो? बहुत दिनों बाद ये शो करने हो। मैं बहुत बहुत हैप्पी हो गई आपकी वॉइस सुन के। आया करो ये शोज़ करने, प्लीज़ प्लीज़। आपकी फेमस, बहुत बहुत फेमस रिया दिल्ली जी। रिया बिल्कुल मेरे दोस्त, और आपसे मुलाकात वाकई में बहुत दिनों बाद हुई है। जी बिल्कुल, मुलाकात होती रहती है बीच बीच में। हाँ, ये शो भी मुलाकात हो जाती है शो में भी कभी कभी, और अगली बार भी होगी, अगले शनिवार भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा। बहुत अच्छे नगमे लेकर आया हूँ। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, क्या टूटा है अंदर अंदर। और हमारे दोस्त हैं, उसके बाद कुछ लिखा नहीं है, और भी कुछ लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्त। आदाब आदाब सरकार, हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से। फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, आदाब सरकार। अभी एक दावत से घर आया हूँ, आपकी आवाज़ सुनकर दिल खुश हो गया। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, और ये दावत शब्द सुनकर मैं बहुत खुश हो गया जी। और ख़ासकर आपके, आपसे सुनता हूँ ना तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। अजीब से मतलब बहुत ही खुशनुमा, बहुत अच्छा लगता है। और हम ये दुआ करेंगे ये दावतें आपकी ज़िंदगी में हमेशा आती रहें जी। रंगे महफिल में आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब अर्जो। गुन्नौर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपका सरकार, शुक्रिया धन्यवाद हमारी इस महफिल में शिरकत करने के लिए। हस्तिनापुर मेरठ से अंश शर्मा जुड़ी है हमारे साथ। और दोस्तों कहते हैं कि महफिल तो बन गई है, और इस महफिल में हम अकेले कैसे हो गए? बिल्कुल भरी हुई महफिल है, और हम तन्हा क्यों महसूस कर रहे हैं? कल रात भी कुछ ऐसा ही समा था, फिर भी हम अकेले थे, तन्हा थे। मौसम इतना खुशगवार था, फिर भी मन पता नहीं क्यों क्या ढूंढ रहा था। हम जानते थे क्या ढूंढ रहा है, लेकिन वो जो शख्स हमारी जिंदगी में कभी था, आज हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। या यूं कहें कि जो अभी अभी दस्तक दी है जिसने हमारे दिल पर, वो भी साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिल से कुछ मचलते हुए जज्बात ऐसे निकलते हैं।

0: हे विक्स, नाइस गजल्स फ्रॉम रिया। रिया बहुत अच्छी अच्छी और भी गजल आपके लिए लेकर आया हूँ, बने रहिएगा। बस लौटता हूँ छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और

0: प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सुदर्शन मुखी या निथा मुखी, सिमरन मुखी जुड़े हमारे साथ शांति नगर सोनीपत से। एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, नाइस प्लेलिस्ट ऑफ गजल्स, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी सैटरडे, सच ए गुड इवनिंग एंड नाइट वी हैव लिस्टिंग प्रोग्राम। योर्स बिग थैंक्स फॉर बेस्ट प्रोग्राम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त हमारे इस महफिल में बने रहने के लिए। और भी अच्छी गजल्स अभी आएंगे, आगे बने रहिएगा। और दोस्तों, ये सफ़र जो है गज़लों का, इस कार्यक्रम का, इस सफ़र का आगे भी बना रहेगा। बस लौटता हूँ छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

छोटे से अंतराल के बाद सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम रंगे महफिल में। और रंगे महफिल में आज हूं मैं आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स। गजल पसंद आ रही है? इस रात की तनाई में गजलें सुनने का मजा, जो मजा होता है वो अपने आप में अलग ही होता है। और फिर इस छोटे से कस्बे में गीत और संगीत रेडियो बड़े ही सुकून से सुना जाता है। चारों तरफ खामोशी और गंगा का किनारा, एकदम शांति का माहौल है। कस्बा कुमनौर यूपी से फारूक अली खान साहब, बहुत ही खुशकिस्मत हैं सरकार, मैं तो वहीं पहुंच गया जहां आपके शब्दों ने हमें पहुंचाया। बिल्कुल समझ सकता हूं कितना आनंद का पल होता है ये। और बिल्कुल इसको एंजॉय कीजिए, इस खामोशी में भी एक प्यारा सा संगीत होता है, मधुर सी आवाज़ होती है ना।

ढल गया चांद गई रात, चलो सो जाएं, हो चुकी उनसे मुलाकात, चलो सो जाएं, लुट गई आस की बारात, चलो सो जाएं, हो चुकी उनसे मुलाकात, चलो सो जाएं। लोग इकरार ए वफा करके भुला देते हैं, लोग इकरार ए वफा करके भुला देते हैं, ये नहीं कोई नई बात, चलो सो जाएं।

और दोस्तों वक्त तकरीबन हो गया है कि मैं आपसे इस प्रोग्राम से विदा लूं, इस वादे के साथ कि अगले शनिवार फिर करेंगे मुलाकात। प्रोग्राम आपकी याद रही, आपकी याद आती रही और रंगे महफिल के प्रोग्राम के माध्यम से मिलेंगे आकाशवाणी रेनबो पर ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 12 बज चुके हैं, लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव में जीत पर परिषद को बधाई दी है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने और पश्चिम रेलवे के उधाना इकाई सोगांद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भास्कर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची, आज बांग्लादेश से मुकाबला होगा। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 12:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

आज के इस प्रोग्राम जीरो आवर शो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपका दोस्त, नाम आपने कभी न कभी सुना ही होगा, अर्चित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

सोनू निगम जी की आवाज में साथिया। 12:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 12:23 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

12:33 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ प्रोग्राम जीरो आवर शो में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

12:59 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आवर शो। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नव नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया, कहा

प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में जीत पर परिषद को बधाई दी है। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम बागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने और पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाथ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची, आज बांग्लादेश से मुकाबला होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। एक बज चुके हैं, 1:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुहानी रात।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 1:26 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। रात्रि के 2 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण, जलवायु, गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में जीत पर परिषद को बधाई दी है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने और पश्चिमी रेलवे के उधना इकाई सोनगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज बड़े पैमाने पर देश भर में युवाओं को एकजुट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भास्कर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। आज बांग्लादेश से होगा मुकाबला। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 2:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भुलाए न बने मेरे यानी अलचित के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: दो बजकर 17 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने।

0: सी तेरी बोली, कु
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: 2:24 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

2:53 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भुलाए न बने मेरे यानी अर्चित के साथ। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में जीत पर परिषद को बधाई दी है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन में 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने और पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगात खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी दी है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज बड़े पैमाने पर देश भर में युवाओं को एकजुट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अंत में खेल जगत की बात करें तो 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ हुआ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची, आज बांग्लादेश से मुकाबला होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलेडीज।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो SR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा।
6: अच्छा,
5: डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ
4: जाएगा। आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया

की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 4 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को नए सिरे से मजबूत करने का आह्वान किया है। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज बड़े पैमाने पर देश भर में युवाओं को एकजुट किया जाएगा। ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। 20वें एशियाई खेल का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। मनु भास्कर और पवन सहरावत ने भारतीय दल की अगुवाई की। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज सेमीफाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन में 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने की मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश नियुक्त किया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी को नए सिरे से मजबूत करने का आह्वान दिया है। सऊदी अरब ने पुष्टि की है कि यमन के हौसी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से उसकी राजधानी रियाद पर हमला करने की कोशिश की। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज बड़े पैमाने पर देश भर में युवाओं को एकजुट किया जाएगा। एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। और खेल जगत की बात करें तो 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। मनु भाकर और पवन सहरावत ने भारतीय दल की अगुवाई की और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज सेमीफाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप इस वक्त सुन रही हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।